सुपर भात मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

नंद भवन नंद लाल ठुमक चलन लागे, पीछे माँ यशोमती बाबा नंद आगे, लाल चलन लागे। लघु लघु पद डगमग शिखन छवि जगमन जगमग, किनी किनी धुन सुन सुन कर भूमि जाग जागे, लाल चलन लागे। अष्ट सखी अष्ट सखा सिर पर है मोर पखा, दबि के हित और कौन शीर सिंधु त्यागे, लाल चलन लागे। नंद भवन में नंद लाल ठुमक चलन लागे।

दुआ करो कि हर इंसान को समझ आए इंसानियत। ऐ मौला, तेरे हर बंदे के जवां में आ जाए तहजीब। अहले जहां में छाए प्यार मोहब्बत की नज़ाकत, एक बार फिर से कुदरत की प्रकृति बन जाए जन्नत। दुआओं की हो इतनी असर की बदल जाए किस्मत, हर दुआ कबूल हो जिसने दिल से की हो इबादत।

جب فرشتے ہوں مشغول نعت

रखो लाज मेरे गुरु नानक, मेरा परिचय न खास। मैं आपका हो, आप हो मेरे, रहूं बन चरणों का दास। खेल करे कोई जान बूझ कर, मोहे सताए सूझ बूझ कर, यशु जान की विनती सुनो, बुरा न होए आभास। रखो लाज मेरे गुरु नानक, मेरा परिचय न खास। मैं आपका, आप हो मेरे, रहूं बन चरणों का दास।

करुणा का सागर है मैया, चरणों में इनके स्वर्ग का धाम। सरल हृदय से जो भी ध्याय, पूरे हों सब उसके काम। सच्ची भक्ति और मन में श्रद्धा, यही मैया को सबसे प्यारी। गुड़ और चने का लगे जो भोग, मिट जाए विपदा सारी। संतोष का पाठ पढ़ाती है, जो है पास उसी में सुख पाना। क्रोध लोभ को दूर भगाकर, प्रेम से सबको गले लगाना। शुक्रवार का व्रत है पावन, शुक्रवार का व्रत है पावन, जो सच्चे मन से है किया जाता। अंधेरे जीवन में भी मैया उम्मीद का दीपक है जलाता।

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे लता मंगेशकर, जाकिर खान, भाई गोपाल सिंह रागी और अनुराधा पौडवाल व साथी।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: हम जब भी सैद्धांतिक रूप से गांधीवाद की चर्चा करते हैं, तब निश्चित रूप से हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर सर्वोदय के आदर्श की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध एक ऐसे समाज की कल्पना को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, जहां पर हिंसा का नामो निशान ना हो। मनुष्य मनुष्य के मध्य प्रेम, सौहार्द और पारस्परिक सहिष्णुता की भावना हो। बंधुत्व की इस डोर का आधार केवल मानवता ही धर्म हो। किंतु मनुष्य के आधुनिक और फिर अत्याधुनिक होते जाने की प्रक्रिया की त्रासदी यह है कि आदर्श व्यवहार की जिस तराजू का संतुलन पहले आदर्श की ओर झुकता था, वही आधुनिक मनुष्य की दृष्टि में व्यवहार की ओर झुकने लगा है। अब मनुष्य की अति व्यवहारिकता के कारण उसकी आत्मा पर लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या आदि बुराइयों का आवरण बढ़ता जा रहा है। परिणाम यह हो रहा है, मानवता का ह्रास होता है। मनुष्य की ये अति व्यवहारिकता इस सीमा तक पहुंचने लगी है कि गांधीवाद के आदर्श का भी क्षरण होने लगा है। ये आदर्श अब स्वार्थ सिद्धि के लिए साधन मात्र बनते जा रहे हैं। राजनीति के महारथियों द्वारा जो शुरुआत की गई, उसका प्रभाव अब आम जन तक लक्षित होने लगा है। परिणाम यह हुआ है कि गांधीवादी आदर्शों की चर्चा गोष्ठियों, सम्मेलनों, भाषणों, व्यक्तित्वों आदि में तो होगी, किंतु व्यवहार में उन आदर्शों का पालन करने में

0: मुख्य मार्ग का चुनाव लाजमी है। लेकिन यदि मानव विवेक शक्ति का दुरुपयोग प्रारंभ कर देता है तो घृणा की भावना महत्वपूर्ण होने लगती है। इससे हिंसा का जन्म होता है। किंतु मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है कि वो एक मार्ग को पूर्णतः चुन ले और दूसरे मार्ग को पूर्णतः छोड़ सके। मनुष्य जीवन की इसी जटिलता से ये सवाल उठता है कि क्या सह अस्तित्व के लिए हिंसा आवश्यक है। अन्य विवादों की भांति यहाँ भी विचारकों में मतभेद हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि समाज में सह अस्तित्व के लिए हिंसा आवश्यक है, तो कुछ विचारकों का मानना ये भी है कि सह अस्तित्व के लिए अहिंसा का पालन करना जरूरी है। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हिंसा उचित नहीं है, यह जीवन के लिए घातक है तथा इससे सह अस्तित्व सह जीवन संभव ही नहीं है। किंतु ये विचार एकांगी प्रतीत होता है, क्योंकि ये सदैव आवश्यक नहीं है कि हिंसा जीवन के लिए घातक ही हो। कई बार जीवन की रक्षा के लिए व अपने अस्तित्व वजूद की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि प्रायः हिंसा के साथ द्वेष विद्यमान रहता है। सिद्धांत रूप में हिंसा तथा द्वेष सदैव साथ ही होंगे, ऐसा मानना अनुचित होगा। मूल बात यह है कि जो हिंसा की गई उसका उद्देश्य क्या था, हिंसा को प्रेरित करने वाले कारक कौन से थे, और फिर मनुष्य का सारा जीवन ही संघर्ष में एवं हिंसा से भरा है, तो फिर हिंसा से शून्य जीवन की कल्पना असंभव प्रतीत होती है। तो सवाल यह है कि जब हिंसा की इतनी महत्ता है तो अहिंसा के आदर्श का यथार्थ क्या है, अहिंसा के आदर्श की व्यवहारिकता क्या है, व्यक्ति क्यों अहिंसा के मार्ग को त्याग कर हिंसा के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। वस्तुतः गांधी जी की दृष्टि में मनुष्य अच्छाइयों का पुंज है, किंतु मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या आदि कुछ बुराइयां भी हैं। इन्हीं दुर्गुणों के कारण मनुष्य में अधिकार भावना पाई जाती है, और ये लोभ भावना ही सारे फसाद की जड़ है। वो कहते हैं कि प्रकृति के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है, पर वो हमारे लोभ को पूरा नहीं कर सकती। गांधी जी ने मानव जीवन के सभी पक्षों का आध्यात्मिकरण किया है। उनकी दृष्टि में मानव का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन आध्यात्म और धर्म से अलग नहीं है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय भावना है। व्यक्ति गलत का अनुसरण इसलिए करता है क्योंकि आत्मा पर स्वार्थ व लोभ का आवरण पड़ जाता है। इस आवरण को हटा दिया जाए तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वह प्रेम से आपूरित हो जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में हम जो असहिष्णुता का वातावरण देखते हैं और प्रायः भीड़ के हिंसक होने की घटनाओं को देखते हैं, मनुष्य के इस पतन का मूल कारण मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष का धूमिल पड़ जाना ही है। जबकि गांधी जी के आदर्श सर्वोदय की भावना में ही ये निहित है कि सबका उदय तथा सभी प्रकार से, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से उदय। सर्वोदय का ये चरम आदर्श है जिससे व्यक्ति का आत्मिक विकास संभव हो सकेगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सर्वोदय की प्राप्ति हो सकती है। गांधी दर्शन उसे न केवल समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है, बल्कि व्यक्तित्व के समग्र विकास की प्रेरणा भी देता है।
1: ये थे बापू के विचार, और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

0: आपने सुना बापू का प्रिय भजन। इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आर के चितलांगिया से की गई भेंटवार्ता। विषय है कैंसर एक सामान्य जानकारी। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: श्रोताओं, समय समय पर हमें कई सारी बीमारियां होती हैं और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन बीमारियों से संबंधित डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इलाज कराते हैं और फिर हम ठीक हो पाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ही घातक हैं और यदि उनका समय से इलाज न कराया जाए तो कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर। हमारे सभी श्रोता जानते हैं कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। ये क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, कैसे इसका बचाव और उपचार किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के चितलांगिया जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं बरेली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। कैंसर का नाम सुनते ही जहन में ये बात आती है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, डर सा लगता है। वैसे तो सामान्य रूप से बुखार, सर्दी, जुखाम और फ्रैक्चर होना, ये बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत घबराता नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनमें से कैंसर प्रमुख है और व्यक्ति घबरा जाता है। क्या कारण है, ये कैसी बीमारी है?
3: बिल्कुल, आपने सही शुरुआत की। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मैं एक बात बताना चाहूंगा
2: जी,
3: कि आज भी हमारे पास एक जो शर्तिया इलाज या पूर्ण इलाज ये नहीं है। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कैंसर हम पूरा ठीक कर पाएंगे
2: जी।
3: मैं इसके बारे में आगे कई बातें बताऊंगा।
2: बिल्कुल।
3: पर कैंसर क्या है? ये हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंसर हमारे शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास है
2: जी।
3: यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अचानक बढ़ना शुरू कर देती हैं
2: जी।
3: और वो बढ़ना शुरू कर जिस जगह पे बढ़ती है, जिस अंग में बढ़ती है, उसको खराब कर देती है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। अनियंत्रित और एक होता है बिना उद्देश्य के
2: बिल्कुल
3: कोशिकाओं का बढ़ना,
2: हाँ।
3: इसको कैंसर कहते हैं। शरीर के यदि किसी जरूरतमंद अंग में यदि इस प्रकार की तकलीफ हो जाती है,
2: हाँ।
3: तो बिना उस अंग के हम रह नहीं सकते। जैसे जिगर है, दिल है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, ब्रेन है
2: जी।
3: तो इनमें यदि इस प्रकार की बीमारी हो जाए तो ठीक नहीं हो सकते और ये जानलेवा होती है
2: जी। इसीलिए ये खतरनाक बीमारी की श्रेणी में आती है। डॉक्टर साहब, कुछ समस्याएं शरीर में

0: है, बुखार है तो पता चल जाता है, सर्दी जुकाम है तो भी पता चल जाता है, और फ्रैक्चर होता है तो भी पता चल जाता है, लेकिन कैंसर का पता कैसे लगे, क्या लक्षण है, जिनसे व्यक्ति स्वयं या डॉक्टर देख करके ये बता सकता है। फिलहाल हम स्वयं जांचने की बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति पहचाने या शंका करें कि वो लगता है कैंसर हो गया है।
1: देखिए, कैंसर एक बीमारी नहीं है
0: जी,
1: ये बीमारियों का समूह है, क्योंकि कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से का हो सकता है, सिर से लेकर पैर तक
0: जी,
1: और हर अंग में कई प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं।
0: अच्छा।
1: और उन सबका इलाज भी अलग होता है, उनके लक्षण भी अलग होते हैं, तो हम इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि भाई कैंसर के ये लक्षण होंगे
0: जी,
1: तो
0: अपने आप पहचानना बड़ा मुश्किल है।
1: अपना आप पहचानना बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं और जो 90% कैंसर में होते हैं।
0: अच्छा।
1: ये लक्षण मैं बताना चाहूंगा जो आम आदमी को मालूम होना चाहिए कि शरीर में किसी प्रकार की गांठ का होना,
0: अच्छा,
1: शरीर में किसी प्रकार का घाव होना जो भर ना रहा हो
0: जी,
1: खाने पीने में तकलीफ होना, आवाज में बदलाव आना, लगातार खांसी रहना, पेट की सामान्य आदतों में परिवर्तन होना, यानी कभी पेट खराब हो गया, कभी कब्ज हो गई, कभी शरीर के किसी भी हिस्से से खून का आना, और यदि हमारे हाथ में कोई तिल मस्सा है उसमें अचानक परिवर्तन होना, खून आना
0: जी,
1: उसका रंग बदलना, और मुंह में सफेद या लाल धब्बे।
0: अच्छा।
1: ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं।
0: क्षण महसूस करता है तो उसको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। और जहां तक हम जांच की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो वो कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं जो इसके लिए जरूरी है और उनके माध्यम से ये पता चल सकता है कि बिल्कुल अमुक व्यक्ति को कैंसर हो गया है?
1: देखिए, जब भी कभी इस तरह के लक्षण है
0: जी,
1: तो आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर देखने के बाद बताता है कि मुझे ये कैंसर लग रहा है या कैंसर का इसमें शक है। उस समय जब हमारे मन में ये शंका होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए बायोप्सी, गोश्त की जांच
0: जी,
1: या उस गांठ में से खून निकालकर जांच की जाती
0: है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आर के चितलांगिया जी कि किस प्रकार से हम कैंसर से बच सकते हैं, क्या लक्षण है, और कितनी सतर्कता से यदि हमें पता चले कि कैंसर है तो उसका हमें इलाज कराना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। हम समझते हैं कि इस जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से अपनी पहचान कर सकता है कि कैंसर है या नहीं, और कैसे बच सकता है, कैसे इलाज कर सकता है। डॉक्टर आर के चितलांगिया जी, कार्यक्रम में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर के चितलांगिया से की गई भेंट वार्ता, विषय था कैंसर एक सामान्य जानकारी। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। इसके साथ ही स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे निधि मिश्रा का राग जौनपुरी में शास्त्रीय गायन। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नात, जिसमें आज आप सुनेंगे अलवीना के गाए कुछ नोहे। रात्रि 8:00 व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। शाम 7:31 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जमील अहमद की गाए कुछ गजलें। शास्त्रीय संगीत में शाम 7:00 आप सुनेंगे निसार हुसैन खां का तबला वादन। कृष्णगत कार्यक्रम होगा शाम 6:20 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दोपहर 1:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम कुमकुम। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे नातों कव्वाली। फनकार होंगे शाहिद नियाजी और साथ ही गीत आपके नाम, ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 पर। मनभावन कार्यक्रम में दिन में 11:30 पर आज आप सुनेंगे एक ही शीर्षक मन से संबंधित कुछ फिल्मी गीत। धरोहर कार्यक्रम होगा दिन में 11:00 जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 13। उर्दू प्रोग्राम आज समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे माहे मुहर्रम पर खसूसी फीचर कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार होंगे फरीदुल्ला खां और शीबा बी। तरतीब व पेशकश होगी जनाब विक्रांत चौधरी की। और अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जौहरी से वार्ता। विषय रहेगा बदलती जीवन शैली और संस्कारों का संकट। श्रोतों, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।
3: एपिसोड नंबर 340 340।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिवान छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

0: पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेर के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए श्री सुरेंद्र कुमार जौहरी से वार्ता। विषय है बदलती जीवन शैली और संस्कारों का संकट।
2: ये हम सब जानते हैं कि समय के साथ साथ हमारी जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है। आज से 25 वर्ष पहले जो हमारे जीने का तरीका था वह हमारी आधुनिक जीवन शैली से काफ़ी भिन्न है, किंतु हमारे संस्कार शाश्वत हैं। अतः नई जीवन शैली के साथ अपने संस्कारों का सामंजस्य बिठाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने आराम और नई तकनीक तो दी है, किंतु इसने संयुक्त परिवारों को एकल परिवारों में बदल दिया है, जिससे नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों में कमी आई है। आज की व्यस्त जीवनचर्या में डिजिटल स्क्रीन ने हमें परिवारजनों से संवाद को लगभग बंद कर दिया है, जिससे रिश्तों में भावात्मक जुड़ाव कम हो रहा है। नई जीवन शैली में हम आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन इसने एकाकीपन तथा सामाजिक अलगाव को बढ़ावा दिया है। पहले संयुक्त परिवार में बच्चे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, चचेरे भाई बहन आदि से आदर तथा प्रेम का भाव रखते थे। बच्चे बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते थे, उत्सवों में साथ साथ भोजन करते थे, उत्सव साथ साथ मनाते थे, त्यौहार साथ साथ मनाते थे, बच्चे साथ मिलकर खेलते थे। इससे रिश्तों की गर्माहट बनी रहती थी, किंतु आज एकल परिवारों में बच्चे उन रिश्तों को नहीं जानते। बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। कुछ ही बच्चे अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर स्कूल जाते हैं। अपने कैरियर और भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में माता पिता भी बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे भी बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। अत्यधिक सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल से घर के भीतर ही परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटे रहते हैं। पारिवारिक संस्कार बच्चों को बड़ों का आदर, सहानुभूति और सहयोग जैसे जीवन के मूलभूत पाठ सिखाते हैं। हमारे तीज त्यौहार और पारिवारिक परंपराएं हमें अपने परिवार से जोड़े रखती हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में बच्चे अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों से वंचित हैं। त्यौहार मनाने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। पहले पति पत्नी घर के बुजुर्गों का सम्मान करते थे, आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते। आज की बदलती जीवन शैली, तकनीकी प्रगति, भौतिक सुख सुविधाएं, भागदौड़ बड़ी दिनचर्या और बदलती खान पान की आदतों को दर्शाती है। पहले परिवार के सदस्य जमीन पर बैठकर पालथी मारकर और साथ साथ भोजन करते थे, आज हम डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां पैदा होती हैं। आधुनिक जीवन शैली में सभी कार्य मशीनों से होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए, व्हीकल से हर जगह जाते हैं। इससे भौतिक श्रम नहीं हो पाता तथा ब्लड शुगर, हाई बीपी की समस्या हो जाती है। डिब्बा बंद खाद सामग्री, मिलावट की खाद सामग्री स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। आजकल रात को देर से सोना तथा सुबह देर से उठना एक फैशन बन गया है। पहले व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे।

निरीक्षण करते थे तथा काफी बीमारियों से बचे रहते थे। पहले युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को के सामने अधिक नहीं बोलती थी और ना ही किसी बात पर बहस करती थी। जो बड़े कह देते थे उसको मानना उनकी संस्कृति में था। अब माता पिता तथा घर के बड़े बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, पर वे डरते हैं कि कहीं वे उनका अपमान ना कर दें। युवा पीढ़ी ये समझती है कि हमारे माता पिता या बड़े आज के आधुनिक जीवन शैली के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। यह टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पर उन्हें यह समझना चाहिए कि भले ही वे टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते हों, पर उन्हें जीवन का तजुर्बा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नववधु अपने ससुराल में जाकर वहाँ सबके साथ आदर एवं अपनेपन का व्यवहार करती थी, ससुराल को ही अपना घर मानती थी, पर अब नववधु एक दिन भी ससुराल में रहना नहीं चाहती। उसे एकल परिवार ही अच्छा लगता है, वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। सास ससुर तथा पति का सम्मान करना वे अपनी तौहीन समझती है, इसीलिए आजकल फैमिली कोर्ट में घरेलू मामलों के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। यदि संयुक्त परिवार हों तो दादा दादी बच्चों की सहायता भी करेंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। बहुत कम परिवार हैं जिसमें बच्चों को धार्मिक शिक्षा का या नैतिक शिक्षा ही दी जाती है। बच्चे अपने संस्कार, रीति रिवाज, अपने देवी देवताओं के बारे में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अब दादा दादी बच्चों को देशभक्ति तथा धार्मिक शिक्षाओं की कहानियाँ नहीं सुना पाते हैं। परिवारों में लालच, प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा ईर्ष्या जैसी बुराइयाँ व्याप्त हो गई हैं। भाई भाई में, पिता पुत्र में, भाई बहन में जायदाद के लिए झगड़े आम बात हो गए हैं। इन सब हालातों में हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रीय गान के समय, मंदिरों में आरती के समय खड़ा हो जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आधुनिक जीवन शैली तथा संस्कारों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? सर्वप्रथम घर में भोजन करते समय या पारिवारिक बातचीत के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अपना ध्यान भोजन करने पर या आपस में बातचीत पर दें। व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर परिवार के साथ बिताएं। बच्चों को अपनी संस्कृति तथा नैतिक कहानियों के बारे में बताएं। चाहे हम एकल परिवार में रह रहे हों, पर हमें अपने संयुक्त परिवार से तालमेल बनाकर अवश्य रखना चाहिए। सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव साथ साथ मनाएं। बच्चों को हर उत्सव एवं महापुरुषों के बारे में जानकारी देना अवश्य चाहिए। हमारे संस्कार हमें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाकर हमारा चरित्र निर्माण करते हैं। अच्छे संस्कार हमें अनुशासित, परोपकारी और विनम्र बनाते हैं। इसके प्रभाव से हम समाज में सम्मान पाते हैं और हम एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। समय तथा परिवार में प्रेम, सहयोग तथा भाईचारा बढ़ता है। संस्कारी व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे समाज तथा देश का भविष्य है, उसका सुसंस्कृत होना अति आवश्यक है। हमारे बच्चे जब इंटरनेट या लैपटॉप मोबाइल पर काम करें तो उन पर नज़र रखना आवश्यक है ताकि वे इनका गलत उपयोग ना कर सकें। अपने विवाह योग्य बच्चों को ये शिक्षा अवश्य देना चाहिए कि वे अपना दाम्पत्य जीवन कैसे अच्छी तरह चला सकते हैं। अपनी विवाहित पुत्री के ससुराल में आवश्यक हस्तक्षेप ना करें। समाज में किसी से अपनी तुलना ना करें। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, जो ईश्वर ने दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। बच्चों में देशभक्ति, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम तथा सहयोग की भावना अवश्य होना चाहिए। यदि हम उपर्युक्त बातों का ध्यान रखेंगे

0: हमारी युवा पीढ़ी और हम स्वयं एक स्वस्थ एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सकेंगे।
1: बदलती जीवन शैली और संस्कारों का संकट, अभी आप इस विषय पर श्री सुरेंद्र कुमार जौहरी से वार्ता सुन रहे थे। अमृत कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
5: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
5: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
6: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
5: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।
8: पानी, पानी
9: कहाँ से लाऊं? पानी,
8: पानी
9: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
8: पानी,
9: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
8: पानी, पानी।
5: ये तस्वीर है आने वाले कल की, अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
10: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
11: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
12: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
13: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
14: नहीं, 112 लगाओ।
15: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
14: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
16: हेलो 112।
17: नमस्कार 112 यूपी।
16: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
17: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
16: सुनील।
17: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
16: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
17: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
18: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
19: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
13: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
19: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
13: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
19: डायल कीजिए 870-001-4242।
13: नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। प्रेरक प्रसंग कार्यक्रम होगा आज सवेरे 9:25 पर। सुबह 9:30 पर आप समाप्त फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसके तहत आप सुनेंगे एक फीचर माहे मुर्रम पर। ये खसूसी फीचर आपको सुनवाया जाएगा, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार होंगे फरीदुल्ला खां और शिबा भी, और तरतीब व पेशकश होगी जनाब विक्रांत चौधरी की। आज सवेरे 10:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। एक ही शीर्षक मन से संबंधित आप फिल्मी गीत सुन सकेंगे मन भवन कार्यक्रम में दिन में 11:30 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम दिन में 12:10 पर। नातों कव्वाली समात फरमाएंगे आप दोपहर 1:15 पर। फनकार होंगे शाहिर नियाजी और साथी। महिलाओं का कार्यक्रम होगा कुमकुम दोपहर 1:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग होगा दिन में 2:30 पर।

आज रात 10 बजे आप समाप्त फरमाएंगे नातों का वाली, जिसमें आज आप सुनेंगे नोहे, कलाकार रहेंगे अलवीना। 10:30 पर रात्रि में आप सुनेंगे कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे निधि मिश्रा का राग जौनपुरी में शास्त्रीय गायन। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे जमील अहमद की गाई कुछ नात। शाम 7 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे निसार हुसैन खां का तबला वादन।

0: अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए। अपने वाहनों को नियंत्रित गति में चलाइए। ध्यान रखिए, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको बिना फाटक की रेलवे लाइन पार करनी है तो सबसे पहले बाईं ओर देखिए, फिर दाईं ओर देखिए और पुनः बाईं ओर देखकर ही रेल पटरी पार कीजिए। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं और साथ ही साथ चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। अपने वाहनों को अपडेट रखें, किसी प्रकार की कोई कमी न रखें, जिससे आपकी यात्रा सुगम रहेगी।
1: मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
4: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
3: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
5: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
5: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
3: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
6: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश

और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया
8: याद रखिए शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा
7: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए
8: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए
7: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए
8: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
9: कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का खंजरों तले भी सर झुका ना था हुसैन का मिट गई नस्ले याजिद करबला की खाक में कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का आप सभी को आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में अखिलेश सक्सेना का नमस्कार श्रोताओं को मनाया जा रहा है ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इमाम हुसैन की करबला में शहादत की याद में श्रद्धा शोक रोज़ा दुआ और धार्मिक आयोजनों के साथ ये मनाया जाता है इस्लाम धर्म में मुहर्रम साल के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसी के साथ नए हिजरी वर्ष की शुरुआत होती है मुहर्रम केवल नए साल का प्रतीक नहीं है बल्कि ये त्याग बलिदान सत्य और न्याय की याद दिलाने वाला महीना भी माना जाता है दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम इस महीने को श्रद्धा इबादत और आत्मचिंतन के साथ मनाते हैं मुहर्रम के दसवें दिन को आशुरा कहा जाता है इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है वर्ष 680 ईस्वी में हुई करबला की घटना इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है जिसने सत्य और न्याय

के लिए संघर्ष का संदेश दिया। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा कहते हैं और इस वर्ष आज ये मनाया जा रहा है। इस साल इस्लामी नववर्ष 17 जून से शुरू हुआ था। इस दिन नए इस्लामी साल 1448 हिजरी की शुरुआत हुई। वहीं आज हजरत इमाम की शहादत का दिन यानी यौम आशुरा मनाया जा रहा है। कुछ लोग इसे गम का महीना मानते हैं। माह की 10वीं तारीख को यौम आशुरा कहा जाता है। 680 ईस्वी में वर्तमान इराक के करबला में इमाम हुसैन और उनके समर्थकों का सामना शासक यजीद की सेना से हुआ था। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद इमाम हुसैन ने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया और शहादत स्वीकार की। हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ इसी माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है।

और श्रोताओं, अब एक नज़र 26 जून के इतिहास पर। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। 1992 में आज ही के दिन भारत ने 3 बीघा गलियारा 999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया था। 1999 में आज ही के दिन 26 जून को अमेरिकी ऊर्जा विभाग के हथियार कार्यक्रम के प्रमुख विक्टर रीस का इस्तीफा हुआ था। हंगरी में विश्व विज्ञान सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। IOC सेनाध्यक्ष जय ए समारांज को बेस्ट सब स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड को दिया गया था। 26 जून 2000 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा दिया गया था। 26 जून को 1992 में भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का जन्म हुआ। जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंत के प्रसिद्ध मुनि रहे तरुण सागर का जन्म 26 जून 1967 में हुआ। बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 1838 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय गायिका और नर्तकी रही गौहर जान का जन्म 1873 में आज ही के दिन हुआ। और प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री दुग्वेकर का निधन 1961 में आज ही के दिन हुआ था। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें सबसे पहले कि आज के मौसम के अनुसार रामपुर का अधिकतम तापमान जो रहेगा वो 43.7 डिग्री रहेगा और न्यूनतम 31.4 डिग्री तक रहेगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में OBC युवाओं के लिए निःशुल्क ओ लेवल और CCC के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अधीक्षक उद्यान रामपुर ने बताया है कि योजना के तहत फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम जैसे नवीन उद्यान रोपण के लिए आम, अमरूद, नींबू के पौधा रोपण खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर किसान पंजीकरण कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जो उर्वरक विक्रेता अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके वो अपने संबंधित राजकीय बीज भंडार अथवा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7839882763 और 9458846182 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। रामपुर की कला संस्कृति से रूबरू हुए थे 5 देशों के राजदूत। जी हाँ, कला संस्कृति और धरोहर से रूबरू होने के लिए 5 देशों रोमानिया, चिली, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया और आयरलैंड के राजदूत रामपुर पहुंचे थे और उन्होंने रामपुर की कला संस्कृति से परिचय प्राप्त किया। बिलासपुर में 6.5 करोड़ से बनेगा नया बिजली घर। जी हाँ, उत्तराखंड बॉर्डर स्थित गांव डिवडिवा की शारदा कॉलोनी में सरकार की ओर से क्षेत्र के लिए 6.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नए आधुनिक बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि बॉर्डर क्षेत्र के करीब 2500 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध और फुल वोल्टेज बिजली की आपूर्ति मिल सकेगी। 28 से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। 3,74,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। जिले में 28 जून से पल्स पोलियो अभियान चलेगा और इसके लिए 0 से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और हम बता दें आपको श्रोताओं के आज जैसे हमने पहले बताया कि 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रखंड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज जन्म जयंती है। 1874

प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने की, जिसे बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। इनका जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कांठल पाड़ाग नामक गांव में हुआ था। बंकिमचंद चट्टोपाध्याय बंगला के शीर्षस्थ उपन्यासकार रहे। उनकी लेखनी से बंगला साहित्य तो समृद्ध हुआ ही है, हिंदी भी अपकृत हुई है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते हैं। इन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जो प्रवेश किया, उसमें प्रवेश के समय बंगला में गद्य उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थीं। बंकिम ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया और जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास था उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम इतिहास में युगों युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह गीत उनकी एक ऐसी कृति है जो आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय को आंदोलित करने की क्षमता रखती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्थान पर कहा है कि राममोहन ने बंग साहित्य को निमज्जन दशा से उन्नत किया, बंकिम ने उसके ऊपर प्रतिभा प्रभावित करके स्तरबद्ध मूर्ति का अपसारित कर दी। बंकिम के कारण ही आज बंग भाषा मात्र प्रौढ़ ही नहीं उर्वरा और शस्य श्यामला भी हो सकी है। आधुनिक बंगला साहित्य के राष्ट्रीयता के जनक इस नायक का 8 अप्रैल 1894 को देहांत हो गया। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा रचित ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ फिल्म से।

आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पेन 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल

0: के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
5: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
6: 20 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
2: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
7: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बढ़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम

अभी आपने सुना दर्शन रावल और आशीष कौर की आवाजों में फिल्म आंख में चोली का गीत। ओली जी, अब सुनिए आदित्य रिकारी और तुलसी कुमार की आवाजों में फिल्म भूल भुलैया 3 का गीत।

अभी आपने सुना पैपॉन और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म सर्कस का गीत। ओली जब सुनिए उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाजों में फिल्म गदर 2 का गीत।

0: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना गुरु रंधावा को फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में, और अब सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म रेड 2 का गीत।

अभी आपने सुना विशाल मिश्रा को फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में। और लीजिए अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए शिल्पा राव की आवाज में फिल्म बागी 4 का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
2: करें योग रहे निरोग और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग और मेंटल हेल्थ के समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
1: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदि।
3: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
1: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
4: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है।
0: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
6: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग दो में थी, अब एक में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौनी दी है, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
5: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
7: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
8: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ा है। हजरत मोहम्मद अपने घर से जब निकलते तो रोज उनकी एक पड़ोसन उनके ऊपर घर की छत पर रखा कूड़ा फेंक देती। वास्तव में वो उनसे न जाने किस कारण से नफरत करती थी, परंतु मोहम्मद साहब कुछ नहीं कहते। वो एक नजर उस पर डालते और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। उनकी इस बात से वो और चढ़ जाती। वो भी अपनी जिद पर आमादा थी कि देखते हैं कि आखिर बर्दाश्त की भी हद क्या है। ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहा। न तो मोहम्मद साहब को ही गुस्सा आया और न ही पड़ोसन की नफरत कम हुई। एक दिन क्रम भंग हुआ। जब मोहम्मद साहब उस गली से गुजरे और उनके ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा तो उन्होंने छत की ओर देखा। पड़ोसन नदारद थी, इसलिए मोहम्मद साहब ने अन्य पड़ोसियों से उसकी खोज खबर ली। मालूम हुआ कि रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार पड़ी है। मोहम्मद साहब ऊपर गए, पड़ोसन का हालचाल पूछा और उसकी सेहत के लिए वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। ये सारा नजारा देखकर पड़ोसन हैरान रह गई। वो मोहम्मद साहब के पांव में गिर पड़े, अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। मोहम्मद साहब ने बिना किसी गिले शिकवे के उसे दिल से लगा लिया और इस तरह से लंबे अरसे से चली आ रही नफरत का सुखद अंत हुआ। पड़ोसन मोहम्मद साहब की शिष्या बन गई और वो जीवन भर उनके गुणगान करती रही। एक बार एक महिला अपने पुत्र को लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गई और बोली, इस बालक की बहुत अधिक मिठाई खाने की आदत है और इससे इसका स्वास्थ्य चौपट हुआ जा रहा है। मैं हमेशा इससे इसकी बुरी आदत को छोड़ देने को कहती हूँ, पर इस पर कोई असर ही नहीं होता। यदि आप कृपा करके इसे समझाएं तो ये निश्चित ही अपनी बुरी आदत छोड़ देगा। पैगंबर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले, मैं इस बालक को अवश्य समझाऊंगा, पर अभी नहीं, एक हफ्ते बाद। उनके इस जवाब से विस्मित हुई महिला वापस लौट गई। सप्ताह भर बाद वो पुनः अपने पुत्र के साथ पैगंबर साहब के पास आई। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बालक को सीधे सादे शब्दों में अधिक मिठाई खाने से होने वाली खराबियां समझाई और ये बुरी आदत छोड़ देने को कहा। तब उस महिला ने पैगंबर साहब से प्रश्न किया कि ये तो आप पहले दिन ही समझा सकते थे, फिर इसके लिए सप्ताह भर का समय क्यों लिया? पैगंबर साहब का उत्तर था, सप्ताह भर पहले जब आप इस बालक को लेकर मेरे पास आई थी, मैं स्वयं इस आदत का शिकार था, पर इस एक सप्ताह में मैंने खुद वो आदत छोड़ दी है। हफ्ते भर पहले मैं सलाह देने योग्य नहीं था। खुद को इस काबिल बनाने के लिए मैंने एक हफ्ते का समय लिया था।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 10:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। दिन में 11 बजे धरोहर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 13। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेशे खिदमत उर्दू प्रोग्राम, आज इस प्रोग्राम में समात फरमाइए माहे मुहर्रम पर खसूसी फीचर कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार हैं फरीदुल्लाह खां और शिवानूर। तरतीब पेशकश जनाब विक्रांत चौधरी की है।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपके मेजबान फरीदुल्लाह खान
2: और शिवानूर हाजिर है।
1: सलाम अदब कबूल कीजिए। आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन, आज हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं माहे मुहर्रम पर ये खुसूसी फीचर। उनका ख्याल दिल से मैं कैसे निकाल दूं, उनका ख्याल दिल से मैं कैसे निकाल दूं, मैं क्या करूं कि मेरी ज़रूरत हुसैन है, मैं क्या करूं कि मेरी

0: से काम लेना चाहिए, जो हमें आपने रास्ते दिखाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाया, उसके बाद हसन हुसैन ने हमें रास्ता दिखाया, हज़रत अली ने रास्ता दिखाया, हज़रत उमर ख़त्ताब ने रास्ता दिखाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रास्ता दिखाया। हम उन नेक रास्तों पर चलें और उन नेक
1: बेशक
0: रास्तों पर चलकर इस दुनिया को अमनो अमान का गहवारा बने।

0: और हमारी जिंदगी भी यहीं से उधरेगी, और जो गुनाह हमसे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी माफ़ फरमाए और हमें नेक कामों की तौफीक अता करें।
1: आमीन।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे माहे मुहर्रम पर ये खुसूसी फीचर कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे फरीदुल्ला खान और शीबा नूर। तरतीब व पेशकश थी मोहतरम विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान
1: और शीबा नूर को डे प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया तो।
0: अभी आप समाअत फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नशर किया जा रहा था।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:10 होने को हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, पसंद किया है आप सभी ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम, मोरी गेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहरुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोई और स्वाति मौर्य, करौली मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शेव खान और नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, ग्राम बुड़ेला पोस्ट लपरी जौनपुर से कुमारी चंदा, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार और कन्हैया लाल, मौला दुर्गा प्रसाद बीसरपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा, उनके मम्मी पापा, बड़ी मस्जिद के पास मिलकभूजपुर आशा मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी, मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, अफजलपुर पट्टी तहजीब सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। तो लीजिए सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। और लीजिए, आप सुनिए अगला गीत नितिन मुकेश की आवाज में। फिल्म है दरिया दिल। गीत लिखा है बिट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। पसंद किया है आप सभी ने। मौला हलवाइयां शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और शबाना नाज। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली आजम, गुलाब शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। परिमल काजगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। लादावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, रितिक खुर्जा, यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, सालिया शेव खान, सायमा खान, मुस्तावा खान, अफिया खान, रऊफ और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, रविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दरिया दिल का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाजों में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। पसंद आप सभी की। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय और मेराज जहां। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। जतुका किशनपुर से आलम दल का शवाना नाज, जरवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन। जमनी मोहला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ताई सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर के आज के इस कार्यक्रम में आज सुनिए 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। सबसे पहला गीत उदित नारायण की आवाज में, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने और फिल्म है लगान।

0: अभी आपने सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान को सुना फिल्म ओमकारा में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आपने इस विज्ञापन से पहले जो गीत सुना वो था फिल्म ओमकारा से। आवाजी थी सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने। और लीजिए आप सुनिए उदित नारायण की आवाज में फिल्म गदर का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। लीजिए आप सुनिए कविता कृष्णामूर्ति, श्रेया घोषाल और केके की आवाजों में फिल्म देवदास का गीत। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने और संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में फिल्म वीर जारा का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। इसी गीत के साथ आज का सुनहरा दौर कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आपने आनंद लिया 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, प्रातः के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं धरोहर। इन दिनों धरोहर के अंतर्गत आप सुन रहे हैं धारावाहिक और फन बेमिसाल। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस धारावाहिक की 13वीं कड़ी का प्रसारण।

फिल्म बेमिसाल है। श्रोताओं, चार बैत के सफर पर आधारित ये धारावाहिक इन दिनों आप सुन रहे हैं। पिछले यानी कि 12वें एपिसोड में आपने नवाब रजा अली खां की बेगम राजमाता रफत जमानी बेगम का तहरीरी बयान सुना, किस शानदार तरीके से उनकी सावनी बनाई जाती थी। आपने ये भी सुना कि उर्दू शायरी की कोई भी सिंफ मौजूआत और हैयत यानी फॉर्मेट के लिहाज से चार बैत की अहमियत का मुकाबला नहीं कर सकती। और श्रोताओं, जो यात्रा चार बैत की हमने आरंभ की थी, आज चार बैत के सफर को तय करते हुए हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। और आइए आज आप तक पहुंचाते हैं चार बैत के सफर पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक जिसे आपने नाम दिया है और फन बेमिसाल है, इसकी 13वीं यानी अंतिम कड़ी। इस धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी और प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर।

0: चारबैत के इब्तदाई दौर में अनपढ़ और मामूली पढ़े लिखे चारबैत कहने वालों के कलाम को गजल गो शोरा ने बड़ी नाकदरी से देखा, लेकिन जैसे जैसे पढ़े लिखे शोरा चारबैत के जोश और रिदम से मुतासिर होकर चारबैत के करीब आने लगे, चारबैत अपना रंग जमाने लगी और चारबैत में तज़मीन का सिलसिला भी शुरू हो गया।
1: इब्तदाई दौर में चारबैत को जो हमारे शोराए कलाम थे और बाइल्म लोग थे उसको इतनी अहमियत नहीं दी उन्होंने, उसमें उनकी नज़र में उरूस की कमी थी, अलग अलग बहरों में थी, तो इसलिए उसको वो अहमियत नहीं मिली जो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी फोक चाहे किसी ज़ुबान का हो उसमें इन बातों का ध्यान कम रखा जाता है और सीधे सच्चे जो जज्बात होते हैं उनका इजहार ज़्यादा अहमियत रखता है। और यही चारबैत के साथ है कि लोग दिन भर की थकान और दूसरी मसरूफियात के बाद शाम को एक जगह जमा होते हैं, बैठते हैं, कोई उन्होंने एक धुन सेट कर ली, उस पर किसी ने एक टुकड़ा लगाया, दूसरे ने कुछ लगाया और इस तरह ये जो बनती चली जाती है एक फोक की शक्ल, तो उसमें बहर या उरूज या फ़न कम होता है, सीधे और सच्चे दिली जज्बात ज़्यादा होते हैं। यही वजह रही कि शुरू में हमारे जो अदीब थे उन्होंने चारबैत को वो मुकाम नहीं दिया, बाद में धीरे धीरे कुछ लोग इसमें आगे बढ़े और उन्होंने चारबैत को अपनाया और जब उनका कलाम चारबैत में आया तो उसको ज़्यादा अहमियत मिली।
0: दाग का ये शेर, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर ये नाम किसका था, पर अक्स ने क्या उस्तादाना तज़मीन की है।
2: तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर ये नाम किसका था, न आज से तुझे हम उम्र भर सताएंगे, कभी न गैर की जानिब निगाह डालेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न छेड़ो जिक्र ये रहने भी दो यहीं का यहीं, जफाएं ऐसी भी होती हैं मेरी जान कहीं, हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, सुना जो तुमने बदिल वो पयाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, नया तमाशा नया मकरूफन जरा सुनिए, अजीब तर्ज़े तहय्युर है वाह क्या कहिए, हर एक से पूछ रहे हैं वो कत्ल करके मुझे, ये काम किसने किया है ये काम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर ये नाम किसका था।
0: उस्ताद सौजा की तज़मीन बर गज़ल आजिज़ भी सुनिए।
2: सितमगर गैर के पहलू में जाना किससे सीखा है, हमारे खाक में अरमां मिलाना किससे सीखा है, जो ए बादी सबा जाना तेरा गुलशन की जानिब हो, अदब से आजजी से मेरे गुलरू से ये कह दीजो, सवाले वस्ल पर तेवर बदल कर अपने आशिक को, मेरी जान तैश से आंखें दिखाना किससे सीखा है, सितमगर गैर के पहलू में जाना किससे सीखा है, हमारे खाक मारमा मिलाना किससे सीखा है, जहां में नाम पाना है तो पूरा वार कर कातिल, लहू मेरा बहाना है तो पूरा वार कर कातिल, अगर झगड़ा मिटाना है तो पूरा वार कर कातिल, गले पे रख के खंजर का हटाना किससे सीखा है, सितमगर गैर के पहलू में जाना किससे सीखा है, हमारे खाक में अरमा मिलाना किससे सीखा है।
0: रईस रामपुरी चारबैत में अपने वतन की तारीफ करते हैं।

सदियां गुजर गईं, चार बैत गाई जाती रहीं, अपनी गुदड़ी में खुश रुहेला ना हालात की सख्ती और तंगदस्ती का शिकवा करते थे और ना जरूरत पड़ने पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करते थे। भूखे हुए भी तो चार बैते गाकर भूख मिटा लिया करते थे। कई नवाबों और जरदारों ने चार बैत की सरपरस्ती भी की। मौसीकारों, शायरों और तवाइफों को दरबार में नौकरियां भी थीं, लेकिन भैंसा गाड़ी चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले चार बैत गाने वालों को नजरअंदाज ही किया और इन गैरतदारों ने भी कभी जरदारों की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। तुम

जिंदा दिली देखना हो तो चार बहते गाने वालों को देखिए। आम के पेड़ों पर अमियां आ गई हैं, रिम झिम फुहार पड़ रही है, कोयल कूक रही है, कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। छप्पर के नीचे बांस की खटिया लेटा कोई मल्हार गा रहा है।

ये जो प्रोग्राम हम आपको सुना रहे हैं, बरसात का मौसम हो और इस मौसम में किसी का पति परदेश में हो, तो उसके दिल को बुलाने के लिए, उसके दिल को तसल्ली देने के लिए हम आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। लीजिए, इसके साथ साथ एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। लीजिए, सुनिए, समा फरमाइए।

0: करना।
1: सरहदी इलाकों में चार बेहता किसी एक कौम या किसी जाति विशेष का लोकगीत नहीं था। हिंदू, मुसलमान, पश्तून, पंजाबी और हर जाति के लोग इसे साजों की संगत के साथ गाते और लिखते थे। रोहिलखंड में आकर ये सिर्फ पठानों का लोकगीत बन गया। हालांकि चारबैत गाने वालों में दूसरी जातियां भी शामिल हो गईं, लेकिन इन सब का संबंध सिर्फ मुसलमानों से है। इसके मकबूल न होने की दूसरी वजह संगत में साजों का न होना भी है। चारबैत ने एक तवील सफर तय किया है, अफगानिस्तान से सरहदी इलाकों में आई। भाषा जरूर बदली, लेकिन जोश, वलवला और संगत के साज वही रहे जो अफगानिस्तान में थे। रोहिलखंड में आकर भाषा के साथ साथ उसकी हैयत यानी फॉर्मेट ने नए नए रूप भी अख्तियार कर लिए। हालांकि जोश और वलवला पश्तो और हिंद को चारबैता जैसा रहा, मौजूआत में भी इजाफा हुआ, मकामी आबो हवा का रंग भी चढ़ा, लेकिन संगत के साज खत्म हो गए। चारबैत राजस्थान और भोपाल में भी पहुंची, लेकिन मौलिकता में कोई तब्दीली नहीं आई, संगत में सिर्फ तंबल ही रहा। राजस्थान तो लोकगीतों की धरती है, कुछ ना कुछ मकामी असर पड़ना तो स्वाभाविक था, लेकिन पठानी राग सिर्फ पठानी राग की पुरानी रविश पर कायम रहा। इस पर राजस्थानी लोकगीतों और राजस्थानी भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकारी स्तर पर चारबैत को मान्यता दिलाने के लिए सबसे पहले रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर के पूर्व डायरेक्टर स्वर्गीय इम्तियाज अली खां अर्शी की कोशिश से इतना जरूर हुआ कि चारबैत का प्रसारण आकाशवाणी रामपुर से सप्ताह में एक बार शुरू हो गया। आकाशवाणी रामपुर के प्रसारण क्षेत्र के चारबैत के कलाकारों के ऑडिशन हुए और चारबैत की पार्टियों को रेडियो स्टेशन पर गाने का मौका मिल गया।
0: शम

हालांकि रामपुर, बरेली और मुरादाबाद वगैरह में कई कल्चरल सोसाइटीज हैं, लेकिन चारबैद के प्रमोशन के सिलसिले में सब उदासीन हैं। सच तो यह है कि चारबैद गाने वाले अपनी लगी बंदी डगर से हटना ही नहीं चाहते। चारबैद की मौलिकता को बदलने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है कि गायकी और पेशकश के अंदाज में कुछ तब्दीली की जाए, ताकि कल्चरल सोसाइटी अपने स्टेज प्रोग्राम में चारबैद को शामिल कर सके। केवल अच्छी शायरी के जरिए चारबैद जिंदा नहीं रह सकती, अपनी मौलिकता को कायम रखते हुए पेशकश के अंदाज को बदलने की जरूरत है। गाने में एट्रैक्टिव एक्शन की जरूरत है। चारबैद या पठानी राग जिन लोगों की कोशिश से आज जिंदा है, वो सब मेहनतकश हैं जो अपनी जिंदा दिली की वजह से इसे जिंदा रखे हुए हैं। वो जीविका के लिए नहीं, शौकिया गाते हैं। आज ये सिर्फ पठानों का लोक संगीत नहीं, बल्कि मुसलमानों की दूसरी कौमें भी शामिल हो चुकी हैं। चारबैद के इस लंबे सफर ने इसे हमारी तहजीबी विरासत बना दिया है। वक्त कितना ही बदल जाए, लेकिन ये लोकगीत हमेशा फजाओं में गूंजते रहेंगे।

0: और फन बेमिसाल है। श्रोताओ, चार बैत के सफर पर आधारित इस धारावाहिक की आपने 13वीं यानी अंतिम कड़ी सुनी। इस धारावाहिक के लेखक थे नफीस सिद्दीकी, और आज के इस 13वीं एपिसोड में जिन कलाकारों ने भाग लिया उनका परिचय है, सैयद मोहम्मद आदिल, अख्तर रिजवी, गायन स्वर शन्नुखा सरफराज और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। सहायक प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना। और श्रोताओ, नफीस सिद्दीकी के लिखे इस 13 एपिसोड की इस धारावाहिक को आप तक पहुंचाया मनदीप कौर ने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक और फन बेमिसाल है की 13वीं कड़ी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
3: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
2: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
3: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
4: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
3: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
5: से नो टू प्लास्टिक।
6: पानी, पानी
7: कहाँ से लाऊं? पानी,
6: पानी,
7: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
6: पानी,
7: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
6: पानी, पानी।
8: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मन भावन में। श्रोताओं, हमारा आज का मन भावन है एक ही शीर्षक। आज हम एक ही शीर्षक में आपको मन शीर्षक के कुछ गीत सुनवाने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मन से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं पाप फिल्म से, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, बोल हैं अमजद इस्लाम के और संगीत दिया है इस गीत को शाही ने।

श्रोताओं, मन भवन में आज आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक मन के कुछ गीत। मैं आपकी रेडियो साथी नेहा हूँ आपके साथ। तो श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मुझे कुछ कहना है से। इस गीत को गाया है अनुराधा श्रीराम ने और संगीत से सजाया है इस गीत को अनु मलिक ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म रेडियो से। गीत को गाया है हिमेश रेशमिया ने, इस गीत के बोल लिखे हैं सुब्रत सिन्हा ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म गंगा जमुना से। गीत को गाया है आशा भोसले ने, संगीत है नौशाद अली का और बोल हैं शकील बदायूनी के।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मन भावन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी थाना निरीक्षक हजरत नगर गढ़ी जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं, रीना पत्नी राजेश कुमार निवासी मिलक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल, विगत दिनांक 24/5/2026 से मिलक से लापता हैं। रीना की उम्र 24 वर्ष है। इनका कद 5 फुट है। रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। रीना ने सूट सलवार पहना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को रीना के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। पता है थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। फ़ोन नंबर है 9058865972। साथ ही एक और मोबाइल नंबर है जिस पर भी आप सूचित कर सकते हैं 9807711181।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है। प्रभारी थाना निरीक्षक संभल, जिला संभल, हमें ये सूचित करते हैं कि सुमित पुत्र मित्रपाल, निवासी ग्राम सराया सिकंदर, थाना बनियाठेर, जिला संभल, दिनांक 29 मई 2025 से लापता हैं। सुमित की उम्र लगभग 19 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 4 इंच है। रंग गेहूं है। चेहरा इनका गोल है। शरीर की बनावट औसत है। सुमित ने लाल टी शर्ट, काले रंग की पैंट और काले रंग की ही चप्पल पहन रखी हैं। यदि किसी व्यक्ति को सुनील सुमित के बारे में

किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त होती है या कोई सूचना मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी कोतवाली संभल, जिला संभल। आप फोन नंबर के जरिए भी सूचना दे सकते हैं। फोन नंबर है 8475008064।

0: खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
2: अभी लाई।
3: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का?
1: तो क्या हुआ मम्मी? जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
3: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
4: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीत आपके नाम में। आज गीत आपके नाम के कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके रेडियो साथी नेहा आपके साथ। तो श्रोताओं, आप भी बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। आपको करना सिर्फ इतना छोटा सा काम है, आपको हमें एक ईमेल करना है। ईमेल आईडी वही जानी पहचानी और पुरानी, गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। इस पर मेल करके आप हमें अपनी पसंद के गीत का नाम और अपना नाम लिखकर भेजिए और सुनिए अपने पसंद के गीत। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम के इस सफर की शुरुआत फिल्म हमराज के इस गीत के साथ, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने, बोल लिखे हैं इस गीत के साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार इसी गीत की फरमाइश करने वाले अगले हमारे श्रोता हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। समडील नवापारा से हमारे श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक और इनके साथी हैं श्रीमती अंकु, राघव गुप्ता। राजकोट से हमारे श्रोता हैं जैमिन कुमार, हेतल, कृष्णा, राकेश। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है इसी गीत की सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप। कालका से हमारे श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और इनके साथ हैं बिट्टा बजाज। कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरग कुमार। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंबार, डैनी, मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाबड़ी से हमारे श्रोता हैं खुदा बख्श खलीफा। नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें लिख भेजी है ईमेल हमारे श्रोता ने पीएस नवानकर, निर्वला और विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मोहरकर। अगले हमारे श्रोता हैं जो हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश इसी गीत की, मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाड़कर, रही श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से प्रणिता गवाड़कर, सिद्धांत, अर्जुन, साथी हैं बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि परी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म अनुरोध से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत यह है लक्ष्मीकांत ने, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु अर्णवानंद और सत्यम, मोहाड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और साथ में है गुट्टी भगत, बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, भटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और साथ में है चंपा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से हमारे श्रोता हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राविया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाली फैमिली, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सक्षम श्रेणिक चावड़, ज्योति अजीत, साथ में है लता राजा राम, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कबल पाठक, दीपक मल्होत्रा गवाया और साथ में है इनके भाई सुच्चा सिंह पाठक, जय पाठक और जयपाल यादव, मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत रोजस भाई, चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं शेफाली शेफी डेविस बिमला और साथ में है सतीश अनेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें लिख भेजते हैं इसी गीत की फरमाइश, भटिंडा रोड मंडी डब बली से हमारे श्रोता हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, साथ में हैं इनके तानिया, गणेशपुर गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश एटा से एम फारूक शेख, शेख समा परवीन, सायमा फारूक सरफराज और साथ में हैं इनके गुलफराज और बेबी मुस्कान। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अनुरोध का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अनुरोध का गीत किशोर कुमार की आवाज में। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म एक फूल दो माली के गीत की, जिसे गाया है आशा भोसले ने और इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने, बोल लिखे हैं इस गीत के देवेंद्र गोयल ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और साथ में है इनके माहिरा नूर। हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शाहजी बोटके, श्रीमती निंदा बोटके, अनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मन मीत, मनविंदर सिंह पांधा और साथ में है इनके जी एस रामगढ़िया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, साथ में हैं स्वीटी छाबड़ा। नूरनगर गंज डुंडवारा से हमारे श्रोता हैं उज्मा शेख, शिफा और साथ में हैं रिफा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और साथ में है रिधान खुराना। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और साथ में है तनवी वोट। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से हमारे श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। उत्तम नगर नई दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और साथ में है गीतिका खोरवाल। अगली ईमेल हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता ने यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, लिखने वाले श्रोता हैं संतोष खड़ से और साथ में है इनके विनोद खड़ से। शिवाजी नगर बाड़ाली देशमुख से हमारे श्रोता हैं राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंद्राताई, छकुलीताई, खांडवी बुलडाड़ा से, दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी अमरावती से, सुनैना पवन भोंडे और साथ में है इनके तनुज पवन। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म है एक फूल दो माली।

श्रोताओं, गीत आपके नाम कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा लगातार शामिल कर रही हूं आप सभी की भेजी हुई ईमेल के जरिए आपकी फरमाइशें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। संगीत से सजाया है इस गीत को एसडी बर्मन ने और बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी ने। और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और साथ में हैं पप्पी भाटिया। बाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंबल। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है इस गीत की मरहारा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और साथ में इनके सफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। एयरपोर्ट कॉलोनी राजकोट से हमारे श्रोता हैं अजीता पाटिल और साथ में प्रमिला पाटिल। चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अधीबा। अगली ईमेल हमें मिली है हमारे श्रोता लिखने वाले हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, बान्या, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से, खैल बाजार, पानीपत से। ये ईमेल लिख भेजी है हमारे श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुक्कू भाविक सिक्का। ग्राम बपोस्ट हररपुर मटकली से, हररपुर मटकली जिला बरेली से हमारे श्रोता हैं शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और साथ में हैं इनके डीजे प्रधान। अगली ईमेल हमें मिली है गांव बड्डाकर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लपप्रीत और साथ में हैं इनके करमजीत कौर। अगली ईमेल लिख भेजी है हमारे श्रोता ने लिखने वाले हमारे श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से। अगले हमारे फरमाइश करता है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और साथ में हैं इनके हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले की युगल आवाज़ों में।

सुनते हैं श्रोताओं अगला गीत फिल्म हम दोनों से, जिसे गाया है आशा भोसले ने। संगीत दिया है इस गीत को जयदेव ने और बोल लिखे हैं इस गीत के साहिर लुधियानवी ने। सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और साथ में हैं इनके बलवीर सिंह। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सविया और अनस साथ में हैं इनके रिहान। अगले हमारे श्रोता हैं रमेश कठेरिया, उमाकांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। मोहताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर और साथ में हैं इनके कुमकुम गुड़िया। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इस गीत की फरमाइश करते हैं। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा ने, साथ में हैं इनके प्रकाश अरोड़ा, चंदन, अंकुश और कुंभार गली श्रीरामपुर से हमारे श्रोता हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सनिका, पुनावले पुणे से अजय सोनबाने, करिश्मा, अविका सोनबाने, साथ में हैं विशाखा सोनबाने। अगली ईमेल में लिख भेजिए वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, साथ में हैं इनके रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगांव से ही हमारे श्रोता हैं हाजी इशहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और साथ में हैं इनके हाजी अयूब शेरी। अगली ईमेल हमें मिली है हमारे श्रोता की, ये लिखते हैं गणेशवारी कोल्हापुर से, लिखने वाले श्रोता हैं सांभाजी सुतार और इनके साथ में है राधिका। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और साथ में हैं इनके अमन अफरीदी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हिमालय की गोद से। इस गीत को गाया है मुकेश ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हमारे श्रोता हैं जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर और साथ में इनके मखायल और जैनब मुजावर। अगले हमारे श्रोता हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राविया शेख, शेख रहीम मुन्ना, गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, साथ में हैं इनके रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीश और मैक्स। इन सभी श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की और अगली ईमेल हमें मिली है इसी गीत के लिए गणेशवाड़ी कोल्हापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सामाजी सुतार और राधिका। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुविया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और परांजल राय इसी गीत की फरमाइश करते हैं। अगले हमारे श्रोता लिख भेजते हैं हमें इसी गीत की फरमाइश गांधीनगर गुजरात से। लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और साथ में हैं विशाल और इनके साथ निशा। वार्ड नंबर एक पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजते हैं। सेक्टर 8 भिलाई से हमारे श्रोता हैं प्रभा, अनुश्री, पूजा और डांडी लोहारा छत्तीसगढ़ से, राधिका रानी जयपुरिया और शंकर देव जयपुरिया इस गीत की फरमाइश लिख भेजते हैं। अगले हमारे श्रोता हैं करणवीर हाउस भुचो कैचनिया बठिंडा पंजाब से, परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप सिंह, कुलदीप सिमुएकम और साथ में इनके दमन और अभिजोत। सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं सुरेश टुकर, संजीव टुकर, गौरैया जालंधर से, दीपक सोनी, ऐरावत सोनी, जेल रोड झांसी से, आशा जादव, प्रभा जादव, डोंडी लोहारा बलौस से, प्रभा राधिका मुखर्जी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद से, हिमालय की गोद में, क्षमा कीजिए, का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म है तीन देवियां। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एसटी बर्मन ने, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा और साथ में इनके राजेंद्र माधव वर्मा। संगकोली नदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साथ में इनके साई गायकवाड़। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और साथ में इनके प्रोफेसर बसुधा बज्रसेन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, साथ में हैं इनके करुणा वर्मा। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजते हैं। बघेरा दुर्ग से हमारे श्रोता हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और साथ में हैं शौर्य नामदेव। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं इसी गीत की फरमाइश। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और साथ में इनके तरुण यादव। दंतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म तीन देवियों का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रोता हमारे जलालाबाद फेस्ट से, सुरेश कुकनेजा, पूनम अग्नेजा, विशाल प्रिया दिशानी और साथ में इनके निमित्त अहूजा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई, मेरा जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर।

0: अभी मार श्रोता आनंद ले रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम था गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 851 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बजने को है कुछ ही पले में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन का 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी हमारी प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों। अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर रहेगा समय नात कव्वाली का, जिसमें आज कलाकार रहेंगे शाहिद नियाजी और उनके साथी। दोपहर 1:30 पर रहेगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम। कार्यक्रम में आज चर्चा रहेगी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर और मुहर्रम पर भी चर्चा होगी। साथ में रहेगी वार्ता नारी के प्रति संवेदनहीनता और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में रील्स के दौर में बदलती संगीत सुनने का तरीका। और साथ ही रहेंगे टिप्स वेल्थ मैनेजमेंट। दोपहर 2:30 पर रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। हमारी द्वितीय सभा आरंभ होगी संध्या 5:00 आज शाम के साथ। युवाओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:10 पर। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत होगा संध्या 6:20 पर, जिसमें चर्चा रहेगी फसल पैदावार बढ़ाने में मिट्टी का महत्व, कृषि शंका समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम, किसानों की समस्याएं और उनसे जुड़े समाधान, लोकगीत और साथ ही में रहेगा कृषि संकेत कार्यक्रम। प्रस्तुति रहेगी विक्रांत चौधरी की। शाम 7:00 रहेगा शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज रहेगा तबला वादन, कलाकार रहेंगे निसार हुसैन खान। 7:31 पर रहेगा समय सुगम संगीत का, जिसमें आज नात आप सुनेंगे, कलाकार रहेंगे जमील अहमद। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम रूपक। रात्रि 10:00 आप सुन पाएंगे नात नोहे, नात में नोहे सुनेंगे आप, कलाकार हैं अलवीना। रात्रि 10:30 पर रहेगा समय राग रंग का। ये था विवरण हमारी प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: दी, ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।

0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
3: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना,
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन का 1:10 होने को है। कुछ ही पलों में होंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
6: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहज और रुद्रपुर असेंबली हलकों में 456 करोड़ रुपए से ज्यादा के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद की ये मुहिम हर खानदान की जिंदगी में नई उम्मीदों, नए मौके और नई खुशहाली की बुनियाद बनेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ज़रई रोड मैप, ज़राअत के शोबे में मरकजी और रियासती मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज और देही तरक्की के प्रोग्रामों का मुश्तरक जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने मरबूत काश्तकारी को फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को मेयारी पौधे फराहम करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर कायम किया जाएगा।
7: प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2-3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो ऐसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
6: मरकजी वजीर ने कहा कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने चने, दाल और सरसों की सरकारी खरीदारी की मुद्दत में तौसी की भी मंजूरी दी। वजीर आला ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अलनीनो के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत के हर ज़िले की तरक्की हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने असलाफ की विरासत को महफूज रखा है।
8: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
6: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर अयोध्या में राम मंदिर के चंदा फंड में मुबैना गबन के मामले में 18 नामजद और दीगर नामालूम मुलजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। मुलजमीन के खिलाफ गबन, धोखाधही और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा फंड के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्जाम सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दरखास्त पर 13 जून को SIT तश्कील दी थी। SIT मामले की तफसीली जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल नए मुकर्रर करदा रियासती ओहदेदारों की फेहरिस्त जारी की। इस फेहरिस्त में 8 जनरल सेक्रेटरीज, 19 नायब सदूर और 19 वुजरा शामिल हैं। मजीद बरां मगरबी ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के इलाकाई सदूर के साथ साथ मुख्तलिफ महाजों के सदूर का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने तमाम तबकात और इलाकों को जहन में रखते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम 9 तैनात ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। इसी दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज रियासत भर में लोग मुख्तलिफ करबला में ताजिये लेकर उनकी तदफीन कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मजाहब के लोग भी ताजियेदारी करते हैं। ताजियों को आज लखनऊ के मुख्तलिफ करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालकटोरा करबला, महानगर करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की ये पाबंदी ताजिए के जुलूस के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, दिन के 1:15 हुए हैं। समय है नात कवाली का। आज नात कवाली में कलाकार रहेंगे शाहिद नियाजी और उनके साथी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नात कव्वाली, आज कलाकार थे शाहिद नियाजी और उनके साथी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, दिन के 1:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

लेकिन आज लोगों का ये नज़रिया बदला है। आज बहुत सी लड़कियाँ अपनी शादी और बच्चों के साथ अपने सपने साकार कर रही हैं और इसमें उनका पूरा परिवार उनका साथ भी दे रहा है। हालांकि यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि एक औरत वर्क लाइफ बैलेंस तभी बना पाती है जब वह अपनी जिम्मेदारियां अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखती है। लेकिन फिर भी आज वह ख्वाहिशों के आसमान में अपने हौसलों के पंख खोलकर उड़ने के लिए वह आज़ाद तो है, पर आज के समय में अपनी वर्क प्लेस सूटेबिलिटी यानी कार्यस्थल पर अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, वो भी हर दिन, जिस वजह से शारीरिक और मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान उसे कम करने के लिए कई बार गलत तरीकों का, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने लगता है, जैसे सिगरेट, शराब या ड्रग्स यानी नशीली दवाओं का इस्तेमाल, जो जानलेवा भी हो सकता है। और ये लत सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, अब महिलाएं भी इस लत की शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारी युवा पीढ़ी भी हुक्का बार में पार्टी करती दिख जाती है। सखियों, अक्सर हम नशे को केवल एक बुरी आदत मान लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं बड़ी और मुश्किल समस्या है, क्योंकि नशा एक व्यक्ति से उसका स्वास्थ्य, उसके सोचने समझने की शक्ति, उसका आत्मविश्वास, उसके रिश्ते सब छीन लेता है, और इन सब से भी बड़ी उसकी स्वतंत्रता उसे भी छीन लेता है। व्यक्ति अपनी नशे की आदत का गुलाम बनकर रह जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की यह समस्या आज पैदा हुई समस्या नहीं है, और ना ही यह सिर्फ हमारे देश की समस्या है। यह समस्या तो विश्वव्यापी है, और इसलिए दुनिया को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त बनाने के लिए, इस दिशा में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया कि हर वर्ष 26 जून का यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ

दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज।

0: पूरे आत्मविश्वास से राष्ट्रपति भवन पहुंची। इसलिए आप भी हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास से करिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव है तो अच्छा संगीत सुनिए, लेकिन आजकल रील्स के इस दौर में संगीत सुनने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है। पूरा गीत सुनने की जगह सिर्फ 15 से 30 सेकंड का हिस्सा सुनना ही गीत की लोकप्रियता का आधार बन गया है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? अब ये तो जानना पड़ेगा, तो चलिए स्टूडियो से बाहर चलते हैं और जानते हैं किसी सखी से।
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना सिंह है। अच्छा आराधना जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं या नहीं?
2: जी हाँ बिल्कुल, रेडियो की तो बात ही कुछ और है।
1: जी वो तो है। अच्छा तो उसपे क्या सुनना आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
2: देखिए रेडियो में सबसे ज्यादा हम पसंद करते हैं अपने पसंदीदा गानों को, किसी के द्वारा की गई वार्ता को सुनना हमें पसंद होता है।
1: अच्छा,
2: समाचार पसंद होते हैं। एक जमाना वो था जब हम बहुत छोटे थे तो लाइट चली जाया करती थी, रेडियो पर हम क्रिकेट मैच सुना करते थे।
1: सही है। और आपने जैसे कहा कि आपको गीत सुनना सबसे ज्यादा पसंद है,
2: जी बिल्कुल,
1: तो किस तरह के गीत सुनती हैं आप ये बताइए?
2: मुझे सदाबहार गीत बहुत पसंद है। ऐसे अच्छा। गीत जिनके शब्द जो हैं, जो उनकी जो लिरिक्स है वो मन को छूने वाला हो। जैसे आज के टाइम पर बीट बहुत है, शब्द किसी को समझ नहीं आते।
1: बिल्कुल।
2: बीट पर इंसान के पैर थिरकते हैं, लेकिन अगर शब्दों पर विचार किया जाए तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को शायद हम अपने परिवार के बड़ों के साथ बैठकर सुनना पसंद नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
1: तो आज हम यही थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बातचीत के माध्यम से कि ये जो आजकल एक रील्स का शॉर्ट्स का ट्रेंड हो गया है और इसमें जो गीत होते हैं या गाने होते हैं वो मतलब कुछ सेकंड तक ही सीमित रहते हैं। इसमें ज्यादा लंबा कोई गाना आपको नहीं सुनाई देगा, कुछ सेकंड का गाना होगा और उस पर रील्स बनी हुई होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी वजह से लोग जो है वो गाने अब पूरा सुनना पसंद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा सुना अच्छा लगा फिर दूसरा फिर तीसरा, आपको क्या लगता है?
2: जी मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस चीज को मैंने भी महसूस किया है। अब जो पहले 5-5 मिनट के गाने हुआ करते थे, फिर 4 के हुए, फिर 3 के हुए, अब एक ऐसा दौर है रील्स ने उन 3 मिनट के गानों को भी अब कम करके 30 सेकंड में बदल दिया। 30 सेकंड में आप सोचिए कि हम कितना ही सुनते होंगे। 30 सेकंड में बस उन्होंने रील बनानी है, रील उस गाने के जो मुख्य शब्द हैं, जो मुख्य लिरिक्स हैं, उनको उन्होंने कैप्चर किया, जो उसके मुख्य हुक स्टेप हैं, गाने जिस पर वो आधारित है, जो उसके मुख्य डांस के स्टेप्स हैं, बस उनको कॉपी किया और फटाफट रील बनाई और पोस्ट कर दी। तो मुझे लगता है उससे गाने का जितना भी एक रस था, जितनी भी एक सुंदरता थी, वो सुंदरता खत्म होती जा रही है। बस हम अब 30 सेकंड पर अटक कर रह गए हैं। मुझे लगता है कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोगों में ना वो 2 मिनट का गाना सुनने के पेशेंस खत्म हो गए। देखा हमें पसंद आया किसी का हुक स्टेप, हमने उसे 30 सेकंड पूरा दिया, अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे दूसरा सेकंड देखना भी नहीं चाहते हैं, स्क्रॉल किया हमने सुनना ही नहीं है। ना कहीं जो गानों की सुंदरता है, उस सुंदरता का जो मुख्य भाग होता है, निचोड़ जो है रील्स के माध्यम से, वो 30 सेकंड में बदल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके कारण जो संगीत है, शायद कितने गाने ऐसे हैं जो आजकल नए ट्रेंडिंग हो रहे हैं, उनकी जो मुख्य लाइंस है वही हम सुनते हैं, पूरा गाना हमें पता ही नहीं होता कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ।
1: अगर मैं कहूँ कि रील्स की बात हम करें तो आजकल ज्यादातर लोग जो है वो रील्स देखते भी हैं और बनाते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नए कलाकार हैं उनके लिए ये रील्स जो है वो कितने हम कहें उपयोगी साबित हुए?
2: देखिए जहाँ तक मुझे लगता है रील्स बना करके कुछ लोग तो अच्छा खासा अपना उन्होंने इनकम सोर्स बना लिया है, ठीक है, रील्स के माध्यम से नाच गाकर, अच्छी बात है, नाचना गाना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन क्यों जो कला है वो सिर्फ कलाकार ही जानता है, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी होती है मैम,
1: बिल्कुल,
2: मुझे जहां तक लगता है। तो वही चीज है जो सिंगर्स हैं उनका अपना एक महत्व है, जो रील्स बनाते हैं उनका अपना एक वैल्यू है। हीरे को आप किसी भी एक चमकती चीज से कंपेयर करें तो वो मुझे नहीं लगता वो हीरा बन जाएगी
1: जी।
2: तो जो कलाकार हैं वो तो कलाकार ही रहेंगे, भले ही हम और आप या और लोग कितना ही उसे कॉपी कर ले, वो

0: शायद वो उतने उभरते कलाकार नहीं हो सकते। और रील सिर्फ एक मुझे लगता है कि इनकम सोर्स हो गया है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो रही है। अधिक से अधिक हम रील्स देख रहे हैं, हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जिनकी इनकम हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए एक उनका बिजनेस टाइप हो गया है। लेकिन जो लोग सिर्फ उसे स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, मुझे लगता है उनका उनमें टाइम वेस्ट है।
1: अच्छा, तो आराधना जी, अब हमने इतनी सारी बातचीत कर ली है, अगर आपसे कहें कि आपका जो पसंदीदा अगर कोई गीत हो और आप गुनगुनाना चाहें तो।
0: पसंदीदा गीत मेरे पुराने बहुत पसंदीदा गीत रहे हैं, जितने भी हैं वो 90s वाले हैं या उससे पहले के हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग सॉन्ग शायद मुझे याद भी नहीं रहते।
1: तो कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो कोई एक पुराना सा आपकी पसंद का गीत अगर थोड़ा सा
0: जी।
1: गुनगुना दे तो।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी तेरे नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है। मुझे पता है मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है।
1: हमें पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो जरूर कहेंगे कि हाँ, आवाज में तो मिठास है। तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, अपने कार्यक्रम में हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, आजकल ऐसा लगता है कि हम जीवन जीना भूल गए हैं, बस जीवन के खूबसूरत पलों को बर्बाद कर रहे हैं बेफिजूल की चीजों में। अब जब छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो वह भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। और बड़े भी फोन स्क्रॉल करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे पूछ रहे हो

0: सखियो, जीवन का हर पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि अब इंसान संवेदनहीन होता जा रहा है। किसी की तकलीफ फोन में वीडियो बनाकर शेयर करने भर तक की रह गई है। लेकिन ये समस्या और गंभीर हो जाती है जब ये संवेदनहीनता एक नारी की दूसरी नारी के प्रति हो। आज इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती सरला देवी के विचार, आइए सुनते हैं।
1: शब्दों के विकास के साथ मानव सभ्यता के विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि स्त्री कितनी रहस्यमयी है, कितने गुण व प्रतिभाओं से ओतप्रोत है। प्रोफेसर राइडन के अनुसार स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली है। उन्होंने ही जंगल में मारे मारे भटकते हुए पुरुषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन प्रदान किया है या घर बसाया है। मानव का स्त्री के साथ शारीरिक, रागात्मक, धार्मिक संबंध होने के कारण स्त्री के स्वरूप भेद होते हुए भी और सूचक शब्दों की अलग अलग रचनाएं हुई हैं। स्त्री के पर्यायवाची शब्दों की अपनी यात्रा रही है, जिसमें नारी, स्त्री, बामा, अबला, प्रमदा, महिला, वोमेन आदि नामों से नारी को संबोधित किया गया है। लेकिन आम बोलचाल व व्यवहारिक जीवन में जो शब्द ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो है स्त्री और नारी। हर शब्द का अपना अर्थ होता है, या यूं कहें कि अपने अर्थ के कारण ही किसी शब्द का जन्म होता है, और अर्थ में दी छिपे होते हैं उसके अनेक गुण। स्त्री शब्द की उत्पत्ति का अपना इतिहास है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों के अपने गुणों के आधार पर गहरे अर्थ हैं। नारी शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता है, परंतु यज्ञ में नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। पंतजलि में नारी शब्द को नर से जोड़ा गया है। साथ ही पंतजलि में स्त्री शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबका समुच्चय स्त्री को ही माना है। स्त्री शब्द की व्याख्या करना सरल नहीं है। स्त्री का हर रूप अपने भीतर अनेक रहस्य छिपाए होता है, फिर वो माँ, बेटी, बहू एवं पत्नी का हो, या प्रेमिका का, गृहिणिका का हो, या दुर्गा का, या चंडी का। स्त्री हर रूप में निराली व अपरिभाषित है। नारी शब्द अपने आप में पूरा हो चला है। एक वक्त था जब महिला प्रताड़ित थी, वो प्रताड़ना चाहे मानसिक हो, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक। उस समय वो हर जुल्म सहती थी, आज समय ने करवट ले ली है। आज महिलाएं चार दीवारी की जंजीरें तोड़कर आसमान में अपने पंख फैलाए बेपरवाह उड़ रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में हिंदू स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज स्त्रियां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दासता के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं। स्त्रियों पर लादी गई निर्योग्यताएं लगभग समाप्त हो गई हैं। स्त्रियां जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं। स्त्री शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन नारी के प्रति संवेदनहीनता बढ़ती ही जा रही है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की प्रताड़ित की गई नारी को प्रताड़ित कर रही है। वर्तमान काल में जब नई बहू घर में आती है, तब उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को न समझकर सास उसको हर तरह से हर बात उसके ऊपर थोपना चाहती है। यद्यपि एक तरफ शिक्षा का बाहुल्य हो रहा है, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा अभी भी मानसिकता में घर करे हुए है। हमेशा सास यही कहती है, हमारी सास ने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था। आज जब वो सास बनी है, तब वो अपनी बहू से अपनी सास का बदला लेना चाहती है। जिस प्रकार से रैगिंग करने वाले हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे सीनियर्स ने हमारे को कितना तंग किया था, आज हम सीनियर जब इस स्थिति में आ गए हैं, तब वही बदला हम अपने जूनियर से लें। इस मानसिकता को शिक्षा के असली स्वरूप द्वारा, प्रचार व प्रसार द्वारा बदलना होगा। विचारों को सुसंस्कृत करना होगा। ये संस्कार व संस्कृति के द्वारा

0: ही संभव है। वैवाहिक तथा पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हो रही है। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा जहां परिवार में स्त्रियों को सम्मान युक्त व अधिकार पूर्ण वातावरण मिला है, वहां आज भी बाहर से आई बहू को कुछ घरों में बिना वेतन की नौकरानी की तरह घर की सासू माँ व्यवहार करती है, जहां उसको एक मित्र सलाहकार व सहयोगी समझना चाहिए था। लेकिन आज के आंकड़े देखने पर संज्ञान में आता है कि संयुक्त परिवार के टूटने व एक ही परिवार में तलाक जैसी समस्या जो दिन प्रतिदिन सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है, उसके प्रति घर की बुजुर्ग नारी ही जिम्मेदार है। एक ओर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई है, शिक्षा हमें विकास की ओर अग्रसर कर रही है, संयुक्त परिवार के शोषण के स्थान पर स्वयं जीविका उपार्जित करना व्यक्तिवादी विचारधारा से पोषित होकर अच्छा समझने लगा है। आर्थिक जीवन में प्रवेश के कारण स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिला है। संपत्ति के अधिकार मिल जाने से स्त्रियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है। लेकिन यदि महिला का जहाँ भी बॉस है, अगर वो अधिकारी है, तब उससे काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नारी होकर भी नारी के सारे नियम कानून बताए जाते हैं, कार्य को सुगमता व शीघ्रता से नहीं करा जाता है तथा नियम कानूनों में उसे कर लिया जाता है। पश्चिमी संस्कृति में स्त्री पुरुष समानता, स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है। पश्चिम में संपर्क का प्रभाव हमारी भारतीय स्त्रियों पर भी पड़ा है। वे पश्चिम के मूल्यों, विचारों और विश्वासों को अपनाने लगी हैं। नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं व स्त्रियों की स्वतंत्रता व गतिशीलता में वृद्धि हो गई है। प्रेम विवाह व अंतरजातीय विवाह का औसत भी बढ़ गया है, लेकिन वहाँ भी नारी संवेदना आगे आ जाती है। जैसे जैसे स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, उधर औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रतिक्रिया तेजी से हो रही है, लेकिन स्त्रियों की सामाजिक चेतना उसी तरह बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए प्रोफेसर पणिक्कर ने यह भविष्यवाणी की थी कि स्त्रियों को संपत्ति विवाह के क्षेत्र में मिलने वाले अधिकार हिंदू समाज में एक क्रांति उत्पन्न कर देंगे तथा उनके लिए एक ऐसी कानूनी संहिता, नई नैतिकता और सामाजिक संपर्क के सिद्धांतों की रचना करेंगे, जिनके फलस्वरूप प्राचीन स्मृतिकारों की व्यवस्थाओं का स्थान नए विवेकपूर्ण शास्त्र ग्रहण कर लेंगे तथा धर्म की पोल में घुसी हुई प्रक्रियावादी रूढ़ियों और लोकाचारों को दूध में पड़ी मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया जाएगा। हिमालय से निकलने वाली जीवन दायिनी गंगा के प्रभाव में भी अक्सर कील कांटे आ जाते हैं तथा वो बहकर किनारे की ओर भागते हैं। इसकी तुलना यदि विश्व जीवन में सरित प्रभाव मानकर औरत से की जाए, तब सारे रूप षष्ठी की अनुपम कृति उपलब्ध होते हैं तथा लगते हैं। हर कृति अपनी कहानी खुद लिखती है। इसमें आवेश है, दावानल है, सुरम्यता है, गीत है, मान सम्मान है व खुद की पहचान की आकुलता है। ऐसे प्रभावान नारी के जीवन की गति हमारी युवा पीढ़ी की बदलती सोच और नई और पुरानी होती हुई दोनों पीढ़ियों की तारतम्यता को एक करने की आज जरूरत है। घर बाहर नाइंसाफी छोड़कर बदलते परिवेश में विचार बदलने होंगे व नई पीढ़ी को पाश्चात हवा के साथ साथ अपने पारंपरिक मूल्य, संस्कृति व संस्कार का सम्मान करना ही होगा। तभी नारी की नारी के प्रति संवेदनशीलता संवेदनशीलता में परिवर्तित हो जाएगी।
1: अभी आपने सुनी नारी की नारी के प्रति संवेदनहीनता विषय पर सरला देवी की वार्ता। सखियों, आज मुहर्रम महीने का सबसे पावन दिन आशुरा है। ये दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस अवसर पर इमाम हुसैन व उनके साथियों के अद्वितीय बलिदान को याद किया जाता है, जिन्होंने अन्याय के सामने झुकने के बजाय सत्य का मार्ग चुना। उनका जीवन हमें धैर्य, साहस और मानवता के मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सखियों, सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन इस मार्ग पर चलकर मंजिल जरूर मिलती है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंच आती ही है। और जब बात महिला सशक्तिकरण की हो, तो महिला सशक्तिकरण का सबसे जरूरी पहलू है आत्मनिर्भरता। और भारत सरकार महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे उद्योगों को पैसा, प्रशिक्षण, तकनीक, बाजार और सही नीतियां देकर आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रही है, क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देश और दुनिया को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर वर्ष 27 जून को विश्व भर में MSME डे मनाया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटे व्यवसाय ही बड़े सपनों को साकार करते हैं और इनके आगे बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी और साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने का जो लक्ष्य है वो भी करीब आ जाएगा। सखियों, पैसा कमाने से ही हम आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, बल्कि आगे के लिए उसे बचाकर चलने से बनते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स जो आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। तो सबसे पहली आदत तो यह है कि आप खर्च का एक अलग खाता बनाएं, एक ऐसा बैंक अकाउंट जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ही हो और उसमें सिर्फ उतनी ही राशि रखें जितनी आप हर महीने खर्च करना चाहती हैं। साथ ही हर महीने के खर्चे का अकाउंट स्टेटमेंट निकालकर एक हिसाब रखें कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। दूसरी आदत है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जब भी आपको सैलरी या कहीं से कुछ इनकम मिले तो बचत की रकम को सबसे पहले अपने निवेश खाते यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और जो पैसा बचे उसी में अपने पूरे महीने का खर्चा करें। सखियों, समय के अनुसार बचत के तरीके भी बदले हैं, तो आप भी पैसे को घर में या सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर बचत ना करें, बल्कि सोच समझकर किसी SIP या म्यूचुअल फंड में लगाएं, क्योंकि समय के साथ चलना ही समझदारी है। और फिलहाल समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कुछ नए विषयों के साथ हम फिर लौटेंगे। इसी वादे के साथ अपनी सखी दीपशिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी दीपशिखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for a united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India along with 34 nations sign US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. Home Minister Amit Shah today called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi.
1: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
0: Mr. Shah said authorities seized around 2.6 million kilograms of synthetic drugs between 2004 and 2014. In comparison, the quantity of synthetic drugs seized increased to 11.8 million kilograms between 2014 and 2026. He said the figures show that the government's campaign against drug trafficking is making steady progress. Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes.
1: The first pillar is enforcement, intelligence and operations. Its objective is to carry out targeted intelligence-led operations across the entire network and dismantle these criminal networks. The second pillar is precursors and synthetic drug control. We must adopt a strategy to stop drugs at the production stage itself. The third pillar is capacity building, coordination and monitoring. This pillar has been designed to strengthen the system, enhance coordination and modernize our institutional framework.
0: The Uttar Pradesh police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. The trust had requested a special investigation, following which Chief Minister Yogi Adityanath ordered the formation of an SIT. More from our correspondent.
2: The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav, alias Tinu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered on Thursday. With Sushil Chandra Tiwari's report from Lucknow, Komadi Parikh, Akashvani News.
0: India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence, AI technologies, at the second PAC Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Speaking to the media, Mr. Hellberg said the United States is excited to deepen its partnership with India, describing the bilateral relationship as one of the most consequential of the 21st century.
3: We're incredibly excited to partner with India. India was one of the first top 10 countries to join PAC Silica. The U.S.-Indian relationship, we believe, is one of the single most consequential bilateral relationships in the world in the 21st century. We were able to cover a lot of very timely issues in our bilateral exchanges with India yesterday, including on the Quad, on the Trust Initiative, and we're really, really excited to have India, along with so many representatives of the Indian business sector, at this summit.
0: India was represented at the summit by Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology S. Krishnan and representatives from the Indian industry. India had joined the initiative in February this year on the sidelines of the AI Impact Summit held in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani on Sunday. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has reaffirmed its commitment to women-led development at Shanghai Cooperation Organization Women's Forum SCO 2026 at Bishkek in Kyrgyzstan. Addressing the event virtually today, Minister for Women and Child Development Annapurna Devi emphasized that women are not merely beneficiaries of growth, but the most powerful drivers of Viksit Bharat by 2047. Highlighting the role of women in economic development, the minister said nearly 100 million women are organized into over 9 million self-help groups, of whom more than 30 million have become Lakhpati Didis. She said schemes like Mission Shakti and Mission Poshan 2.0 are advancing women's safety, care and economic participation. The minister also reaffirmed the country's readiness to share experiences and deepen cooperation with SCO partners in advancing women's economic leadership and well-being across the region. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Venezuela, the death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. German Ambassador to India, Philip Ackermann, has said India has emerged as a global leader in renewable energy. Talking to a news agency, Mr. Ackermann underscored the success of the Partnership for Green and Sustainable Development between India and Germany, highlighting robust cooperation across trade, political and strategic sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackermann expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game changer that will significantly incentivize more investment in India from German businesses. Sweltering temperature is shattering records across Europe as the continent battles with a deadly heat wave. The heat wave has disrupted power supplies and forced the closure of schools and cultural landmarks. France endured its hottest days in history this week, with western regions witnessing temperature ranging between 39 to 43 degrees Celsius. Wednesday was the United Kingdom's warmest June day on record, with the mercury climbing to 36.1 degrees Celsius. Spain, Germany, Austria, the Netherlands and Switzerland have all broken June temperature records at several locations. Several lives have been lost, including dozens of people who have drowned in France in the past week while trying to cool down in the punishing heat. United Nations Climate Change Chief Simon Steele has said Europe's heat wave has the fingerprints of the climate crisis all over it. He called for a faster shift to renewables, protecting forests and boosting climate resilience. The Inter-Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Bihar, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Konkan, Goa, central Maharashtra and some parts of northeastern India. IMD said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand in the next 3 to 4 days. The Met Department has also forecast heat wave conditions at isolated places over Jharkhand and East Uttar Pradesh today. Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. Hazrat Imam Hussein laid down his life for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziya processions are being taken out to mark the occasion. Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein in a social media post. He said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. In Delhi, Muharram processions are being held in different locations, including Jama Masjid, Nizamuddin, Okhla and Mehroli. In men's cricket, India will take on hosts Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
5: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
4: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
5: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
4: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
6: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
7: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
8: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
4: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
8: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
4: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
9: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
4: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी

0: जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Come, come here!
3: Come,
4: sure, sure!

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे

0: सके तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
1: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
2: सब कुछ ठीक तो है ना?
1: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
2: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
1: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
1: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए

0: ये एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था, जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए, सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो।

0: अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों 6 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
6: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
9: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
9: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
9: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है,
3: और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
6: वो बहुत बड़ा भी होता है,
3: बहुत बड़ा होता है,
9: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कई
6: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ,
9: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
3: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
6: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
3: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
9: नहीं
3: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
3: फिर भी जीवन दाता है,
5: फिर भी जीवन दाता है।
3: धरती काटे चक्कर इसके,
5: धरती काटे चक्कर इसके,
3: लगे ये चलता जाता है,
5: लगे ये चलता जाता है।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे,
5: सर्दी गर्मी बनते इससे,
3: ये दिन रात बनाता है,
5: ये दिन रात बनाता है।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
3: सूरज ये
5: कहलाता है।
3: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
6: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
3: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
9: जल्दी आना मौसी।
3: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
6: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
3: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
6: वो भी दस पूछेंगे।
3: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
6: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
3: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
9: नहीं, 80 हो जाएंगे।
3: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स, और एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव पर अब संपन्न हो रही है FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम विधिवत उपलब्ध रहेंगे। संध्या 5 बजे हमारी द्वितीय सभा मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आरंभ होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
10: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
11: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
12: दोस्तों, नशीली चीजों और पदार्थों के निवारण के लिए प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस पर और जानकारी हम आज लेंगे अपने इस कार्यक्रम में। आज ये विशेष अंक जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम ड्रग्स अब्यूज पर ज्यादा बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे दो रेडियो डॉक्टर आ चुके हैं स्टूडियो में। हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विष्णु।
13: धन्यवाद।
12: हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे रेडियो डॉक्टर सुनील वात्सायन जी, आप डी एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और चेयरपर्सन हैं नाडा इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्टूडियो में।
13: धन्यवाद शालिनी जी।
12: विश्व भर में इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। आप कुछ बताएं इसके बारे में, ये दिवस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
13: देखिए, ये जो दिवस है ये 1987 में जो कन्वेंशन हुआ, जिसमें नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक्स जो ड्रग्स थी, सब्सटेंसेस, और उनकी इलाज और इलाज के साथ साथ जो ट्रैफिकिंग है उससे संबंधित जो एक कन्वेंशन हुआ, तो उस समय ये सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन लोगों ने एक विचार किया 1987 से 1988 के दौरान जो है, कि क्यों ना इसको हमें हर साल एक दिवस के रूप में मनाएं। मैं समझता हूँ कि 35 साल 36 साल से तो मैं भी मना रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही हम लोग इसको भी त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं। और त्यौहार का मतलब है कि पूरे साल हम लोगों की तैयारी चलती है और फिर हम इसको एक दिवस के रूप में मनाते हैं। जागरूकता के लिए ये एक संकल्प को दोबारा से रीडेडिकेट करने का एक अवसर होता है। रुकावटों को देखना है कि जो रुकावटें कहीं उन लोगों को जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं, इलाज जो करवाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुँच पाते, तो उनमें क्या रुकावट हो सकती है, क्या उनके साथ को ट्रीटमेंट रेडीनेस की बात हो सकती है, और उसी तरह से प्रिवेंशन पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, चाहे वो सरकार की बात कहें चाहे अगर हम सोसाइटी की बात किए, क्योंकि समय इतना लंबा हो गया है और ऐसा लगता है कैंसर की लड़ाई कहीं रुक तो नहीं गई है, कहीं संभल तो नहीं गई, यानी कि फिर दोबारा से हमें एक आशा होती है कि नहीं हमें और काम करना है और काम करना है।
12: बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं रुकना नहीं है और जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करना है और अवेयरनेस बढ़ानी है। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम को इस मंच के माध्यम से हम पूरे अपने श्रोता समूह तक पहुंचा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा समूह है, मैं बताना चाहूंगी, जो रेडियो डॉक्टर को सुनता है, हमारे नियमित श्रोता है। इसके अलावा ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हमारा कार्यक्रम, अगर आप चाहें तो उसको पुनः सुन सकते हैं। आकाशवाणी AIR हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर रेडियो डॉक्टर के बहुत सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, आपको जानकारी भरपूर मिलेगी, बस जरूरत है उस जानकारी को उपयोग में लाने की। तो आज जो जानकारी मिलेगी उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। बस कोशिश हमारी यही रहती है कि आपकी जो समस्या है इस जुड़े हुए टॉपिक के साथ वो हमारे साथ आप शेयर करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो उसमें आपको उसका क्या निवारण हो सकता है, सही किस तरह से उसको आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी यहां से हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर विष्णु आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से प्रकार के नशा जो अक्सर लोग करते हैं वो किस तरह के और कितने प्रकार के हो सकते हैं?
13: देखिए, जो नारकोटिक्स जो हम जिनकी ड्रग्स की बात करते हैं वो बेसिकली तीन तरह के ड्रग्स होते हैं। एक तो होता है नेचुरल अकरिंग, जो मतलब नेचर में पाए जाते हैं, दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक और तीसरे होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। जो नेचुरली अकरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी प्लांट से मिलते हैं, जैसे ओपियम प्लांट से मिलता है, और ओपियम प्लांट से जैसे आपका मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, खुद हो गया, कैनाबिनिस से मिलता है, उसमें आपका जो गांजा हो गया, भांग हो गया, और तीसरा होता है कोकेन जो कि आपके कोका प्लांट से मिलती है। सेमी सिंथेटिक क्या होता है कि जो आपके नेचुरल अकरिंग जो ये ड्रग्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा रिफाइंड करके बनाया जाता है। जैसे आपका हीरोइन है, ये सेमी सिंथेटिक फॉर्म है आपका ओपियम प्लांट का। और जो सिंथेटिक प्लांट, जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं वो टोटली सिंथेटिक होते हैं, केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि आपका LSD हो गया, MDMA हो गया, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं। तो इन तीनों का ही जो रोल है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका रोल।
12: तो ड्रग्स का अब्यूज की बात होती है, जब हम आज बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज की बात होती है, तो ड्रग इसका मतलब फायदेमंद भी हो सकता है तभी उसके अब्यूज की बात होती है, फायदा क्या होता है ड्रग्स का?
13: देखिए, जब ये ऐसा नहीं है कि ओपियम आज हमें एक साल पहले मिला या दो साल पहले मिला, सदियों पुराना प्रोडक्ट है, सदियों पुराना प्लांट प्रोडक्ट है, और इसी तरह कैनबिस है, ये भी सदियों पुराना प्लांट प्रोडक्ट है। पुराने जमाने में इन चीजों को रिक्रिएशनल ड्रग्स के रूप में लोग यूज किया करते थे। कई जगह पे जैसे किसी को मिलिट्री वगैरह के अंदर या युद्ध वगैरह होते थे, वहां पे एक तरह से एनाल्जेसिक की तरह यूज किया करते थे। जो सेनाएं होती थी, जो उनके कमांडर होते थे, वो इन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक
14: उनके लिए बूस्टर की तरह काम करते थे, उन्हें देखे कि वर्क उनकी एफिशिएंसी या एनर्जी का लेवल जो एनहेंस कर देते थे उसकी तरह यूज किया करते थे। तो वो तो इसका एक पहलू हो गया। और आज के मेडिकल साइंस में भी अगर हम देखें तो ओपिएड के जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ओपियम से मिलते हैं सिंथेटिक रूप के अंदर जो रिफाइंड करके मिलते हैं, वो मेडिसिनल यूज में भी काम में आते हैं। जैसे मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं, वो किसी को सीवियर कार्डिक पेन होता है तो हम उसमें मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। कोई टर्मिनली इल पेशेंट, कैंसर का पेशेंट होता है जिसको बोन पेन, सीवियर बोन पेन होता है जो किसी भी एनाल्जेसिक से ठीक नहीं होता, वो कई बार ओपिएड प्रोडक्ट से ठीक हो जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस भी हैं
12: जी।
14: लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों की एक आदत होती है कि जो चीज जिस अच्छे काम के लिए बनी होती है ना उसको हम डिफरेंट वे में देखने लग जाते हैं कि हम उसको कैसा यूज करें,
12: और यही अब्यूज,
14: यही एक अब्यूज, वो शुरुआत उसकी ऐसे ही होती है
12: जी। तो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, पहले हम इनको ले लेते हैं, गाना बाद में सुनेंगे क्योंकि हमारे लाइन पर हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो
15: जी, नमस्कार।
12: जी नमस्कार,
15: जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा
12: हूं। जी जी, जय किशन जी, आपका स्वागत है। पहले आप बन गए हैं हमारे लिसनर जिन्होंने कॉल लगाई है आज जी।
15: मैडम बस आप लोग मिलवा देते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है
12: जी, और जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और बताएं क्या प्रश्न है आपका।
15: मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भांग होती है जो ठंडाई में बना के लोग पीते हैं और वो भी नशा होता है, तो क्या भांग पीना भी नशा है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, आदमी बीड़ी पी रहा है या शराब पी रहा है, जो भी पी रहा है, आज जितना हम सरकार का खर्चा इनको ठीक करने में लगता है, छोटा बच्चा भी सिगरेट बीड़ी पीने लगा है, खैमी खाने लगा है, और जो कुछ लड़के मैंने देखे हैं कि जो सोल्यूशन को सूंघते हैं वो भी एक नशा है, बस कृपया बताएं।
12: जी जी, बहुत अच्छी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने उठाई है अग्रवाल जी, कि नशा करने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में अभी मैं अपने विशेषज्ञों से पूछूंगी, लेकिन एक और श्रोता जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
16: मैं द्वारका दिल्ली से बोल रहा हूँ, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
12: जी हाँ, अपना नाम बता दें।
16: गिरिराज नाम है मेरा, और जैसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, वो आदत छूट नहीं रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
12: चलिए आप हमारा कार्यक्रम सुनिए सबसे पहले, तो इसमें बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी, कैसे ये आदत छोड़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं जयकिशन अग्रवाल जी के प्रश्न पे आऊंगी, क्या भांग भी नशे में आता है, उन्होंने ये जानना चाहे, और बीड़ी सिगरेट का क्यों बढ़ रहा है ये तो मैं बाद में बात करूंगी, भांग भी नशे में आता है?
13: बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि ये नेचुरल फॉर्म है, मगर इसको हम अगर देखें तो भांग या चरस, गांजा, ये एक ही प्लांट से ही तीनों चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ सवाल आता है कि ये जो हमारा प्लांट है और ये जो चीज़ है, ये मूड अल्टर करता है हमारा। और मूड अल्टर का मतलब है कि यहाँ पर वो एक ऐसे भाव या ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, यानी कि वहाँ तक वो बीमारी तक पहुँच सकते हैं आप। तो ये जो चीज है, ये भांग हमारे यहाँ पर, क्योंकि उस समय इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता रहा है, बट ओकेजनल हुआ है। बट अगर वहां पर एक ऐसी स्थिति बन गई कि जहां पर वो रेगुलर ले रहे हैं, यूज से अब्यूज तक पहुंच गए और डिपेंडेंसी पहुंच गए अगर उसी के अंदर, तो वहां स्थिति अनमैनेजेबिलिटी की तरफ चली जाती
12: है। स्टेजेस हो सकती हैं आपके हिसाब से, कि कभी ओकेजनली ले लिया साल में एक बार दो बार,
13: तो मगर वो जो ओकेजनल भी है वो उतना ही नुकसान और परेशान कर सकता है जितना बार बार लेना है।
12: अच्छा,
13: क्योंकि आप जब एक बार लेते हैं तो उसमें जो आपकी मन स्थिति होती है वो आपको काफी कुछ पीछे ले जाती है, और उस पीछे में जो जाने में जो आपकी जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि आप समस्या का हल जो है वो भांग में जब आप ढूंढने लगते हैं तो समस्या आपकी बढ़ गई, चाहे वो एक बार ही ले या एक से अधिक बार ले।
12: इसीलिए कहते हैं शायद की लत पड़ जाती है, वो जो लत वाली जो एक बात कही जाती है ड्रग्स के साथ।
13: नहीं, लत के साथ साथ, क्योंकि लत तो थोड़ी सी देर में पड़ती है।
12: अच्छा,
13: मगर जो पहला यूज ही है, मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें उस समय जो हम, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम होली का एक मैं बात को कहूं कि होली पे अक्सर इसका इस्तेमाल होता है
12: जी।
13: वो सवाल आता है कि हम या तो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हम कोई ना कोई एक ऐसे कारण के लिए ले रहे होते हैं, मगर वो कारण तो पीछे छूट जाता है और वो बार बार का इस्तेमाल जो है हमारी लाइफ को अनमैनेजेबिलिटी की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपने, क्योंकि आप अपने कंट्रोल को लूज करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप फ्रीली जीना चाहते हैं, तो आपने वो वैसा बिना नशे के नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है समाज में कि हर समय अगर आपको कंट्रोल करा जा रहा है, पेरेंटिंग वाला बहुत ज्यादा कंट्रोल वाला हो रहा है, आपका स्कूल जहां हर चीज अगर कंट्रोल में आ रही है, तो व्यक्ति अगर खुद अपने को फ्री महसूस नहीं कर रहा है, एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नशे की समस्या यानी कि भांग या कोई ऐसे जितने भी शराब या तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मैं उस समय के लिए कम से कम थोड़ी देर के लिए उन संवेदनाओं में घो जाऊं।
12: बिल्कुल सही आपने बोला सुनील जी, कि मैं इसके बाद यही पूछना चाह रही थी कि क्यों ये कारण है, और उन्होंने भी बोला कि अग्रवाल जी ने भी बोला कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है आदत, तो क्यों बढ़ती जा रही है? शायद कंट्रोल्ड एटमोसफियर उन्हें फील होता है, या लोग ज्यादा लिबरल होना चाहते हैं, आज का जो युवा है वो खुला रहना चाहता है या एक इंडिपेंडेंस चाहता है।
13: इसमें एक है ना जो डिपेंडेंस, एक शब्द होता है टॉलरेंस,
12: टॉलरेंस।
13: तो टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस का मतलब यहां पर है कि जो असर, चाहे वो भांग हो चाहे वो अफीम का कोई भी एक क्वांटिटी, अगर मैंने एक ग्राम ली है अभी, तो जो असर मैंने अभी महसूस किया है वही असर को लेने के लिए अगली बार या आने वाले टाइम में मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा।
12: अच्छा।
13: और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसीलिए नशे का जो तरीका है वो भी बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति नशा ले रहा है उसके पास पैसे भी कम होते चले जाते हैं, रुपया पैसा भी कम होता चले जाता है, और उसकी जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जाती है। टॉलरेंस का मतलब है उसकी नशे की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो शराब की बात कहें, और वो अपने को नॉर्मल पाता है जब वो उतनी क्वांटिटी ले लेता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो पूरी बोतल पी ली चाय और पूरी शराब पी ली, मगर उसके बावजूद भी मैंने गाड़ी सही चला ली। इसका ये मतलब नहीं है कि वो, क्योंकि उन्होंने वो जो एक पैक जो पीना था जिससे उन्हें वो लगता चेंज आता, वो घर जाके पियेंगे, और इस
12: तो
13: बीच
12: बॉडी अभ्यस्त हो चुकी है
13: अब वो केवल, यानी कि बॉडी को नॉर्मल करने के लिए वो एक बॉटल चाहिए थी।
12: जी जी जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं लाइन पर। हेलो,
17: नमस्कार जी मैडम जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं राजकुमार चावला से बोल रहा था जी।
12: जी जी बताइए।
17: मेरा सवाल है जी, आजकल ये नए नए बच्चे हैं जी, नई उम्र के, ये इंजेक्शन लेते हैं जी, कहते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं कोई नशे के, तो ये कौन से इंजेक्शन होते हैं और कितना नुकसान करते हैं बच्चों को जी?
12: हम पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर विष्णु हमारे साथ। डॉक्टर साहब, इंजेक्शंस किस चीज के होते हैं और कितना नुकसान कर सकते हैं आपको?
14: देखिए, जितने भी ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, ये सभी तीन रूप में बेसिकली लिए जाते हैं। या तो ये ओरल लेते हैं जिसमें छोटे से गोलियां बना के या किसी फूड में मिला के लेते हैं। सेकेंड उसका पाउडर फॉर्म होता है जिसको स्निफ करके लेते हैं। तीसरा फॉर्म क्या होता है कि उसको वो डाइल्यूट कर लेते हैं, पानी में मिला लेते हैं, फिर उसके इंजेक्शन बना के लगाते हैं। तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज होता है आईवी इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूजर करते हैं वो हीरोइन का करते हैं। तो ये जो हीरोइन होती है ये बेसिकली ओपीएम का प्रोडक्ट होता है, जो रिफाइंड फॉर्म है ओपीएम का उसका प्रोडक्ट है जिसको कि इंजेक्टेबल वो यूज करते हैं।
12: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे और आप अपने प्रश्न, आप अपनी जिज्ञासा जो हम मैसेज के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, तो इस गीत के बाद हम सारे ही मैसेजेस कॉल लेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम ड्रग एब्यूज पर बात कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एब्यूज पर और हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो
0: जी. जी स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका.
1: काली मैम नमस्ते, अमित की बात कर रहा हूँ.
0: जी जी अमित जी बताएं क्या प्रश्न है आपका.
1: मैडम प्रश्न मेरा उन इंसानों के लिए है जो इंसान खुद तो मतलब नशा करते करते हैं दूसरे को धकेलने के लिए बोलता है कि आप भी करो और किससे मनोबल बढ़ता है, तो उन इंसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी बात है. और अभी हम बात कर ही रहे थे कि क्या कारण होते हैं कि युवा इसमें ज्यादा के ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण है उसमें. क्यों सुनील जी, कि लोग खुद तो ले ही रहे हैं और दूसरे जो बच्चे होते हैं या उनका ग्रुप होता है वो उनको मोटिवेट करते हैं कि लेके तो देखो, ट्राई तो करो. वो कहाँ तक इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा ये अमित जी जानना चाह रहे हैं. जी
2: अमित जी ने, मैं समझता हूँ, बड़ा जिसको कहेंगे कि समझ भरा प्रश्न है. और ये बहुत जरूरी है कि जो दूसरा व्यक्ति है हमारे साथ, यानी कि हमारी जो संगत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. परेशानियां उतार चढ़ाव लाइफ में सभी की आ जाती है. कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, जो उसका जो मोमेंट है, जो समय है, वो कहीं ना कहीं कमजोरी देखता है. तो जब वो कमजोरी देखता है तो वो हल ढूंढ रहा होता है, और हल अगर परिवार में नहीं मिला और परिवार से अगर उसको नहीं मिला तो वो बाहर जाता है. उसी में ही अगर कोई व्यक्ति नशा लेता था, क्योंकि उसने उसके लिए तो उसके पास तो टेस्टेड थ्योरी हैगी, उसके पास एक टेस्टेड तरीका है कि मैंने नशा लिया तो मैं ठीक हो गया. तो वो जो बट उसके पास बड़ी लिमिटेड जानकारी है. और अगर आप जैसा व्यक्ति अगर कोई उसको मिल जाता है तो मैं समझता हूँ उसको ऐसी जगह रोक सकता है जहाँ पर वो उसको एंगेज करे, उसके साथ संबंध कनेक्ट करे, उसको एम्पावर करे, रिवाइटलाइज करे, यानी इसको हम कहते हैं ECPR, यानी कि उसको अगर हम उसके दिल जो टूटा है उसको अगर जोड़ने का प्रयास कर दें तो शायद उस दवा की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी वो इतना बीमार नहीं हुआ है. ये बहुत जिसको कहते हैं ना यूज की स्थिति है, अभी वो एडिक्ट नहीं बना है. और वही जो पहले 3-4 दिन है वही बड़े महत्वपूर्ण हैं. और अगर वो व्यक्ति जिसने, जैसे उन्होंने कहा, जो उसको प्रमोट कर रहा है या उसको सलाह दे रहा है, और अगर वो बार बार मिलता रहा, रीइन्फोर्स होता रहा, तो वाकई वो फिर एडिक्शन की तरफ और क्रेविंग की तरफ चला जाता है.
0: जी, तो बहुत जरूरी है इसमें कि आपने
2: जो पहले 3 दिन है,
0: जी, पहले के दिन है,
2: कि परिवार जो है उसकी तरफ ध्यान दे, मतलब जो उसमें बदलाव आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे. गुमसुम है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिसके अंदर वो, उसमें हमारे को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए. अलर्ट तो मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ये समस्या नहीं आती. समस्या का वो हल ढूंढ रहा होता है, बच्चा कह लीजिए, युवा कह लीजिए, एडल्ट कह लीजिए, कोई भी.
0: तो क्या लक्षण है जो
2: लक्षण जो है इसके अंदर, जो पहली चीज तो यही आती है कि मैं अपने को अकेला, या मैं अकेले का मतलब है कि मैं अपने को अपना प्राइवेट स्पेस ढूंढता हूँ. तो प्राइवेट स्पेस में ऐसा कमरा भी हो सकता है जिसमें मैं बंद करके अपना पढ़ रहा हूँ, बट पढ़ रहा हूँ, हो सकता है प्रिटेंड कर रहा हूँ बट मैं ना पढ़ ना रहा हूँ. मैं टॉयलेट जाता हूँ और वहाँ 1 घंटा लगाता हूँ. तो वो जो समय है, क्योंकि नशा लेना ये भी अपने में प्रक्रिया है, और नशा लेने के बाद वो जो अपनी स्थिति, जो उनकी डिसओरिएंटेशन हो जाती है, उस स्थिति में वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, तो इसलिए वो अपने को अलग कर लेता है. एक तो ये आ जाता है. दूसरा ये कि जो उसकी आपने बदलाव एकदम देखा, जो एक्साइटमेंट, जो आपने, क्योंकि विचार दो ही तरह के होते हैं, या तो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा हम स्लो हो जाते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सैडनेस की तरफ जा रहे हैं. तो वो एक स्थिति है कि जब हम उस, जिसको कहते हैं ना दिल टूटा है, दिल टूटने का मतलब यहाँ केवल प्रेमिका और प्रेमिका से नहीं है, माँ का कुछ कहना भी एक दिल टूटना का कारण बन जाता है, पिता का कहना या किसी काम करने वाले सहयोगी का कुछ कहना. तो वो जो टाइम है कि हम उस दिल को जोड़ सकें, कनेक्ट करके, और वो टाइम फिर उस ड्रग से बचा सकते हैं हम उसको. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाया जाता है और बचे
0: जी,
2: भी
0: जी,
2: हैं.
0: इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं कि हम इस के जो अब्यूज को क्यों हो रहा है उसके कारणों को ढूंढें, और ना हो उसके लिए हम अपने श्रोताओं को मोटिवेट करें, हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं. इसके साथ साथ हम ये भी जाने, जो बहुत जरूरी है, डॉक्टर विष्णु गुप्ता आज हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता जाने कि ये सिर्फ आपकी मेंटल स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, आपके फिजिकल ऑर्गन्स को, आपको बॉडी को भी बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है. कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इसको अपनी सिर्फ समस्या से निकलने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे शरीर को कैसे हार्म पहुंचा रहा है. तो बताएं कि किस तरह से बॉडी पे इम्पैक्ट करता है ड्रग्स.
3: देखिए, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जो व्यक्ति ड्रग लेता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता. तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है. फिर मैं थोड़ा सा इसमें डीप में गया तो मुझे ये मालूम चला कि वो व्यक्ति बूढ़ा इसलिए नहीं होता है कि वो जल्दी मर जाता है, तो बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आती।
0: एक लाइन में आपने इतनी
3: बड़ी बात जो बोली, जो मैंने कल पढ़ी थी कि आप कभी भी किसी ड्रग अब्यूज वाले पेशेंट्स को आप देखते हो तो आपको हमेशा वो मैक्सिमम 30-40 मतलब 40 तो बहुत मैक्सिमम मैंने बोल दी, 40 तक तो कभी पेशेंट मिलता ही नहीं है।
0: अच्छा,
3: या तो यंगर मिलेंगे 12-13 से स्टार्ट हो जाते हैं और 30-35 पे मैक्सिमम मिलता है। 30-35 के बाद में या तो वो इंसान वो ड्रग छोड़ चुका होता है या दुनिया छोड़ चुका होता है। ये दो लाइनें हैं जो इस पूरे क्रक्स को आपको बता देंगी कि उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा
3: वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जब भी कोई व्यक्ति ड्रग लेता है, किसी भी तरह का ड्रग लेता है, तो उसमें दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं और एक होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। तो इमीडिएट साइड इफेक्ट बेसिकली वो जो इमीडिएट साइड इफेक्ट जो जिसको हम बोलते हैं ना, वो साइड इफेक्ट नहीं होते उस पेशेंट के लिए, वो एक बेटर इफेक्ट मतलब एक रिवार्डिंग इफेक्ट या रीइंफोर्समेंट इफेक्ट होते हैं। जैसे ही वो ड्रग लेता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, यूफोरिया हो जाता है उसे, उसको लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया, मुझे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सेंसेशन उसकी बॉडी को लगता है। साथ ही साथ उसका क्या होगा कि आपको थोड़ी सी स्वेटिंग होगी, उसकी थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पेल्पिटेशन होने लगेगा, थोड़ी सा उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चेहरे पे फ्लशिंग आ जाएगी। ये सब चीज़ें वो इमीडिएट होती है, जो धीरे धीरे जो लंबे टाइम तक ड्रग लेते हैं वो उनमें ये चीजें धीरे धीरे दब जाती हैं, क्योंकि उसमें टॉलरेंस डेवलप होने लग जाता है। लेकिन जो उसको खुशी वाला जो हिस्सा है वो उसका हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसको बस ये है कि उस खुशी को पाने के लिए वो ड्रग्स की डोज बढ़ाता जाता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये कोई भी ड्रग है, जो भी हम बॉडी के अंदर एक्सटर्नल चीजें लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है। चाहे अगर हम फूड की बात करें तो फूड भी जो यूजफुल चीज होती है उसे बॉडी हमारी एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी जो बचता है उसे यूरिन या फीसिस के थ्रू बाहर फेंक देती है। उसी तरह कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में जाएगा, अगर वो सिंथेटिक होगा, नेचुरल होगा या सेमी सिंथेटिक होगा, किसी भी तरह का होगा, तो मेटाबोलाइज होगा ही होगा। मेटाबोलाइज होगा तो डेफिनेटली वो किडनी और आपके लीवर को अफेक्ट करेगा। किडनी में लॉन्ग टर्म में किडनी फेल्योर हो जाएगा, लीवर के अंदर लीवर फेल्योर हो जाएगा। सिमिलरली वो जो ड्रग्स होते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, तो इनिशियली आपके हार्ट के ऊपर पंपिंग लोड बढ़ता है, आपके हार्ट की वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, तो धीरे धीरे आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और वो इन्फार्क्शन या यूं कहें कि हार्ट अटैक की तरफ भी चले जाते हैं। सिमिलरली जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जब न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं तो आपकी मेमोरी इंपेयर्ड हो जाती है, आपका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाता है, आपका सोशल इंटरेक्शन दूसरों के साथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। फिर इन सब चीजों से क्या होता है कि जो आपका सोशल जो सर्कल है वो छोटा होता चला जाता है। तो कोई भी ड्रग अब्यूज करता है या जो ड्रग एडिक्ट होता है या ड्रग डिपेंडेंट होता है, उस पेशेंट में वो अकेला अपना खुद का नुकसान नहीं करता, वो अपनी फैमिली का भी नुकसान करता है, अपने समाज का भी नुकसान करता है और अपने देश का भी नुकसान करता है।
0: बिल्कुल सही बात बोली, इसीलिए ये सबका ही दायित्व बन जाता है, क्योंकि सारे ही लोग ही इम्पैक्ट होते हैं। एक इंसान अगर ड्रग लेता है तो वो अकेला इम्पैक्ट नहीं होता है, उसके साथ उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके कार्यस्थल के लोग, सभी लोग, कुलीग्स, पूरा सोसाइटी एज अ होल भी इम्पैक्ट होती है। तो बहुत जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों को हम जाने, उनको दूर करने की कोशिश करें। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। हमें लिखा है सागर जी ने, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं, उन्होंने लिखा है कि एडिक्शन स्पेशली इंटॉक्सिकेशन, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका कोई उपाय बताएं।
3: देखिए मैं तो ये कहूंगा कि आप एडिक्शन ही नहीं करिए ना, कि इंटॉक्सिकेशन के स्टेज तक पहुंचते क्यों है। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लो कि जो चीज आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसका 1 ग्राम या उससे भी छोटी क्वांटिटी भी आपको लेने की हो, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन जब भी होता है या तो आप उसको रैपिडली लेते हैं या आप डोज ज्यादा लेते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन से बचने का बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसको ले ही ना।
0: जी जी। और पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से कि मेथामफेटामाइन ड्रग क्या होती है और क्या भारत सरकार द्वारा भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो पहला तो सवाल मैं डॉक्टर विष्णु से करूंगी, दूसरा सवाल डॉक्टर सुनील जी आपसे करूंगी। मेथामफेटामाइन कौन सा ड्रग है?
3: मेथामफेटामाइन जो ड्रग होता है बेसिकली ये एक्टेसी ड्रग के कैटेगरी के अंदर आता है। ये इसका रिफाइंड वर्जन होता है MDMA। ये जो बेसिकली ड्रग होता है ये वही अगेन यूफोरिक होता है, एक्टेटिक होता है, मतलब जैसे ही आप लेते हैं ना तो आपको एक हेलुसिनेशन में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है कि आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और रहा होता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं किस दुनिया में जी रहा हूं, मतलब एक एक्टेसी जो फीलिंग होती है, एक यूफोरिया की फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग आने लग जाती है, ये सिंथेटिक ड्रग होता है।
0: इसीलिए शायद ज्यादातर डॉक्टर साहब जब लोग परेशानी में होते हैं, कोई उनकी समस्याओं से निकल रहे होते हैं, तब शायद इस दिशा पर ज्यादा जाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि एक यूफोरिया टाइप की कुछ फीलिंग है कि वो इंसान सच्चाई से कटकर कोई एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है।
3: शुरुआत कई बार जो ड्रग्स की होती है वो बेसिकली दो तरीके से होती है, जैसे कि आपने बताया कि उसके जीवन में कोई समस्या है, या उसको लगता है कि मैं एकदम से अकेला पड़ गया हूं, या मेरा कुछ दिल टूट गया है, या कुछ ऐसी चीजें होती है, तो वो उस चीज से भागने की कोशिश करता है बजाय उससे लड़ने की। और उस भागने की जो दौड़ होती है ना, उसमें वो सबसे पहला जो ऑप्शन चुनता है वो ड्रग्स चुनता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो अल्कोहल के रूप में हो, या फिर किसी सिंथेटिक या हशीश या गांजा या उसके रूप में हो।
0: जी जी, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जो एक्सपर्ट्स वो भी कह रहे हैं कि समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं। सुनील जी ने भी कहा कि कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जहां समस्या ना हो, पर उसे फेस करना सीखिए और समाधान भी यही मिलता है। अगर आप उसको समाधान ढूंढे तो आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल है, आपका समाज है, आपको मदद करने के लिए तत्पर है, पर आप सिर्फ अपना हाथ बढ़ाएं और सहयोग मांगे। हमारे एक लिसनर वेट कर रहे हैं। हेलो,
4: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी जी राजेंद्र जी, हाँ जी बताएं।
4: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालिनता से जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार राजेंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन कर लें।
4: टॉपिक रिलेटेड दोनों एक्सपर्ट भाईबान को जी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार नमस्कार
4: जी। मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर साहब ये है कि पिछले 3 दिन से मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, कॉफी, तो मुझे भी अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही है, तो क्या इसको भी हम ड्रग्स में या नशा का ही एक पार्ट मानते हैं? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये कि मैंने बचपन से बीड़ी पी, सिगरेट पी, पर आदतें डाली, गुटखे खाए, तंबाकू खाए, आदत नहीं डाली, शराब पी, तो मेरे से किसी ने कहा कि अगर आप बीड़ी पियोगे तो उससे पेट की हाजमा दूर होता है, नाक से धुआं निकालोगे तो जुकाम दूर होता है, तो इससे किसी लोगों ने मुझे बीड़ी पीनी सिखलाई, और सिगरेट के लिए भी कुछ ऐसी कहा कि अगर नाक से धुआं निकालोगे तो आपका जो है वो जुकाम दूर होगा और पेट का हाजमा दूर होता है, फॉर्टी जो है वो क्लियर साफ होती है। तो जब बीड़ी पी तो लोगों ने कहा आप सिगरेट पियो, गुटखे तंबाकू गुटखे खाई तो तंबाकू खाओ। अब दूसरा सवाल मेरा ये कि बीड़ी सिगरेट में से ज्यादा बेटर नशा, ज्यादा खतरनाक नशा कौन सा है, और शराब और भांग में से, और गुटखे और तंबाकू में से? दूसरा सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा गुजारिश आपसे ये है, कई लोग ऐसे हो, थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, 97 साल के लोग होते हैं फिर भी 70 साल के लगते हैं, और कई जो है 30 साल के होते हैं फिर भी 70 साल के लगते हैं, इसकी वजह क्या होती है?
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब। चाय कॉफी का भी कहते तो है नशा ही है, ये भी कहाँ तक सही है?
3: देखिए, चाय कॉफी को नशा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखा जाए तो चाय और कॉफी दोनों के अंदर कैफीन थोड़ा सा पाया जाता है, और कैफीन थोड़ा सा एनर्जी एनहेंसिंग करता है, मूड एलिवेट करता है, पर वो नशे की कैटेगरी में नहीं आता। तो चाय कॉफी को नशा तो कहना,
0: डॉक्टर साहब ये भी सुनते हैं जो कि वो भी एक लिमिट तक पिया जाए, क्यों कोई 20-20 कप अगर दिन में पी रहा है तो कहते हैं वो भी नुकसान ही करेगा।
3: अति तो हर चीज की वर्जितें हैं, आप किसी भी चीज की अति करेंगे, आप ज्यादा पानी पियेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। लोग कहते हैं 50-30 गिलास पानी पी जाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी किडनी पे भी लोड डालेगा। तो उसी तरह चाय कॉफी भी अगर आप ज्यादा पियेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट जरूर करेगी।
0: जी, और दूसरा जो ये प्रश्न था कि बीड़ी सिगरेट, इन्होंने काफी सारे चीजों के नाम लिए,
3: उनके लिए एक लाइन सिर्फ ये है कि आपने जिन भी चीजों का नाम लिया उसमें से कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, सारे सबके सब इन्फीरियर हैं। चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, चाहे अल्कोहल है, ये सारे के सारे जो चीज हैं वो किसी भी कैटेगरी के अंदर एक दूसरे से सुपीरियर नहीं कहे जा सकते।
0: जी,
3: जो चीज खराब है वो खराब ही रहेगी। आप एक चीज को सुपीरियर कह के या एक चीज को इन्फीरियर कह के आप उसको, मतलब
2: केवल मन को बहला रहे
3: हैं, मन को नहीं बहला,
2: मन को बहला रहे हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि तंबाकू है वो लीगल है, 18 साल के बच्चे अगर नीचे है तो उसके लिए लीगल है, इसलिए कई बार हमें लगता है कि ये हल्का है, और क्योंकि वो इलीगल है, जितनी भी ड्रग्स की बात अभी डॉक्टर साहब ने कहा तो वो सारी की सारी इलीगल है, इलिसिट ड्रग्स कहलाती हैं, तो वो हमें बड़ी लगती हैं क्योंकि उसके पीछे एक पनिशमेंट जुड़ा हुआ है। बट कहीं ना कहीं अगर हम सेहत की बात करें तो चाहे वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो केमिकल है वो हमारे को नुकसान, जैसे अभी एक पहले कॉलर ने कहा था एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो लाइफ में पहला जो ड्रग यूजर मुझे मिला 16 साल का बच्चा, वो पेट्रोल को स्निफ करता था। तो अब ये सवाल ये नहीं है कि कौन सा नशा वो ले रहा है, सवाल ये है कि वो बच्चा या व्यक्ति क्या खोज रहा है।
3: जबकि पेट्रोल मतलब ड्रग में भी नहीं आता,
2: ड्रग में भी
3: नहीं, अब्यूज में भी नहीं आता
2: ड्रग अब्यूज। और वो एसीटोन है जैसे उन्होंने कहा, जो हम नेल पॉलिश के लिए और जो करेक्शन फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं उसको हफिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो बच्चा है सड़क पर, उसके लिए जो दर्द भरा वहाँ का माहौल है और जो जद्दोजहद रोज की, उसको लगता है कि मैं अगर ये हफिंग लूंगा और मैं अगर ये एसीटोन लूंगा जो कि आसानी से मिल जाता है उसको और सस्ता होता है, तो नेचुरली अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है, तो वो तीनों चीजों में जहां पर ऐसा आ जाता है तो फिर उसको लगता है कि मेरा शायद इससे समस्या, क्योंकि उसकी खाने की समस्या तो है ही सामने।
0: हाँ जी।
2: एक बात और मैं कहूंगा कि केवल समस्याओं के लिए लोग नहीं युवा ले रहे, आज वो फन के लिए भी, पार्टी के लिए भी ले रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं हमारे को कोई सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी कि जहां मेरी पल्पिटेशन बढ़े तो मुझे लगेगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर मेरी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट यानी कि तेज म्यूजिक बजेगा तो मैं बहुत खुश हूं। तो जो एक खुशी की जो डेफिनेशन है, जो प्लेजर और हैप्पीनेस में जो फर्क कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, तो वो भी एक कारण बन रहे हैं इस तरह के रिस्की बिहेवियर के जाने में।
0: जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में, ड्रग एब्यूज पर बात कर रहे हैं। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हम लौटते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। पुनः आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं और मेरी तो ये उम्मीद है कि आप कहीं गए ना हो, क्योंकि ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 बजे और खत्म होगा 4 बजे, और इस बीच में बहुत सारी जानकारियां आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है, आता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स पर, हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं, हम एक एक करके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं आकांक्षा ने लिखा है फरीदाबाद हरियाणा से, कि हाउ डज ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग स्पेशली इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस दे फेस इन रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी।
1: देखिए, महिला चाहे वो माँ हो, बहन हो, मौसी हो, परिवार का कोई भी अंग हो, तो उसका जो ब्रंट है, जो उसका जो नशे की समस्या का जो सबसे पहला गेट कीपर है, वो माँ ही होती है। और अक्सर क्या होता है कि जो उसका असर है, तो यहाँ पर दो तरह हैं, या तो परिवार में कोई ले रहा है तो महिला पे असर पड़ रहा है, और अब महिलाओं में भी इसका प्रचलन बढ़ गया है, तो वो जो प्रचलन बढ़ा है उसका भी असर है। अभी डॉक्टर साहब उस बारे में और ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि अल्कोहल या ड्रग्स अगर महिला लेती हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म पे क्या जल्दी असर होता है या देर से होता है, एक तो ये बात आती है। मगर जो दूसरा सवाल आता है वो ये कि अगर मेरे से अगर पूछें कि मेरे पास 10,000 लोग नशे के इलाज के लिए आए, एक भी जो भी कोई आया तो सबसे पहले महिला पहले आई, क्योंकि उसका असर जो है सबसे पहले उसी पर पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम पे फर्क पड़ता है अगर पति ले रहे हैं। दूसरा आता है कि मैंने तो उसी को ही करना है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ जाता है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है आप देखेंगे तो उसके अंदर भी फिर महिला पर ही उसका असर पड़ रहा है। बच्चे हैं, बच्चे पीछे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी नशा ले रहा है व्यक्ति, क्योंकि इसलिए नहीं कि नशे में कुछ ऐसा है, बल्कि ऐसा है कि वो परिस्थितियां ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं कि जहां पर वो फ्रस्ट्रेशन अगर कहीं निकाल सकता है तो वो महिला पे निकालता है। तो वो जो उसमें वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो बच्चों की बात हो, आकांक्षा ने जो बहुत अच्छा प्रश्न करा है, और मैं समझता हूं कि मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों का इलाज किया है जहां नशे वाला व्यक्ति इलाज के लिए तैयार नहीं था। हमारा जो थीम है वो भी यही है, रेडीनेस की बात है। तो क्या करते हैं हम कि जब वो व्यक्ति इलाज के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर हम फैमिली के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मैं केयर गिवर स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, जब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, फैमिली डिसफंक्शन से फंक्शनल बननी शुरू हो जाती है, तो उसका असर परिवार पर फर्क पड़ने लगता है, यानी कि उस एडिक्ट जो व्यक्ति है वो खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मजबूती, इसलिए आपने कई ऐसी न्यूज देखी होंगी कि माँ को मार दिया, किस लिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था नशा लेने के लिए, उसने उसका बहन को मार दिया, तो ये जो है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं महिला और बच्चे जो है, और इसीलिए अक्सर देखा गया है कि अगर कहीं दूर देश से बच्चे जो भाग के आते हैं उनके पीछे भी कारण देखा गया है कि नशे के परिवार में नशा होना एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन आप देख रहे हैं वो सड़कों पर, और वो भी उनका एक बहुत बड़ा कारण, परिवार में नशा एक कारण बन जाता है।
0: तो फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, हम शुरू से बात कर रहे हैं। और अगर जो नशा करता है अगर वो नहीं जाना चाहता या अपना इलाज नहीं कराना चाहता, तो फैमिली कैसे आगे बढ़कर उसका हेल्प कर सकती, क्या कोई फोन नंबर है, कोई वेबसाइट है जहां से वो कॉन्टेक्ट करे, हेल्प मांगे?
1: देखिए, गवर्नमेंट की जो अपनी, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कहें, तो उन लोगों ने नशा मुक्त अभियान जैसे शुरू किया है, उसके अंदर खासतौर से देखें ऐसी हेल्पलाइन और ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग जब वहां पर पहली बार, क्योंकि पहले तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, दूसरा ये कि ऐसा मौका ही क्यों आए कि वो व्यक्ति जब पूरा ड्रग यूजर, यानी कि ड्रग यूजर से ड्रग एडिक्ट बन जाता है।

0: जिसमें तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो इतना समय क्यों कर लगे? वही व्यक्ति बहुत जल्दी से पहुंचाया जा सकता है अगर हमारे जागरूक हैं। कई बार क्या होता है कि हम समय इस पर निकाल देते हैं कि मैं कहीं खास रिलीजियस जगह पे जाऊंगा तो उससे शायद ठीक हो जाएगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि शादी कर देते हैं कि शायद शादी हो जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि शादी करने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है, जबकि वहाँ समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण बनते चले जाते हैं, एनेबलिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नशे की तरफ जिसको कहते हैं रुकावटें बनती चली जाती हैं। और डॉक्टर के पास तब पहुँचना चाहिए था, वहां उस समय नहीं पहुंचे बल्कि उस समय पहुंचे जब तक समस्या और बढ़ चुकी।
1: हम इस पर और बात करेंगे, हमारे एक लिसनर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार
2: जी, मेरा नाम संजीव कुमार, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम, गांव कुखनी।
1: हाँ जी,
2: डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
1: जी जी, बिल्कुल स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
2: जी मैडम जी, मैं मतलब दिमाग के दवाइयां लेता हूँ कई सारी, काफी सालों से, 23 साल से, 2002 से, इनके बगैर तो नींद आती नहीं मैडम। सारी सारी रात जैसे कभी 3:30 बजे सोएंगे, कभी 3 बजे सोएंगे, और बीपी और शुगर भी है मैडम। अब तो प्लीज आप ये बताइए भाई, ये अल्प्राजोलम और ये क्लोनाजेपम क्या उसमें मतलब नशे वाली कैटेगरी में आती हैं?
3: देखिए, ये जो दोनों ड्रग्स आपने बताई, ये बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स हैं और ये भी नशे की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि जो ड्रग्स हैं वो अगर आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज की जा रही है तो फिर आप उसको ड्रग की तरह ट्रीट मत करिए। लेकिन अगर आप उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो आपके लिए ड्रग बन जाता है।
0: बस इसमें मैं ये इतना ही कहूंगा कि आपका जो डॉक्टर साहब ने लिखा है ये भी देख लीजिए कि कब तक के लिए लिखा है और कितनी क्वांटिटी में लिखा है। अगर आप उसका पालन करके कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब से मिलें और उसमें रिवाइज करें, उनको सलाह दें कि मेरे को इस पे क्या असर हो रहा है, तो वो शायद उसको रिवीजन कर सकते हैं।
2: ठीक है जी सर।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और जिस तरह से वो आपको एडवाइस करते हैं आप वैसा ही करें। और हमारे पास ये मैसेज आया है, नवप्रीत कौर जी ने पंजाब से लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इन स्कूल करिकुलम टू इफेक्टिवली इन्फॉर्म एंड प्रोटेक्ट यंग पीपल। बहुत जरूरी है लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, बच्चों को बताया जाए। तो हम बहुत विस्तार से तो नहीं बात करेंगे क्योंकि ये रेडियो डॉक्टर है, यहाँ पर हम स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की आवश्यकता जरूर है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि ड्रग के क्या नुकसान है। कुछ कहेंगे आप?
0: मैं इसमें एक छोटा सा अपना, क्योंकि जो नाडा इंडिया फाउंडेशन है वो लोग, हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं
1: जी,
0: खासतौर से युवाओं के साथ काम करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिन पे असर हो रहा है या जिनको टारगेट किया जा रहा है उन्हीं को ही हम असरदार बनाएं। तो मैंने देखा कि ऐसे सैकड़ों हमारे साथ युवा लोग जुड़े हैं, अलग अलग, चाहे जमशेदपुर से हों, शिमला से हों, इस तरह से अलग अलग जगह से, और एक हेल्दी कैंपस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है जिसके अंदर ये व्यक्ति खुद एक अप्रिशिएटिव इंक्वायरी करते हैं, यानी कि अपने एरिया में देखते हैं कि हमारा जो कैंपस है वो कितना स्वस्थ है, जिसमें ड्रग भी आती है, अल्कोहल भी आती है, टोबैको भी आती है, यानी कि हम उसको खुद देखें और वो खुद इसमें इन्वॉल्व हों। जब मैंने देखा कि युवा लोग खुद जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा उनकी पहुँच पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचने के लिए या अपने प्रिंसिपल तक पहुँचने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए करिकुलम में केवल ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना हो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका हिस्सा होना चाहिए। और जो इंटर्नशिप आजकल मैं देखा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में होती है, तो ऐसी सिविल सोसाइटीज के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपने को और ज़्यादा अपने को लाभान्वित कर पाते हैं और नशा मुक्त कर पाते हैं। तम्बाकू कोटपा एक्ट में बिल्कुल मना है कि उसका बिकना या उसके आसपास का 100 गज की दूरी पे, उसी तरह से नशा किसी भी तरह का अगर बिकता है तो वहाँ का जो कैंपस का जो व्यक्ति है इंचार्ज, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। और चाहे, बट अक्सर क्या होता है कि स्कूल में नहीं मिलेगा, बट स्कूल से 500 मीटर की दूरी से थोड़ा सा परे मिल जाता है।
1: चलिए, एक और हमारे लिसनर लाइन पर हैं क्योंकि मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा। हेलो।
2: हाँ जी।
1: जी जी, बताएं।
2: जगजीत सिंह है मेरा
1: नाम। जी जी जी, अपना प्रश्न करें।
2: हम ये पता करना चाहते हैं कोई ऐसा नशा भी है जो शरीर में थोड़ी ताकत देता हो कभी कभी लेने से।
1: हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नशा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और ताकत के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको टॉनिक्स देंगे और वो ही लें जो डॉक्टर कहें, बस

0: डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें लिखकर भेजा है, ये एक बहुत अच्छी बात लिखी है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि कार्यक्रम में उन्हें पसंद आया, बहुत सारी जानकारी मिली। सबसे पहले इस विषय को लाने के लिए धन्यवाद। और नशे के कारण मैंने कई परिवारों को बर्बाद होते देखा है, इसका खामियाजा पत्नी और बच्चे भुगतते हैं। इससे परिवार वालों को जो नुकसान होता है वो डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है वो हमारे बहुत काम आ रही है। तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं हमारे श्रोता। एक राजकुमार जी लिख रहे हैं नोएडा से कि क्या खसखस और पोस्ता भी ड्रग की कैटेगरी में आता है डॉक्टर साहब?
1: डोडा पोस्त जो है वो तो ड्रग की कैटेगरी में आता है, अफीम का प्रोडक्ट होता है
2: और वो इलीगल है।
1: इलीगल है,
2: इलीगल है कि उसके अगर आपका पोजीशन होता है तो आप उसमें गिरफ्तार हो सकते,
1: प्रोसिक्यूट भी
0: जी। और रणधीर गुप्ता बबीता रानी,
2: खसखस नहीं आती,
0: खसखस नहीं आता है जी।
2: ठंडाई में काम आता
0: है। रणधीर गुप्ता और बबीता रानी गुप्ता हमको लिख रहे हैं कि आजकल बाजार में एनर्जी ड्रिंक भी बिक रहा है, मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छी बात है, हम जानना चाहते हैं इस बारे में। तो क्या ये भी नुकसान करता है?
2: ये सबसे बड़ा ये नुकसान ये करता है कि एक एनर्जी ड्रिंक आपकी 25 कप के बराबर कॉफी के उसमें कैफीन होती है, तो आपको लगता है एक रश होता है जो डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया, और धीरे धीरे आप उसके एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये एक गेटवे ड्रग है, यानी कि आप लीगली जो चीज अवेलेबल है पहले आप उसको एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेते हैं, कैफीन है, क्योंकि कैफीन सीधा एडिक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस इतना ही फर्क है कि ये एक्सेप्टेबल है और अफोर्डेबल है और अवेलेबल भी है, और क्योंकि हम लोग भी पीते हैं तो कई बार हम मान लेते हैं कि वो एडिक्टिव नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो हमें विचार आता ही है कि यार आज हम मिस कर रहे हैं उसको
0: जी। तो बहुत सारी बातें आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है हम समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातें ज्यादा हैं, समय कम है, और अब समय हो गया है कि हमें कार्यक्रम को समेटना पड़ेगा। एक अगला मैसेज जो है बस मैं नाम ले लेती हूँ, ललित भाटिया जी ने लिखा है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई ड्रग एडिक्ट है। तो बहुत सारी बातें अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने सुनी हो, हमारा कार्यक्रम सुना हो, तो आप जान जाएंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने लक्षणों पे भी बात की थी। तो अब इतना ही समय है कि हम अपने जो आज की विशेषज्ञ हैं उनको धन्यवाद दें। हमारे साथ रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, सीएमओ एट सीजीएचएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और साथ में थे सुनील वात्सायन, आप एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, चेयरपर्सन हैं नाडा इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली के। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ने समय निकाला है, आप यहाँ आए हैं।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन शुभ हो।
0: बहुत तो सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि

0: की याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, लम्हे में आपका स्वागत है। आपका मेजबान हूँ मैं चेतन, और आज हम इस विषय पर अंतर्दृष्टि डाल रहे हैं जो हर माता पिता के दिल के करीब है, बच्चों में लचीलेपन का निर्माण। तो चाहे आप बच्चों को लेने जा रहे हो या शांति के पल का आनंद ले रहे हैं, आइए उन तरीकों का पता लगाएं जिनसे हम अपने नन्हे मुन्ने में लचीलापन पैदा कर सकते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस इन चिल्ड्रन। महामारी हम सभी के लिए बहुत कठिन रही है, लेकिन साथ ही ये अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेकर आई है, विशेष रूप से बच्चे और युवा वयस्कों के लिए। मेरा मानना है कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दैनिक जीवन में लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। माता पिता के रूप में हमारे लिए चुनौती ये है कि हम उन्हें ऐसा करने में कैसा मदद कर सकते हैं। तो लचीलापन है क्या? कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी आशावाद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। यह हर बार सफलतापूर्वक वापसी करने की क्षमता है। ये एक मानसिकता है। इस बारे में सोचें कि कैसे एक सरल बनाना चाहते हैं, तो एक फ्लोट पानी के नीचे धकेलने पर हमेशा सतह पर वापस आ जाता है। अपने दैनिक जीवन में बच्चे घर और बाहर दोनों जगह बहुत सारे अलग अलग तनाव से गुजरते हैं। खेल के मैदान में बदमाशी, किसी पसंदीदा शिक्षक या मित्र का दूर चले जाना, साथियों का दबाव, या बस बड़े होने के दौरान होने वाले साधारण बदलाव, ये सभी भले ही हमें मामूली लगे, हमारे लिए गंभीर उथल पुथल का कारण बन सकते हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद हम उन्हें इन उथल पुथल और तनाव से पूरी तरह से नहीं बचा सकते, लेकिन हम उन्हें अधिक लचीले होने सिखा सकते हैं, उन्हें सही दृष्टिकोण और कौशल से लैस करा सकते हैं। तो एक कोट याद आ गया दोस्तों, अगर चीजें घटित होने लगती है तो चिंता मत करो, चुप मत रहो, बस ठीक से चलते रहो और तुम भी घटित होने लगोगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही है या वे अप्रत्याशित रूप से घटित हो तो थोड़ा रुके, दुखी हो या ना हो, एक या दो तकिया पर मुक्का मार, खुद को संभाल और काम शुरू करो। हम एक तरफ सुरक्षात्मक अनुभव और मुकाबला करने के कौशल और दूसरी तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ लचीलेपन की कल्पना कर सकते हैं। जब सुरक्षात्मक कारकों के प्रभाव प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव से अधिक हो जाते हैं तो बच्चे लचीले हो जाते हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, लचीलेपन बनाने के कई मॉडल्स हैं। कनेक्शन का अर्थ परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध रखना है। जिन बच्चों में लचीलापन विकसित होता है उनके लिए सबसे आम कारक माता पिता, देखभाल करने वाले या अन्य वयस्कों के साथ कम से कम एक स्थिर और प्रतिबद्ध रिश्ता है। मजबूत संबंधों से सुरक्षा, अपनेपन की मजबूत भावना पैदा होती है और बच्चों के विकास संबंधी व्यवधानों से बचाया जाता है। बच्चों और वयस्कों के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये भावनाओं की योजना बनाता है, निगरानी करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता में मदद करता है। किसी बच्चे को रोने से कभी न रोके। रोना एक बहुत अच्छा निकास तंत्र है। जब कोई बच्चा रो रहा होता तो कभी परेशान न हो, स्वीकार करे कि आप रो रहे हो। हाँ कहे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें रोना आ रहा है। जब आपका रोना खत्म हो जाए तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे को रोने से न रोके। आप प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं होने के कारण बच्चों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेंगे। जिन बच्चों को अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उनमें मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित होता है और वैकल्पिक विनाशकारी व्यवहारों की तलाश करने के बजाय मार्गदर्शन लेने और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी सहायता प्रणाली की ओर रुख करने की अधिक संभावनाएं होती है। सहायक रिश्ते, अनुकूली कौशल निर्माण और सकारात्मक अनुभवों का ये संयोजन लचीलेपन की नींव है।
योग्यता तनावपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता है। जब हमारे बच्चे हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी समस्याओं का समाधान करने की होती है। एक बेहतर रणनीति ये होगी कि समाधानों पर विचार मंथन किया जाए, प्रश्नों को दोबारा उन पर उछला गया और पेशेवर और विपक्षों या सामूहिक रूप से विभिन्न समाधानों की एक सूची तैयार की जाए। माता पिता के रूप में हम उनसे मुद्दे पर सोचने में मदद करें। जब बच्चे कुछ सही करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट कौशल विकसित करने के अवसर दिए जाना चाहिए। आत्मविश्वास किसी की क्षमताओं में विश्वास है और दृढ़ता से क्षमता में निहित है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में योग्यता प्रदर्शन करके हम आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। बच्चों को उन लक्ष्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें जिन्हें वे सोचते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उनके वर्तमान स्तर पर थोड़ा है। बच्चों को न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें बल्कि उनकी दयालुता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता और निष्पक्षता के लिए भी उनकी सराहना करें। बच्चों को स्वयं जोखिम लेने और उनके आराम क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति देना भी महत्वपूर्ण है। इनसे उन्हें नई चीजें आजमाने, नए कौशल हासिल करने और चुनौतियों से पार पाने की आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है। चरित्र का अर्थ एक नैतिक दिशा निर्देशक का होना, सही और गलत की एक मजबूत समझ अच्छे चरित्र का निर्माण करने में मदद करती है। परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की देखभाल करने से चरित्र का निर्माण होता है और ये बदले में हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। पंचतंत्र की उन कहानियों के बारे में सोचें जो हमें स्कूल में नैतिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई जाती थी। जानवरों के साम्राज्य की कहानियां, जहां सही और गलत के बीच के अंतर बहुत स्पष्ट था और हमने लचीलेपन और दूसरों की देखभाल के बारे में सीखा। बच्चों से इस बारे में बात करने का उनका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, उन्हें तात्कालिक संतुष्टि या स्वार्थी इच्छाओं से परे देखने में मदद करना और दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचना या सभी चरित्रों का निर्माण करता है। एक मिशन उद्देश्य की भावना होने के शक्तिशाली भावना है। योगदान करने में सक्षम होना और यह जानना कि उनकी योगदान मायने रखता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है, बच्चों को उपलब्धि का भावना देती है। ये पर्यावरण के प्रति स्वयं सेवा कार्य, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी उद्देश्य के प्रति समय और ऊर्जा के साथ उदार होने हो सकता है। ये सब लचीलापन पैदा करता है। जब मेरा बच्चा उदास महसूस करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि वह अपनी बाल्टी भरने के लिए क्या कर सकती है। यह उसकी ऊर्जा को हमारे, उसके माता पिता या उसके दोस्तों के प्रति एक विचारशीली कार्य या देखभाल के भाव में निर्देशित करता है। इस तरह से योगदान करने में सक्षम होना हमेशा अद्भुत काम करता है और ऐसा उसके सकारात्मक स्वरूप में वापस लाता है। अच्छी खबर यह है कि लचीलापन एक व्यक्तिगत गुण और कौशल दोनों है। ये एक मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत हो जाती है और माता पिता को लचीलापन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। सभी बच्चों को मार्गदर्शन और समर्थन के लिए देखभाल करने वाले वयस्कों की आवश्यकता होती है और सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु घर है। एक सहायक वयस्क बाल संबंध लचीलापन विकसित करने की नींव है। तो दोस्तों, यह था आज का लम्हे प्रोग्राम। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

0: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, और अब प्रस्तुत है कौन सा प्रोग्राम। अब रहिएगा आप हमारे साथ, प्रोग्राम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, कितना खूबसूरत सा एहसास होता है ना तीन शब्द सुनकर, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। पूरे हफ्ते की मीटिंग्स, बॉस की ईमेल्स, ट्रैफिक का संघर्ष और कॉलेज के असाइनमेंट्स, और फिर आता है शुक्रवार, और वो भी शुक्रवार की शाम। जी हाँ, वो दिन जब सुबह का अलार्म थोड़ा सा कम डरावना लगता है, शाम की ऑफिस की फीकी चाय भी मिठास से भरी लगती है ना। और इसी फ्राइडे शाम को सेलिब्रेट करने आ गए हैं हम आपके पास, लेकर प्रोग्राम अल्फा जेन और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आरजे, आपकी अपनी आरजे रॉकिंग दोस्त, रॉकिंग रश्मि। तो फिर कहाँ है जाना है आपको भाई? बहुत सारी बातें करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, मस्ती करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे, और आपको सुनाऊंगी एक से बढ़कर एक ट्रैक्स। कुछ ट्रैक्स आई बेट कि आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे, है ना। और जो जो गाना आपने अब से पहले नहीं सुना है ना, जरूर मुझे बताइएगा। आप मैसेज कर सकते हैं हमको, कहाँ पर करते हैं जी आप मैसेज? मैसेज कर सकते हैं आप 9868107070 पर, है ना। लेकिन साथ में ट्विस्ट ये भी है कि आपको ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि आपने वो गाना पहले सुना है या नहीं। ऐसा नहीं कि हर गाने को ही कह दिया जी हमने तो ये गाना पहले सुन रखा है। खैर, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है फ्राइडे शाम के समय आपकी और हमारी काली, आपकी और हमारी वाली ये खूबसूरत सी जो मुलाकात है, ये और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी इस ट्रैक के साथ।

जी हाँ, एक कुड़ी जिसका नाम मोहब्बत है वो तो गुम है, लेकिन ये जो कुड़ी है ना, ये आपके साथ ही है जनाब। 5 बजे तक पूरे टाइम मैं यहीं पर रहने वाली हूँ आपके साथ, तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, रहना है आपको हमारे पास। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे जब आता है ना तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, बहुत सारी टेंशन्स को दूर भगा लाता है, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की जो टेंशन्स होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो गुल हो जाती हैं। और कुछ के लिए लेकर आता है ये फ्राइडे फैमिली टाइम, कुछ के लिए होती है दोस्तों संग पार्टी, स्टूडेंट्स के लिए शायद शायद देर रात तक पढ़ाई भी, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको अभी भी पढ़ाई की ज़रूरत है, वो उस फेज़ में हैं अभी, है ना। लेकिन कुछ के लिए डिस्को, क्लब और फिर एक मूवी नाइट। तो दोस्तों, आपका क्या प्लान है, क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी मूवीज़ पसंद है, किस तरह से आप कौन सी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड, क्या है आपकी पहली पसंद। भाई एक बात ज़रूर है कि जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, और लगता है कि हमें सुनने वाला कोई है। तो जनाब, यदि आप भी हमें सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में अल्फा जेन, जिसका नाम है अल्फा जेन, और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। हालांकि मैंने अभी अभी नोटिस किया कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे थे जिन्होंने रेनबो डेस्टिनेशंस में भी मेरा साथ दिया था। हितेंद्र दास थे आसाम से, साथ में हमारे साथ थे पंकज अमरावती से, इसके अलावा भी कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं यहाँ पर लिखकर भेजा है। तो यदि आप भी हमारे साथ हैं तो जुड़ सकते हैं आप हमारे मैसेज बॉक्स में हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। और साथ साथ आप ये भी बताइए कि कौन सी मूवीज़ आपको पसंद है। भाई वीकेंड आ गया है, आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे हॉलीडे है, वेकेशन है आपकी 2 दिन की, तो आप कौन सी मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, वेब सीरीज पसंद है, मूवीज पसंद है, घर में रहना चाहते हैं। एक हमारे सौरभ अनेजा जी हैं गाजियाबाद से, डेफिनेटली ईच एंड एवरी प्रोग्राम में वो हमारे साथ रहते हैं, और देखिए मेरे कहते ही उनका भी मैसेज आ गया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहने के लिए। एक और प्यारा सा ट्रैक लेकर आई हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

वेलिसा, इस समय तो सिर्फ और सिर्फ शाम आई है, और शाम भी है कौन सी भाई, ये है फ्राइडे शाम। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपको कौन सी मूवीज पसंद है, बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड, तो जवाब तो सच बताऊं तो किसी का भी नहीं आया। और मुझे पता चल रहा है हमारे लिसनर्स को ना मेरा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाई अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शाबाशी दे दीजिए, बहुत टाइम के बाद आपसे आज मुलाकात हुई है, बड़े अरमान थे आपसे गुफ्तगू करने के, है ना। और देखिए ना, इतना खूबसूरत समय, इतना इतनी खूबसूरत शाम का मौका मुझे आपके साथ बातें करने का मिला है, लेकिन आप हैं कि हमारे साथ जुड़ना ही नहीं चाह रहे। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भाई जनाब थोड़े से मैसेजेस कर डालिए, अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं और बताते हैं अपने दिल की बात। कौन सी मूवीज़ है आपके लिए बेहद ख़ास, आपकी पहली पसंद? अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो बॉलीवुड बहुत पसंद है, और सच मानिए आज फ्राइडे के दिन जो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं ना, आज मुझे तो बहुत इंतज़ार था, खास तौर पे वेलकम टू द जंगल का, अपने 30 अच्छे खासे सितारों के साथ जो हमारे अक्षय कुमार साहब है ना, कूद पड़े हैं एक बार फिर से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और कर दिया है उन्होंने धमाका फुल फ्लैश तरीके से। जी हाँ, अक्षय कुमार अपने 30 सितारों वाली फौज के साथ ले आए हैं वेलकम टू द जंगल। आज 26 जून को रिलीज़ हो गई है, और मैंने तो पूरा प्लान बना लिया है कि इस वीकेंड मैं तो जाने वाली हूँ, है ना। आपका भी यदि ऐसा कोई प्लान है तो आप बना लीजिए, यदि आपने पहले से प्री बुकिंग करा रखी है, आप पहले से प्लान बना रखा है और प्री बुकिंग आपने कराई हुई है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, नहीं तो आजकल तो हर तरह से अवेलेबल हो जाते हैं टिकट्स, आप कर सकते हैं इंजॉय। साथ में सुपर गर्ल, जी हाँ, डीसी यूनिवर्स की सुपर गर्ल भी धमा चौकड़ी मचाने आ गई है। और इसके अलावा दो और फिल्में हैं जो आ रही हैं, जिनमें जिनके साथ में हॉलीवुड की ना 3 बड़ी रिलीजेस भी है, जिनमें सुपर हीरो की दुनिया में जैसा मैंने बताया आपको सुपर गर्ल जो है, इसके अलावा द इनवाइट एंड जैकेस बेस्ट एंड लास्ट, ठीक है। अभी देखिए इतनी सारी ऑप्शंस है, लेकिन इस बीच एक और फिल्म है जिसका नाम मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो है तेरा मेरा नाता। दीपिका चिलखिया, याद है ना हमारे रामायण की सीता मैया जी, दीपिका

ये हुई ना बात, हमारे बहुत सारे लिस्टर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले कृष्णकांत सिंह सोलंकी सामंतपुरा से कहते हैं, भाई मुझे साउथ की फिल्में यानी कि उन्हें टॉलीवुड पसंद है। साथ ही अप्सरा कक्कड़ का दिल्ली से मैसेज आया है, डोंट वरी रश्मि, आई एम विद यू और आपका शो बहुत प्यारा है और उन्हें भी मेरी तरह बॉलीवुड पसंद है, खासतौर पर देवानंद साहब की फिल्में। भाई कुछ भी कहिए, देवानंद साहब जो है ना अपने आप में लीजेंड हैं, और थे कहें या है कहें एक ही बात है, क्योंकि आज भी हमारे दिलों में वो उसी तरह से शामिल है जिस तरह वो अपनी फिल्मों के साथ हुआ करते थे। अभी हम सर कर रहे हैं बातें फ्राइडे की, और फ्राइडे स्पेशल में मैंने आपको बताई बहुत सारी ऐसी फिल्में जो रिलीज हुई हैं आज। आप कौन सी देखने का प्लान कर रहे हैं बता सकते हैं मुझे, साथ साथ ये भी बताइए ना कि कौन से गाने ऐसे लग रहे हैं आपको जो आपने पहले कभी नहीं सुने और आज पहली बार सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ एक और प्यार सा ट्रैक और उसके बाद आती हूँ वापस आपके पास प्रोग्राम, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: जी हाँ, ये बात हो रही है बिंदास बोल की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोग्राम है अल्फा जन, जिसमें आज फ्राइडे की शाम हम लेकर आए हैं आपके लिए, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, एक और हमारे लिसनर हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमर रमेश कुमार खत्री, और कहाँ से लिखा है इन्होंने, ओके कराची से, कहते हैं मुझे फिल्में देखने का मौका थोड़ा कम ही मिलता है, और ख़ास तौर पे म्यूज़िक की यदि बात करें तो उन्हें पुराने गाने सुनने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं जनाब, आज हम पुराने गाने नहीं नए गाने चला रहे हैं, चूँकि ये प्रोग्राम है हमारी अल्फा जन के लिए, ख़ास तौर पर जो सुनते हैं नए गाने ज़्यादा, और यदि जेन ज़ी की बात करें ना, हमारे इस जनरेशन की बात

करें तो सुनने में ये आया है कि इन्हें अपने आप में खोना या फिर अपने दोस्तों के बीच रहना ज्यादा अच्छा लगता है ना। और क्या वास्तव में ऐसा है? बताइए बताइए जेंजी, कहाँ हैं आप? क्या ऐसा वाकई में है कि आप घर वालों और रिश्तेदारों से आप दूर भागना चाहते हैं और आपको लगता है कि भैया हमारा तो उनसे कोई मतलब नहीं है? बताइए बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और आप वाकई में बिल्कुल आप घर वालों के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स के अलावा फैमिली रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। तो बस एक मेरी बात का ध्यान में रख लीजिए, वो ये कि फैमिली में वेडिंग है, थोड़ा सा प्लान बना लीजिए। और फ्राइडे तो आ ही गया है आज, कल सैटरडे और फिर संडे यानी कि वीकेंड आपके हाथ में है। शॉपिंग कर डालिए और दे दीजिए अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज गिफ्ट उस वेडिंग गैदरिंग में शामिल होकर। क्या बात है, सही है ना? फैमिली गैदरिंग में शामिल हो जाएंगे तो मम्मी पापा को भी लगेगा हाँ भाई बच्चे हमारे ही साथ हैं। और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो आपके और भी करीब आ जाएंगे, जैसा कि मैं आपके आ गई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ आपको और सुनाऊं, मैं एक छोटा सा ब्रेक और लेती हूँ और वापस आती हूँ आपके पास प्रोग्राम अल्फा जेन में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी शादी वाली नाइट में अपना वीकेंड खराब करें, या आज फ्राइडे नहीं आप जाना चाहते हैं, और यदि आप को कहीं और एज सच कोई मूवी देखने का भी प्लान नहीं है, तो भाई बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली, दिल्ली NCR में, जहां पर आप जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. जस्ट लाइक कैनॉट प्लेस द नंबर वन प्लेस जहां पर हमारी जेंजी जाना चाहती है, खास तौर पे लाइव म्यूजिक नाइट्स भी यहां पर होती हैं, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं. ऑस्कर्स विलेज आप जा सकते हैं, साथ में साइबर हब गुड़गांव के आसपास भी आपको ऐसी चीज़ें जगह मिल जाती हैं जहाँ पर आप वीकेंड की ऑफ के लिए वो जानी जाती है और आप जा सकते हैं. साथ साथ सोशल आउटलेट्स भी बहुत सारे हैं दिल्ली NCR में, जहां पर जाकर आप अपना प्लान बना सकते हैं. लेकिन यहां पर उन लोगों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी जो फ्राइडे है और बड़ी उम्मीद के साथ फ्राइडे का इंतजार करते हैं कि भाई थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि उनके एडमिशंस चल रहे हैं. जी हाँ जनाब, बहुत सारी जगह हमारे देश में इस वक्त काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो CUET काउंसलिंग हो या फिर JOSA काउंसलिंग हो, JAC काउंसलिंग हो. स्टेट के हिसाब से हर जगह BTEC, BBA, BCA या फिर और बहुत सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन्स चल रहे हैं, और बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या एस्पिरेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि उन्हें जल्दी से वीकेंड मिले और वो अपने सारे पेपर्स ना तैयार कर लें. कुछ ऐसी चीज़ मे बी कि जो नेक्स्ट कट ऑफ निकलेगी या जो नेक्स्ट लिस्ट निकलेगी उसमें उनका नाम आ जाए और वो खुशी के साथ अपने उस एडमिशन को ले सकें और फ्रीज कर दें अपनी सीट को, है ना. यदि आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से फिलहाल जूझ रहे हैं, आपको अपने एडमिशन का इंतज़ार है, तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और एक बार फिर से अपनी जो टू डू लिस्ट है वो चेक कर लीजिए. कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका रह गया हो उसे बनवाने की कोशिश कीजिए, बना लीजिए और पूरे फुल फ्लैश तैयारी के साथ आप अपने एडमिशन प्रोसेस में घुस जाइए. तो भाई मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ. फिलहाल आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ट्रेंडिंग का सॉन्ग, शायद आपने नहीं सुना हो. जैसे कि हमारे पास अप्सरा कक्कड़ का एक बार फिर से मैसेज आया है, उन्होंने कहा नाच मेरी जान मैंने नहीं गाना सुना था. तो अप्सरा जी, ये गाना है ABCD2 से. साथ में इससे पहले जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया था बंजारे, वो कौन सी ट्रैक कौन सी फिल्म से है वो भी आपको नहीं पता था, वो है द वेडिंग पुलाव से. और तो यदि आपने भी अभी कोई गाना ऐसा था जो मैंने सुनाया नहीं सुना है, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं. मैं उसके फिल्म का नाम आपको बता दूंगी ताकि आप दोबारा से ट्रैक सुन सकें. और अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो कौन सी मूवी का है भाई, वो है हीरो फिल्म से, सुनिधि चौहान की आवाज़ में. और इसी गीत के साथ रश्मि लेती है आपसे इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि 30th को सुबह बॉलीवुड रील्स लेकर आपके साथ फिर से मुखातिब होंगी. उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार फिर से मेरे साथ यूं ही इसी प्यार के साथ जुड़े रहेंगे मेरे दोनों प्रोग्राम्स बॉलीवुड रील्स और हेल्पलाइन में.

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर श्री आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज शाम। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों से गुजरना पड़ता है और वो कभी तो अच्छे सुकून से भरे होते हैं तो कभी बहुत सी दुश्वारियां लिए हुए। रास्ते आसान हो तो दूर की मंजिल भी पास लगने लगती है, लेकिन उलझन से भरे सफर में मंजिल तक पहुंचना मानो असंभव सा लगता है। लेकिन रुककर सफर खत्म करना इसका हल बिल्कुल भी नहीं। चलते जाना है और हजार कठिनाइयों के बावजूद हमें मंजिल तक जरूर पहुंचना है। कहते हैं हम चलते हैं तो राहें भी हमारे साथ साथ चलती हैं। सफर में हमें जहां तक पहुंचना है वहां तक साथ साथ जाती भी हैं। और मन में अगर मंजिल को पा लेने का जज्बा हो तो कोई भी ठिकाना दूर नहीं, कोई भी मंजिल दूर नहीं। बस हमें कोशिश जरूर करते रहना है। मंजिल मिले ना मिले तो इसका गम न कर, मंजिल की जुस्तजू में तेरा कारवां तो है।

जब मिलता कोई मुसाफिर है, मैं संग उसके हो लेता हूँ। कई बार तन्हा सफर करते हुए रास्ता बहुत लंबा लगता है और फिर तलाश होती है किसी हमराही की, वो जिसका साथ मिल जाए तो वक्त का पता ही ना चले और ये सफर आसानी के साथ तय भी हो जाए। और जब ऐसा कोई मिल जाता है तो मंजिल मिले या फिर ना भी मिले, ये फिक्र ही नहीं रहती। बात जब दो दिलों की मुलाकात की होती है तो हम सफर के साथ चलने को रास्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस मनमीत के कदमों के निशान मिल जाते हैं और उनके साथ चलते चलते मंजिल तक कब पहुंच जाया जाता है कुछ भी मालूम नहीं होता।

सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। जी हाँ, यही जज्बात, यही ख्यालात लेकर जब हम घर से निकलते हैं, सफ़र पर चलते हैं और मंजिलों तक का रास्ता तय करते हैं, तो यकीनन मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। आप सब भी इसी तरह से अपनी मंजिल तक पहुँचें, जो खुशी आपका इंतज़ार कर रही हो उसे आप ज़रूर पाएं। इसी कामना के साथ आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम।
1: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
4: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
5: से नो टू प्लास्टिक।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी असरार मियां,
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सवाल के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए।
1: निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको उठाने होंगे अपने अपने मोबाइल फोन्स और जाना होगा हमारे आकाशवाणी के रामपुर फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब। हमें रहेगा सही जवाब का इंतजार। जरा सोचिए, अगर कोई चीज कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी का सुकून छीन ले तो क्या उसे खुशी कहा जा सकता है? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आज है एक ऐसा दिन जिसे गंभीर मुद्दों की ओर हमारा ध्यान खींचता है।
0: बिल्कुल खुशी, यही वजह है कि हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।
1: असरार, क्या आपको पता है कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी?
0: बिल्कुल खुशी, 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद 1989 से दुनिया भर में इसे व्यापक रूप से मनाया जाने लगा। इस अभियान का संचालन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी UNODC करता है, जो नशे और उससे जुड़े अपराधों को रोकने के लिए दुनिया भर में काम करता है।
1: बिल्कुल असरार, आज के समय में नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह गया है, ये पूरे परिवार, समाज और देश के लिए चिंता का विषय बन चुका है। खासकर युवाओं को इसका सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता है।
0: बिल्कुल, कई बार लोग दोस्तों के दबाव, तनाव, जिज्ञासा या गलत संगति में आकर नशे की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। इतना ही नहीं, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी, अपराध और हिंसा जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा देती है।
1: हाँ असरार, इसलिए अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसका हौसला बढ़ाइए, सही सलाह दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्पेशलिस्ट की मदद लेने के लिए प्रेरित कीजिए।
0: तो आइए इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी एक संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों, ये बातें यहीं चलती रहेंगी आपकी और हमारी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे सा ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, कहीं मत जाइएगा।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी में। और अब वक्त हो चुका है हमारे आज के पहले सेगमेंट कुछ खास है आज में, जो बिल्कुल आपकी ही तरह बहुत खास है।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
5: दोस्तों, कुछ खास है आज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान लेखक की जिन्होंने अपनी कलम से पूरे देश में देशभक्ति की भावना जगाई। उनका नाम है बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी। वे केवल एक प्रसिद्ध लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक भी थे जिन्होंने भारतवासियों के दिलों में अपने देश के लिए प्रेम और सम्मान की भावना पैदा की।
6: बंकिम जी का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कांटलपाड़ा गांव में हुआ। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही बंकिम जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और बाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में सरकारी नौकरी भी की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक महान लेखक के रूप में बनी।
5: बंकिम जी ने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। इसी उपन्यास में उन्होंने भारत का प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम दिया। उन्होंने ये गीत 1876 में लिखा था। ये गीत भारत माता की सुंदरता, शक्ति और महानता का वर्णन करता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हजारों क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर देश के लिए लड़ते थे। ये गीत लोगों के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत बन गया।
6: दोस्तों, साल 2026 हमारे लिए खास है, क्योंकि इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हमारे देश और भारतीय साहित्य के लिए गर्व का अवसर है। बंकिम जी का मानना था कि एक अच्छी किताब समाज को बदल सकती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को ईमानदारी, देशभक्ति, साहस और अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। उनकी भाषा बहुत सरल और प्रभावशाली थी, इसलिए उनकी किताबें आज भी बड़े उत्साह से पढ़ी जाती हैं।
5: 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं और उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक लेखक अपने शब्दों से पूरे समाज और देश को नई दिशा दे सकता है।
6: तो दोस्तों, आइए हम बंकिम जी के जीवन से प्रेरणा लें, अपने देश से प्रेम करें, अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करें और हमेशा अच्छे विचारों को अपनाएं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
5: दोस्तों, कुछ खास है आज और भी खास है क्योंकि इतिहास केवल राजाओं की जीत और युद्धों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ऐसे महान व्यक्तित्वों की भी याद दिलाता है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। आज बात एक ऐसे दूरदर्शी शासक की जिन्हें राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज जी की, जिनका नाम सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के क्षेत्र में आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
6: छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में हुआ था। उनका मूल नाम यशवंत राव घाटगे था। बाद में उन्हें कोल्हापुर के शाही परिवार ने गोद लिया और वे कोल्हापुर रियासत के शासक बने। बचपन से ही उन्होंने शिक्षा और सामाजिक समस्याओं को करीब से समझा, जिनका प्रभाव उनके पूरे शासन काल में दिखाई देता है।
5: शाहू महाराज का मानना था कि किसी भी समाज की असली ताकत उसके शिक्षित और जागरूक नागरिक होते हैं। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और पिछड़े समाज के बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने छात्रावास बनवाए, छात्रवृत्तियां शुरू की और गरीब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई। उनका उद्देश्य था कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति किसी की शिक्षा में बाधा न बने।
6: सामाजिक समानता के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय समाज में ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियां गहराई तक फैली हुई थी। शाहू महाराज ने इन भेदभाव का खुलकर विरोध किया और सभी लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। वर्ष 1902 में उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इसे भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए शुरुआती और महत्वपूर्ण कदमों में गिना जाता है।
5: दोस्तों, छत्रपति शाहू महाराज ने केवल शासन नहीं किया बल्कि समाज को बदलने का कार्य किया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति या वर्ग में हुआ हो। यही कारण है कि आज भी उन्हें सामाजिक सुधारों के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है।
6: दोस्तों, छत्रपति शाहू महाराज का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। शिक्षा, समानता और न्याय, ये तीनों मूल्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। तो दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। मुहर्रम इस्लाम धर्म का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने को लोग श्रद्धा, शांति और याद के साथ मनाते हैं। मुहर्रम का नाम सुनते ही हमें त्याग, धैर्य और सच्चाई की याद आती है।
5: मुहर्रम का सबसे खास दिन आशूरा होता है जो मुहर्रम की 10 तारीख को आता है। इस दिन कर्बला की घटना को याद किया जाता है। कर्बला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सच्चाई और इंसाफ के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। उन्होंने गलत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मुहर्रम हमें हिम्मत, सब्र और सच्चाई का संदेश देता है।
6: इस महीने में कई लोग शोक मनाते हैं, कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, कुछ लोग ताजिया बनाते हैं और कुछ लोग दुआ और नमाज पढ़ते हैं। लोग इस महीने में शांति बनाए रखते हैं और इमाम हुसैन की याद में अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम का संदेश केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे मानव समाज के लिए है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।
5: मुहर्रम हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कठिन समय आए तो भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन ने हमें बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान, उसका साहस और उसकी सच्चाई होती है। इसलिए इस महीने में लोग एक दूसरे के साथ प्यार, सम्मान और भाईचारे से पेश आते हैं।
6: तो दोस्तों, आइए हम मुहर्रम के पवित्र संदेश को समझें। हमें अपने जीवन में सच्चाई, सब्र, इंसाफ और अच्छाई को अपनाना चाहिए। यही मुहर्रम की असली सीख है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि बलिदान और सत्य की राह हमेशा महान होती है।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट साइंस नामा के पहले सब सेगमेंट साइंस न्यूज की तरफ।
1: तो दोस्तों, हमारी पहली खबर आ रही है अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की ओर से। मार्स रोवर ने हाल ही में लाल ग्रह की चट्टानों पर कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कार्बन की खोज की है, जो प्राचीन काल में जीवन की संभावनाओं का संकेत देता है।
2: हमारी अगली न्यूज है नासा इसरो का निसार मिशन। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भेजे गए निसार सैटेलाइट ने हिमालय क्षेत्र की अभूतपूर्व 3D तस्वीरें भेजी हैं, जो जमीन के खिसकने और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों पर नजर रखने में मदद कर रही है।
1: और दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है जलवायु और पर्यावरण की ओर से। WMO और नासा की रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष भारत सहित कई एशियाई क्षेत्रों में मानसून के कमजोर रहने और गर्मी का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई गई है।
2: दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है ग्लेशियर से। अंटार्कटिका में टेक्सास के आकार की विशालकाय समुद्री बर्फ के गायब होने की पुष्टि हुई है, जो वैश्विक समुद्र के जल स्तर को प्रभावित कर रही है।
1: और दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से। गूगल और अन्य टेक कंपनियों ने को साइंटिस्ट और रोबिन जैसे उन्नत AI टूल विकसित किए हैं, जो मेडिकल और जैविक अनुसंधान में वैज्ञानिकों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत में स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेट करने वाले AI मॉडल वारिया का शुभारंभ हुआ है।
2: दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है परमाणु घड़ी यानी न्यूक्लियर क्लॉक के बारे में। वैज्ञानिकों ने पहली बार परमाणु नाभिक पर आधारित दुनिया की पहली परमाणु घड़ी बनाई है, जो समय के सटीक माप और भौतिकी के नए नियमों को समझने में मदद करेगी।
1: और दोस्तों, हमारी अगली न्यूज आ रही है चिकित्सा और स्वास्थ्य की ओर से। ओजेम्पिक और विगोवी जैसी GLP-1 दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, और हालिया शोध बता रही है कि ये दवाएं केवल टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार कर रही है।
2: दोस्तों, शोधकर्ताओं ने एक नए ब्लड सिग्नेचर की पहचान की है, जो फेफड़ों के कैंसर के भविष्य के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है।
1: दोस्तों, हमारी आखिरी न्यूज है जीव विज्ञान की ओर से। वैज्ञानिकों ने पाया कि इंसानों और महान वानरों यानी ग्रेट एप्स के गुदगुदाने पर हंसने का तरीका एक जैसा होता है। इससे पता चलता है कि हमारी हंसी का विकास लगभग 1.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था।
3: तो दोस्तों, ये था हमारा वैज्ञानिक हस्ती का सब सेगमेंट साइंस न्यूज। अब चलते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट साइंस नामा के दूसरे सब सेगमेंट वैज्ञानिक हस्ती की ओर।
1: जब भी भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात होती है तो एक ऐसा नाम सबसे पहले सामने आता है जिसकी दूरदृष्टि ने देश को नई उड़ान दी। ये नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।
2: साथियों, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि विज्ञान और गणित में थी। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और बाद में भारत लौटकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया।
1: साल 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL की स्थापना की। यही वह संस्थान था जिसने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की मजबूत नींव रखी। लेकिन उनका सपना इससे भी बड़ा था। उनका मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं बल्कि देश के विकास का साधन बनना चाहिए।
2: इसी सोच के साथ वर्ष 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की, जो आगे चलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हुई। आज चंद्रयान, मंगलयान और उनके उपग्रह मिशनों की सफलता के पीछे कहीं न कहीं डॉक्टर साराभाई की दूरदर्शी सोच ही दिखाई देती है।
1: दोस्तों, डॉक्टर साराभाई का विश्वास था कि यदि विज्ञान का उपयोग शिक्षा, संचार, मौसम पूर्व अनुमान और ग्रामीण विकास के लिए किया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। यही कारण है कि उन्होंने उपग्रह के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों तक शिक्षा और जानकारी पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए।
2: दोस्तों, केवल अंतरिक्ष विज्ञान ही नहीं, उन्होंने अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और प्रबंधन सभी क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
1: उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके निधन के बाद वर्ष 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके सपने आज भी भारत के हर सफल अंतरिक्ष मिशन में जीवित हैं।
2: जब भी कोई भारतीय रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है, उसमें कहीं न कहीं डॉक्टर साराभाई की दूरदृष्टि और संकल्प की झलक दिखाई देती है।
1: तो दोस्तों, आइए हम सभी इस महान वैज्ञानिक को नमन करें और उनके जीवन से ये प्रेरणा लें कि बड़े सपने देखने वाले ही देश का भविष्य बदलते हैं।
3: तो दोस्तों, ये था हमारा सब सेगमेंट वैज्ञानिक हस्ती, जिसमें हमने बात करी विक्रम साराभाई जी के बारे में। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट साइंस नामा के आखिरी सब सेगमेंट, आइए जानते हैं हमें।
1: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन के लिए दुनिया से घर्षण यानी फ्रिक्शन पूरी तरह गायब हो जाए तो क्या होगा? सुबह बिस्तर से उठते ही आपके पैर फर्श पर फिसल जाएंगे, ब्रश हाथ से छूट जाएगा, कब पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, साइकिल और बाइक के ब्रेक काम नहीं करेंगे और पेन से एक शब्द भी नहीं लिखा जा सकेगा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यही सच है। हमारे जीवन का लगभग हर छोटा बड़ा काम घर्षण पर निर्भर करता है।
2: तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि घर्षण आखिर क्या है। जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनमें से कोई एक चलने की कोशिश करती है तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो उस गति का विरोध करता है। इसी बल को घर्षण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो घर्षण वे ताकत है जो हमें फिसलने से बचाती है और चीजों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है।
1: आइए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उतरकर चलते हैं तो आपके पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन होता है। यही कारण है कि आप आराम से चल पाते हैं। अगर फर्श पर पानी गिर जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि गीले फर्श पर सावधानी से चलें।
2: अब जरा अपने स्कूल या कॉलेज की कॉपी और पेन को याद कीजिए। जब पेन की निब कागज से रगड़ खाती है तभी स्याही कागज पर उतरती है और हम लिख पाते हैं। अगर कागज और पेन के बीच घर्षण ना हो तो लिखना लगभग असंभव हो जाएगा।
1: साथियों, साइकिल या बाइक चलाते समय भी फ्रिक्शन हमारी सुरक्षा करता है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक पैड और पहिए के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे वाहन की गति कम होकर वे रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक लगाने के बाद भी वाहन चलता ही रहेगा, जो बहुत खतरनाक हो सकता है।
2: आपने देखा होगा कि कार और बाइकों के टायरों पर गहरी गहरी डिजाइन बनी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सड़क और टायर के बीच घर्षण बढ़े और बारिश के मौसम में भी वाहन आसानी से फिसले नहीं।
1: लेकिन हर बार फ्रिक्शन फायदेमंद नहीं होता। मशीनों के इंजन, पंखे, साइकिल की चैन और अन्य उपकरणों में लगातार फ्रिक्शन होने से उनके पुर्जे खिसकने लगते हैं और गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से उनमें समय समय पर तेल या ग्रीस डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और मशीनें लंबे समय तक अच्छी तरह काम करती रहें।
2: तो दोस्तों, घर्षण यानी फ्रिक्शन एक ऐसा अदृश्य साथी है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस जरूर कर सकते हैं। हमारे कदमों की मजबूती, हमारी लिखावट, हमारी यात्रा की सुरक्षा और यहाँ तक सर्दियों में हाथों की गर्माहट, इन सब के पीछे घर्षण की भूमिका होती।
3: तो दोस्तों, यह था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट साइंस नामा। तो दोस्तों, हमें सोचना खत्म नहीं करना है, नई नई चीजों के बारे में जानना है और आगे बढ़ते रहना है और कभी भी रुकना नहीं है। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का और स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब को जानने का। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल था, निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही जवाब है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: नंद कुमार ठाकुर, उत्तम सिंह जंघेल, जॉन डी कैस्ट्रो, सुदर्शन शाह, प्रवीण चौहान, हिरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, मोहम्मद रफीक पनवार, चौधरी राजवीर सिंह, बालकरण वर्मा, आकाश रस्तोगी, विमल सक्सेना भारती, बीएल धाकर, सिद्धार्थ गोंडा ने, रियासत हुसैन, बलवंत कुमार वर्मा, श्री कृष्णा बाथे, राम कुमार रेवर, पुंजजी नफकर, बबलेश पनवार, जगदीश धाकर, मोहम्मद जाहिद अली, निसार सलमानी, जयपाल यादव, सोहन जोशी, लाल मोहम्मद अंसारी, मिसबा शमशी, धीरज भाई राबरी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, तुलसी मस्कीन, रवि कुमार राहुल, शाहजी बोटके, अल्ताफ हजारे, मुजफ्फर अली खान, शाहनूर अंसारी, अनिल बी गोटके, विठल सुरेशे, दीगदर्शन गौड़, मसरूर हसन, फरजंद अली, अभिजीत गवहंकर, धर्मेंद्र छिपा, किशन सपकार, शेख मूसा, आफ्ताब अंसारी, गुरमीत सिंह मीता, नवी हसन अब्बासी, शमसुल कुमार, राहिद हुसैन अंसारी, उत्तम कुमार भागत, मोहम्मद यासीन, हाजी गफ्फार खान, सुरेश जायसवाल, देवशंकर तामूरिया, गजानन येले दरियापुर, आमिर हुसैन, सुरेश गगनेजा, फागुराम यादव, उदय बनपाल, अजीत कसाना, मोहम्मद सईद अब्बासी, विनोद मुन्नत, इरशाद अहमद, राधेश्याम पांडे, मोहम्मद दानिश, राजू मिगलानी, आसिफ चौधरी, राजवीर सिंह यादव, विजय सुरालकर, संजय ढिंगिया, एसी मिश्रा, भागवत चौबे लाडला जी, मुकेश कश्यप, अनोखे लाल, जाकिर मंसूरी।
0: तो ये थे हमारे श्रोता साथी, जिन लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। दोस्तों, निर्भय चेतना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान वातावरण बनाना है। ये कार्यक्रम निर्भया फंड के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना, पंचायत प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता के बारे में प्रशिक्षण देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, गाँव में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करना है। तो दोस्तों, अभी कहीं मत जाइएगा, अभी एक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, आज के युवानी प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवानी अनुभाग द्वारा, के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर।
1: आप लोग हमें ईमेल के जरिए भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com। हमारी पिन संख्या है 244901। आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9410087876।
0: दोस्तों, अब दीजिए अपनी रेडियो डोज खुशी
1: और असरार मियां को
0: जाने की इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी रामपुर है। 6 बजने को है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। शाम के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि अंजू पुत्री श्याम सिंह निवासी ग्राम भारतल मदापुर थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल दिनांक 9 जून 2026 से भारतल मदापुर से लापता हैं। अंजू की उम्र 22 वर्ष कद 5 फीट व रंग गेहुआ है। इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। जिस किसी व्यक्ति को भी अंजू के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। संपर्क करने के लिए मोबाइल संख्या है 9149282354 9149282354। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना असमौली जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि कुमारी मेहर पुत्री इमरान निवासी मियां सराय रायसत्ती जनपद संभल दिनांक 13 जून 2026 से मोहल्ला मियां सराय से लापता हैं। मेहर की उम्र तकरीबन 22 वर्ष कद 5 फीट व रंग सांवला है। इन्होंने काला बुरखा और पैरों में सफेद चप्पलें पहनी हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी मेहर के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना रायसत्ती जनपद संभल। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर नोट कर लें 9458767396। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लें

0: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
1: अभी लाई।
2: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया। क्या करूँ इस बचे हुए पानी का?
0: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
2: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: छह बजकर 10 मिनट हुए, श्रोताओं अब सुनिए चित्रपट संगीत।

मुकेश को अभी आपने सुना फिल्म धर्म करम में। इसी आवाज़ को अब सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ फिल्म संगम में।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए फिल्म संगम के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनन बारे सभी किसान साथियों को आपके भैया प्रवीण
1: और आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम।
1: प्रवीण भैया
0: जी, भैया
1: कैसे हैं आप?
0: भैया हम तो ठीक ठाक हैं, और आप अपनी सुनाओ।
1: हम भी ठीक हैं प्रवीण भैया, और उम्मीद करते हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना हमारे साथी, वे सब ठीक होंगे, और जो भी अपने काम धंधे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित हो या कोई व्यवसायिक हो, वो समय रहते पूरे कर रहे होंगे।
0: हाँ, क्योंकि इस समय आप देख रहे हो कि काम हमारे किसान बहन के पास जो है बहुत चढ़ोबू है, और ऐसे में अगर वे ठीक ठाक ना होंगे तो अपने धान की जो रोपाई को काम शुरू ही हुए तो वो कैसे ही पावे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: और देखो जाके संग संग हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, समय समय पर अपना ध्यान तो रखना ही है, जिस तरीके से हम अपनी फसलों को रखते हैं।
1: देखो प्रवीण भैया, आपने जो बात करी ना कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं, स्वास्थ्य को ध्यान तो हमें अपनों भी रखने हैं, और साथ में जो हम फसलें लगा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छो रखने के लिए हमारे जो खेत की मिट्टी है ना उसके स्वास्थ्य को अच्छो रखना बहुत जरूरी है।
0: भैया देखने में आती है ना कि हमारे किसान भैया कहते हैं कि हमने खाद तो बहुत दो लेकिन हमारी फसल बड़ी ना रही है।
1: बिल्कुल।
0: और बाको असर जो होता है कि जो हमारे खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो काफी कम ही गई है। दूसरा, जो उर्वरक हमारी फसलों को हम दे रहे हैं वे जब तक हमारे फसलों को ना मिल पावेंगे तो लो उनको डान को कोई महत्व ना होता है।
1: देखो भैया, जाकेला हमारे किसान साथी, आपने देखी हुई ना कि अब होड़ लग गई है कि खाद अपने जो खेत हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा डालें, लेकिन हम अपने किसान साथियों से जय कहते हैं कि समय रहते वे इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें, खाद होड़ में न डालें। खाद के लिए विशेष रूप से हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से और वैसे भी हम लगातार बताते हैं कि देखो सबसे पहले अगर वे अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें तो बास है बढ़िया कुछ है ही नहीं।
0: वो तो है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, और उसके अलावा हमें यह भी पता लग जाता है कि हमें जो कमी है हमारे तत्वों की उनकी किस तरीके से पूर्ति करनी है।
1: देखो भैया, विशेष रूप से हम जो बताना चाह रहे हैं अपने किसान साथियों को वो बात है जा कि हमें अपनी फसलों से अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो हमें अपनी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने जरूर पड़ेगा।
0: देखो सबसे मुख्य बात आती है कि हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य गिर रहा है उसकी वजह है जीवांश कार्बन का प्रतिशत जो है काफी नीचे हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो जीवांश कार्बन है वो 0.08 जो है होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब जो है 0.23 के आसपास ही रह गए हुए, जो कि काफी कम होते जा रहे हुए। अगर ऐसे ही गिरते रहो तो भैया जो हम उर्वरक दे रहे हैं वो हमारी फसलों को ना मिल पा रहे हैं।
1: देखो प्रवीण भैया, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे किसान साथियों को जो अपनी जो मिट्टी को स्वास्थ्य है उसको सही रखने के लिए आपको ध्यान में रखनी है।
0: अब भैया देखो, जो जीवांश कार्बन की हम बात बता रहे हैं तो वो किस तरीके से बढ़े और क्यों घट रहे हो, जा बारे पे हमें सोचना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने,
0: क्योंकि पहले होता हो कि हम लोग हरी खाद और दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सभी तरह की फसलें लेते, जैसे घुरू उड़ाते, लेकिन अब ना तो हम हरी खाद ले रहे हैं, ना ही फसल चक्र अपना रहे हैं, ना ही हम देसी घोरू डाल रहे हैं, क्योंकि जानवर हमारे यहाँ वैसे ही कम हो जा रहे हैं।
1: देखो भैया, एक कारण और भी है। पहले हमने देखी ना कि हम गेहूं को जो खेत होते ना, गेहूं जैसे कट जाते हैं उसके बाद हमारा खेत जो है वो जब तक हम धान न लगाते तब तक खाली पड़ो रहते हो, तो बाकी भी थोड़ा असर हमारे खेतन में, यानी कि खेत को जब थोड़े समय मिल जाए तो बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कुछ मात्रा में अपने आप ही संतुलित हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लगातार बिल्कुल अपनी जमीन को खाली ही न छोड़ेंगे तब भी आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जो ग्रहणता है, यानी कि हमारी जो फसल ग्रहण करती है उनको जब ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं मिलाए तो उनकी भी कमी होगी। भैया
0: बिल्कुल, इसके साथ साथ हम अपने किसान साथियों से ये भी कहते हैं कि आप जो है ज्यादा रासायनिक उर्वरक की तरफ ना जाएं, जो हमारे जैविक खाद हैं उनका भी इस्तेमाल करें, जैविक रासायनिक दवाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा अगर हम रासायनिक की तरफ को भागेंगे ना तो हमारी जमीन को स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ तो चलो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात कही। देखो भैया, रासायनिक दवाओं के प्रयोग से केवल जो जमीन है भाई के स्वास्थ्य की बात ना है, बल्कि हमारे खुद के स्वास्थ्य को भी बिगड़ना लगभग निश्चित है।
0: इसीलिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भैया जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती की तरफ को जा रहे हैं हम, जीवामृत, घन जीवामृत, इसके साथ साथ कीटनाशक में हम बात करें तो जीवांश जो है हमारा बढ़ाने के लिए हमारे किसान साथी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ हमारे किसान भैया जो रासायनिक कीटनाशक है उनके जगह अगर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल भैया, तो हमारा कहना तो जय है अपने किसान साथियों से कि जो खेत की मिट्टी है अगर वो आपकी अच्छी है तभी आप पैदावार अच्छी ले सकते हैं। और प्रवीण भैया देखो, आज है 26 जून
0: और आज के दिन हम लोग सब बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही, और वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाने को निर्णय लो।
0: और जय दिवस मनान को मुख्य रूप से जय उद्देश्य है कि जो मादक पदार्थ हैं उनको हम सेवन ना करें, उनको अपराध कार्यालय में मतलब माने तो ही ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो आपने बात करी ना, कई प्रकार से जैसे नशा सेवन जो पदार्थ होता ना उनकी अवैध तस्करी को रोक कर भी हम इनको कर सकते हैं।
0: इसके अलावा भैया जो युवा है ना उनको नशे से दूर रखने के लिए हम लोग प्रेरित करें जिससे कि वे इसकी ओर ना बढ़ें।
1: बिल्कुल, नशे की लत से जो लोग जूझ रहे हैं ना उनके लोगों के उपचार और पुनर्वास को भी बढ़ावा देना भी ये इसमें शामिल होता है।
0: इसके साथ साथ हम अपने साथियों को जो बता दें कि नशा जो है वो नाश की जड़ है।
1: बिल्कुल,
0: वो किसी भी रूप से हमारे लिए फायदेमंद ना है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें हम तो जहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, हमारो मस्तिष्क है, ये सब भैया बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं और हमारे जो है शरीर को प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल भैया, आपने सही बात कही, मानसिक समस्याएं जैसे तनाव, अवसाद और चिंता, और एक कारण और है, आपने देखी हुई ना जो लोग नशा करते हैं उनके परिवार में हमेशा कलह बनो रहता है, और जाके साथ साथ भैया देखो आर्थिक नुकसान तो है ही।
0: भैया इसके साथ साथ ना एक बात और है, जो नशा करने वाले हैं उनके अच्छे दोस्त ना होते, उनके दोस्त जो होंगे वे सब नशा करने वाले होंगे।
1: बिल्कुल बात सही कही आपने, देखो वो तो जैसी आपकी संगति हुई वैसो ही आप पर असर भी हुआ। आपने देखी हुई कि भैया जाको बहुत सारी चीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, चाहे बात पढ़ाई की करें चाहे बात रोजगार की करें, तो इनको इन सब चीजों पर इन चीजों को बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: तो इसलिए हम तो अपने किसान साथियों से यही कहेंगे कि हम आज के दिन संकल्प लें, नशा नहीं स्वास्थ्य जीवन अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: और प्रवीण भैया देखो, बातें तो हम और करेंगे लेकिन बात से पहले सुनवा देते हैं अपने किसान साथियों के लिए कुछ संदेश।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए,
3: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रवीण भैया
0: जी, भैया
1: जैसे कि हमारे किसान साथी जानते हैं कि आज है महीना को चौथो शुक्रवार
0: और आज के दिन हम अपने किसान भाई के लिए लेकर आते हैं कृषि शंका समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही, और उसी क्रम में आज भी हमने किसान साथियों के बहुत सारे पत्र मिले हैं। और
0: भैया देखो, पत्र तो आप पढ़ेंगे लेकिन बात से पहले हम उन किसान भाइयों से जय कहना चाहेंगे कि आज जो है कार्यक्रम शुरू ही रहा और वे हमसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वे किस तरीका से हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं?
1: देखो बाकी हम अपने किसान साथियों को बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम में फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और SMS के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फोन करने के लिए फोन नंबर 0595-2324-326 और जाके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है SMS करने के लिए वो है 9410087876।
0: जो हमारे भैया इस समय कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे हमारा जय अनुरोध है कि वे अपनी जो समस्या है खेतीबाड़ी की वे इन नंबर पे अपना समस्या बता सकते हैं और उनका समाधान जो है हाथ के हाथ कर दो जाएगा।
1: तो अब प्रारंभ करते हैं।
0: हाँ भैया,
1: जो उनका समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम।
0: हाँ, जो पत्र आए हैं वे आप एक एक करके पढ़ो। और बात से पहले भैया हम किसान भाई से अनुरोध कर चुके हैं तो भैया शुरू करते हैं कार्यक्रम कृषि संघ का समाधान पत्रोत्तर

0: प्रवीण भैया, देखो आज हमें बहुत सारे पत्र मिले हैं और जिनमें हमने जो सबसे पहलो पत्र शामिल करूँ वो है धान की पौध से रिलेटेड, यानी कि धान की पौध लगभग इनकी 15 दिन की हो गई है, अच्छी पैदावार मिले इसके लिए धान की खेत की तैयारी कैसे करें। और जो पत्र हमें लिख कर भेज हुए ना वो है ग्राम ढकिया डाम शेरगढ़ मीरगंज बरेली से, और लिखने वाले हैं राम बाबू, राजकुमार, सियाराम, तेजराम, पप्पू, जानकी, हरेंद्र सिंह, बनवारी लाल, दरबारी लाल, जमुना प्रसाद, ममता, कल्पना, गुड्डी, ओमवती, कलावती और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: भैया देखो, जो इन्होंने समस्या लिख के भेजी है ना कि इनके धान की पौध 15 दिन की ही गई है, अच्छी पैदावार मिले जाके ले जो धान की खेत की तैयारी कैसे करें। देखो भैया, सबसे पहले तो जो पौध है हमारी वो ही अच्छी तैयार हो तभी हम अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात
1: है। इसके अलावा जो बात को ध्यान रखने है कि जब हम धान की रोपाई करते हैं सबसे पहले हमें जो है धान की जो हमारी पौध तैयार हो रही है वहां में कुछ काम करने की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल भैया,
1: जैसे कि धान में अगर आपने रोपाई कर रहे हैं वास्ते पहले एक कीटनाशक दवा को स्प्रे वापस जरूर करने हैं
0: पौध पे।
1: हाँ, क्योंकि होता है कि जो कीड़ा है वे पौध पे ही अपने अंडे दे देते हैं।
0: अच्छा,
1: और आपने देखी होगी ना जैसे ही हम रोपाई करते हैं तुरंत सुंडी उस पर आ जाती है।
0: वो कारण जय होता है कि जो हमारी पौध है उस पौध को स्वस्थ ना हो।
1: तो इसके लिए हम जो है जो दवा आती है नीम का तेल उसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नीम के तेल में एक खास बात जो होती है कि वो सुंडी को तो मारेगी
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साथ जो अंडा होता है तो अंडे को भी फाड़ देती है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो सही तरह से आगे बढ़ कर सकती है।
0: यानी कि जो अंडन से बनने वाली सूड़ी है वे भी हमारे जो फसल है उसको प्रभावित न कर पाए।
1: एक काम तो जो करने है, साथ ही साथ जो खेत की तैयारी की बात करी तो देखो भैया इन जाना लिखूंगा कि हमने जैसे पहले कौन सी फसल खेत में लाई, क्योंकि अगर उनने मेहनता की फसल लाई तो खेत की तैयारी अलग तरीके से होगी, मक्का की फसल लाई तो बाकी तैयारी अलग तरीके से होगी,
0: और जो खेत खाली पड़े हुए हैं यानी कि गेहूं की फसल के बाद खाली खेत पड़े हुए हैं तो उनकी खेत की तैयारी बिल्कुल अलग करना।
1: तो हम देखो एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात सब तरह की बता दे रहे हैं। देखो भैया, जो खेत हमारे गेहूं की फसल के बाद खाली पड़े हुए उनमें तो 2 हैरो तो मार दी हुई पहले,
0: बिल्कुल गर्मी की जुताई करी हुई,
1: अब जो है बामे बे एक हैरो या कल्टीवेटर चला के मेड़े डाल लें और बाकी बाद में कधेर जो है वे प्रयास करें कल्टीवेटर या हैरो से बनावे।
0: बिल्कुल,
1: हैरो से बनावे डबल, चाहे रोटावेटर से बनावे तो सिंगल।
0: अच्छा।
1: और वो जो देख लें कि घास है या ना है, क्योंकि घास अगर होती है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घास अगर हमारे खेत में रह गई तो फिर खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: बिल्कुल भैया,
1: लेकिन प्रयास जय करें कि रोटावेटर के कधे बनाने से बचे। और भैया बात रही अगर मेंथा की खेती तो बामे भैया हैरो से आप जो है कधे बना सकते हो आसानी से। और मक्का की फसल की बात करें तो मक्का की फसल में भैया कधे बनाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि बाकी अवशेष जो है काफी होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बाकी प्रयास जय करें पानी भरन के बाद में ना जो ऊपर अवशेष तैरावे
0: उनको निकाल के खैर बाहर कर दें,
1: तभी जो है ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब हवा चलेगी ना पानी के ऊपर तो इतने से उत्तर को जो अवशेष हमें भा देंगे तो हमारी पौध दब जाएगी और दबन के बाद में पौध बहुत सीधी नहीं पाती है।
0: तो बाकी तो भैया हमारे किसान साथी जय करें, जितने भी अवशेष बामा जो कहता ना कि खैन जैसी इकट्ठी हो जाती है खेत में, बाको अपने खेत से बाहर यानी कि मेड़ पर रख दे निकाल के, या फिर ज़्यादा संभव हो सके तो थोड़ा अलग हटा के डाल लें।
1: तो इस तरीके से जो काम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनकी जो फसल है वो अच्छी तरह से बर्बाद करेगी और अच्छी पैदावार इनको देगी।
0: बिल्कुल भैया। और प्रवीण भैया, जो हमें एक और अगलो पत्र मिलू है जिसमें इनने एक सवाल करो है, धान की पौध ने डाली है इनने,
1: अच्छा
0: का पबेरा धान बोए सकते हैं, अगर वो सकते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें और धान किस तरह से बोएं जिससे कि जो उनकी फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी करे और अच्छी पैदावार भी मिल सके। और प्रवीण भैया, जो हमें पत्र मिलो है ग्राम बलूपुरा मीरगंज बरेली से, लिखन वाले हैं कृपा शंकर, ललित कुमार, योगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरिराम, राजा राम, हरिप्रसाद, हरचरण, जानकी, शिवहरी और इनके परिवार के सभी लोग।
1: भैया देखो, इनने बात करी है पबेरा धान बोन की। भैया देखो, जा तो बहुत पुरानी विधि है, जब विधि तो समझो कि खत्म ही गई है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अब जो है हम मशीनरी युग में जी रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: अब जो है धान बोन की मशीनें भी आ गई हैं। हमारे किसान भैया धान की मशीन से रोपाई कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। लेकिन भैया देखो, कार्यक्रम में और आगे बढ़ाएं वास्ते पहले इनका जवाब देंगे, हम देखते हैं हमारे कौन से साथी हमारे लाइन पर हैं।
0: बिल्कुल,
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन साथी बात कर रहे हैं
2: सर? सुनील कुमार साहब और सर जसविंदर सिंह साहब
1: जी,
2: मेरा आपको प्यार भरा राम राम।
1: राम राम, राम।
2: मैं बोल रहा हूँ महल्ला थाना टी ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान PWD वाले।
1: जी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और आज आपने फोन किया है, तो क्या समस्या है आपकी?
2: समस्या तो कुछ नहीं है, ऐसा है भाई, आप जो सर विक्रांत चौधरी साहब के समय में जो कृषि जगत कार्यक्रम में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सर विक्रांत चौधरी साहब का दिल से धन्यवाद और कृषि जगत कार्यक्रम के सभी कंपनियों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आज हमें फोन किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो बताने का कष्ट करें।
2: समस्या छोटी सी है, घरेलू सफरी का पेड़ लगाना चाहते हैं और सुनते हैं कि बरसात में अगर सफरी का पेड़ लगाए तो जल्दी हो जाता है, तो आप इसके लिए कोई सफरी की एक ऐसी नस्ल बता दें जो अच्छी सफरी हो, मीठी हो।
0: जी जी,
2: तानी ना हो।
1: जी जी, देखिए जो आपने सफरी यानी कि अमरूद की बात करी है, तो अमरूद की अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रचलित वेरायटी है L49, जिसे हम लखनऊ 49 के नाम से भी जानते हैं।
2: और हमारे 49 के नाम से?
1: जी जी, हमारे आसपास के क्षेत्र में जो नर्सरियां हैं वहां पे आपको ये आसानी से मिल भी जाएगी। और इसका फल इतना अच्छा होता है, मोटा गूदेदार फल होता है, बीजे थोड़े कम होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है इसका। और बाजार में अगर आप बात करेंगे तो बाजार में भी सबसे ज्यादा फल जो है वो इसी प्रजाति का आपको मिलता है, तो ये आप प्रजाति ले लें, ये प्रजाति बहुत बढ़िया है, आप इसको लगा सकते हैं।
0: एक प्रजाति और ले सकते हैं आप, एक ताइवान नाम से एक प्रजाति है और बहुत आसान, जी बहुत आसानी से आपको ये मार्केट में मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये होती है कि इसका जो पौधा होता है ना वो बहुत कम समय में यानी कि जल्दी ही फल देने लगता है। और अगर अच्छे और स्वादिष्ट फल आपको लेने हैं तो 1-2 साल किसी भी पौधे से फल ना लें तो ही बेहतर रहता है, क्योंकि पौधे का विकास अगर अच्छे से हो जाता है तो उस पे जो पौधे पे जो फल लगते हैं वो अच्छे भी होते हैं और पौधा जो है वो फल को रोकने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। तो आप ये भी कर

0: धान बोन की इच्छा रहे, हम उनके लिए कहेंगे कि धान बोन की मशीन आ गई है, आप उससे बुवाई कर सकते हैं। थोड़ा समय लेट तो ही गए, लेकिन जो जल्दी जो लेट प्रजातियां हमारी जैसे 1509 है, या हम बात करें 1847 है, 1692 है, ये प्रजातियां लगा सकते हैं, या जो PR 126 है, ये प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं, हमारे किसान भाई इसकी सीधी बुवाई कर सकते हैं और अच्छा लाभ इनको इससे मिल सकता है।
1: प्रवीण भैया, हम समझ रहे हैं कि जो बलू प्रासा हमें जो पत्र मिलो हो और जो उनने हमसे सवाल करो हो उनको जवाब उनको मिल गए होगा। और प्रवीण भैया, जो अगलो पत्र हमें मिलो है ग्राम सिमरिया आंवला बरेली से, लिखन वाले हैं कृपा शंकर, हरीश कुमार, जितेंद्र सिंह, छुट्टन सिंह, राजेश, कांता प्रसाद, लवेश, नरपत सिंह, प्यारे लाल, करण सिंह और इनके सभी साथी। इनने भी एक सवाल पूछू है, इन्हें पूछिए भैया करीब 1 एकड़ में इन्हें मक्का लगाने हैं, शिवाली को खेत इनको खाली ही चुका है, यानी कि शिवाली को जो खेत इन्हें शिवाली लई ही जिस खेत से उसमें ही मक्का की बुवाई करना चाह रहे हैं, तो क्या उस खेत में मक्का लगा सकते हैं और या कोई और फसल लगावे, खेत जो है उनको लगभग ऊंचे को यानी कि जलभराव की स्थिति वहां में न रहती है, अगर कोई और फसल लगा सकते हैं तो बाकी बारे में भी इन्हें सुझाव मांगू है।
0: देखो भैया, बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने धान लगाने की न सोची है, हम तो यही कहेंगे इन भाइयों से कि आप जो है मक्का की खेती करने का विचार है तो मक्का की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में उर्द की अगर खेती होती हो तो आप उर्द भी कर सकते हैं, सोयाबीन भी हम कर सकते हैं, सूरजमुखी भी हम कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: सारी चीजें के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अच्छे मुनाफा हमारे किसान भाई इनको देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अगर हम बात करें बेबी कॉर्न में PEHM2, प्रताप शंकर मक्का, चारा मक्का अगर बोना चाह रहे हैं तो अफ्रीकन टाल, विजय, सामान्य प्रजातियों में पूसा कंपोजिट 1, पूसा कंपोजिट 2 और पूसा कंपोजिट 3, ये प्रजातियां हैं, इनको हम इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो भैया हैं वो हम समझते हैं कि उनकी जो समस्या उन्होंने हमें सवाल पूछो है वो उसको समाधान ही वो होगा। और एक पत्र हमें और मिलो है प्रवीण भैया, जो ग्राम लटूरी भोजीपुरा बरेली से हैं, लिखन वाले हैं हसमत अली, अजमत अली, शेख अली, अब्दुल हफीज, सरफराज, मुस्तफा अली, निशार अहमद, नन्ने, इकबाल, इकरार, फारूक भाई, इसरार भाई और इनके साथी लोग।
0: जी
1: पूछ रहे हैं भैया कि हम सब्जी की खेती करते हैं, खासकर सेमी और छोटे वालों का कद्दू लगाते हैं, का इस समय लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगावे, कौन सी प्रजाति लगावे और खेत की तैयारी कैसे करें?
0: भैया देखो, इनने बात करी है कि जो बेल वाली फसलें हैं उनकी बात है, ये अच्छी बात है। देखो जो कद्दू है ना, यानी गंगा फल, इसकी भैया मार्केट में बड़ी मांग है, हमारे किसान भैया इसको लगा के अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं और जाके बिक्री भी इतनी है कि अच्छे भाव हमें आसानी से मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, कभी कभी तो आपने देखी हुई ना कि सेम की और कद्दू की बाजार में इतनी डिमांड रहती है कि उनके रेट भी बहुत हाई रहते हैं, और अगर हमें इनसे अच्छे उत्पादन लेने हैं तो समय से हटकर थोड़ी सी अगर इनकी पैदावार लें या फसल करें तो हम समझते हैं कि इनको जो रेट है वो अच्छे से ले सकते हैं।
0: लेकिन रेट भैया तभी अच्छो मिलेगा जब ये जाके खेती मचान विधि से करें, क्योंकि अगर जमीन के संपर्क में फल आते ना तो फल थोड़ा खराब ही जाते हैं, बाजार भाव गिर जाते।
1: देखो अगर कोई भी चीज दगीली है या फिर देखने में सुंदर ना है तो आज के समय में चाहे वो स्वादिष्ट है या आप उसको अच्छी तरीके से आपने उसको पैदा करो है, फिर भी वो उतने अच्छे दाम न दे पाती।
0: भैया देखो जाके ले जो है हमारे किसान भैया अच्छी तरीके से खेत तैयार कर लें, एक दो बार हैरो चला के रोटावेटर चला लें और बाकी बाद में क्यारियों में जाके बुवाई करें, लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो प्रजाति की बात करें तो हम गंगा फल की जो है पूसा विश्वास, काशी उज्ज्वल, पूसा हाइब्रिड 2, अर्की चंदन, ये भैया अच्छी प्रजातियां हैं, इनको इस्तेमाल करके हमारे किसान भैया अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रवीण भैया, और हम समझते हैं कि जो भैया हमने हमें भेजी ही समस्या उसको समाधान ही होगा। और जो अगलो पत्र हमें मिला है ग्राम कुआं वाली मिलक, तहसील सदर रामपुर से, लिखन वाले हैं जे बबलू, और इन्हें पूछिए भैया इन्हें धान से धान की बुवाई जो है वो सीधे तरीका से करी यानी कि मशीन से करी, और 7 दिन हो गए हैं, उसमें घास बहुत अधिक है, बहुत घास हो रही है, तो क्या करें ताकि जो उनकी धान की फसल है उससे अच्छी पैदावार मिल सके और जो खरपतवार हैं वे भी नष्ट हो जाएं।
0: भैया हमें जल लग रही है कि इनने पहली बार ही

0: धान की सीधी बुवाई करी है, क्योंकि धान की सीधी बुवाई करना एक बहुत ही अच्छी कला है, और अगर सही तरह से ना बोगो तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे इनने बात करी ना कि 7 दिन में ही इन्हें खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, बाकी वजह जा है कि इन्हें रोपाई करने के बाद जब हम सिंचाई करते हैं तुरंत, तो उसके बाद में हमें पेंडामेथिलीन नाम की दवा जो आती है उसका इस्तेमाल करना होता है खरपतवार नाशी का, जिससे कि खरपतवार नहीं जमते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 7 दिन में ही खरपतवार होगा, इसका मतलब यह है कि इन्होंने वो दवा नहीं लगाई है। लेकिन अभी भी किसान साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी आप दवा लगा के खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, जब हमारे जो खरपतवार हैं उनके जो पत्तियों की संख्या है 2 से 5 जब हो जाएगी, ये अवस्था लगभग 15 से 20 दिन पर आती है, तब आपको जो है बिसपायरी बैग सोडियम नाम की दवा जो आती है वो 80 से लेकर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हमारे किसान भैया इस्तेमाल करेंगे तो जो खरपतवार होंगे ना उनकी जो है संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, और जो हमारी धान की फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार कर सकेगी। इस तरीके से ये काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: प्रवीण भैया देखो, पत्र तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने पत्र तो हम अपने कार्यक्रम में संभव ना है
0: तो भैया ऐसा करते हैं, जे पत्र रख लो, अगले कार्यक्रम में इनको जरूर शामिल करेंगे। और भैया देखो, आज को जो कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम हो ना, वो यहीं पर समाप्त होता है।
1: बिल्कुल।

0: और जसविंदर भैया,
1: हाँ प्रवीण जी,
0: हमारे किसान बहन की जो भी समस्याएं उनको समाधान तो कभी, और जब समस्याओं को समाधान ही जाता ना तो मन करता है मनोरंजन को।
1: बिल्कुल भैया, देखो मनोरंजन के लिए हम आज भी अपने किसान साथियों के लिए सुनवा रहे हैं एक लोकगीत जिसके बोल हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और जिसको अपनी मधुर आवाज दी है सरिता कक्कड़ ने।

0: जसवंत भैया,
1: हाँ प्रवीण भैया,
0: आपने लोकगीत तो बहुत ही बढ़िया सुनवाओ और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भैया इनको भी खूब पसंद आओगे और जाको आवाज दही सरिता कक्कड़ ने।
1: बिल्कुल प्रवीण भैया, और अब हम अपने किसान साथियों को बता दें कि मई से जो हमारे कार्यक्रम में बदलाव करोगे हुए, बाकी अनुसार जो अब कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे उनमें प्रत्येक बुधवार यानी के महीना के प्रत्येक पहले बुधवार को सफल कृषक से करी गई बातचीत सुनवाएंगे, दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई बातचीत सुनवाएंगे और तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी को आयोजन करो जाएगा।
0: और भैया अगर हम बात करें गुरुवार की, तो किसान भैया जो है गुरुवार की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन बात से पहले हम बुधवार की बता दें कि चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप से करेगी बातचीत हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे। इसके साथ साथ अगर पांचवें बुधवार आओ तो भैया हम सफल कृषक से करेगी बातचीत अपने किसान भाई इनको सुनवाएंगे।
1: अब बात करते हैं भैया, देखो गुरुवार की, गुरुवार में महीना के प्रत्येक पहले और तीसरे और पांचवें गुरुवार को हम सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम।
0: और भैया दूसरे और चौथे गुरुवार को हम किसान बहन को सुनवाएंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान, जो कि जो है किसान बहन को सुनना जरूर भूलना चाहिए, क्योंकि जा में सुनेंगे तो वे कई चीजें ऐसी हैं जो सुन सकेंगे, जैसे कृषि समाचार हैं, काका तकनीकी नई नई आ रही है जाके बारे में जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल आपने कही, बाजार भाव भी हमारे जाके अंतर्गत बताओ जाता है, तो के अनुसार हमारे जो किसान साथी हैं अपनी फसलन को विक्रय कर सकते हैं। जाई के अनुसार प्रत्येक जो महीना के पहले और तीसरे और पांचवें शुक्रवार को हम सुनवाएंगे अपने किसान साथियों के लिए कार्यक्रम लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतन पर आधारित कार्यक्रम होगा।
0: और भैया दूसरे और चौथे शुक्रवार को हम किसान बहन को सुनवाएंगे कृषि संख्या समाधान, जो कि उनसे जुड़े सवाल और उनको समाधान होगा, जैसे कि आज हमने अपने किसान बहन को सुनवाओ।
1: बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम से जुड़न के लिए हम प्रवीण भैया अपने किसान साथियों को बता दें कि हमारा फोन नंबर है 0595-23-24-326। इस नंबर पर फोन करके डायरेक्ट हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं
0: और भैया पत्रों के माध्यम से भी वो जुड़ सकते हैं, इसके लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9410087876।
1: इसके अलावा ईमेल पे भी हमें पत्र लिख सकते हैं, ईमेल को पता है patramilaairampur@gmail.com। और भैया देखो पत्राचार के हेतु जो पता है वो हम अपने कार्यक्रम के अंत में बतावेंगे।
0: और भैया देखो अब बात कर ले जाए थोड़ी सी खेती बाड़ी की।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे किसान भैया जो अन्य वाली फसलें ना, जाके साथ साथ मसाले वाली फसलें, औषधीय फसलें, फूल वाली खेती, बागवानी, विभिन्न प्रकार की चीजें वो करते रहते हैं।
1: बिल्कुल भैया देखो, अब थोड़ा सा प्रचलन ज्यादा भाव है हमारे क्षेत्र में, अब लोग सतावर की खेती बहुत ज्यादा करने लग रहे हैं और जैसे बहुत अच्छी पैदावार लेकर और बहुत अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: भैया देखो सतावर की फसल एक ऐसी फसल है ना, अगर भैया सही तरह से ही जाए तो भैया लाखों में बिकती है।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही, जाके ले आपको धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी हमारे किसान साथी का होता ना कि फसल तो अच्छे से पैदावार कर लेते हैं और पैदावार भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन होता है जो फसल होती है बाको रोक ना पाते और औने पौने दामन पर बेच देते हैं।
0: यही तो कह रहे हैं हम, अगर समय रहते सब बातों को सीख लें और बाकी बाद में खेती करें तो बहुत ही अच्छा रहता है।
1: देखो भैया अगर हम बात करें ना कि जाकी फसल हम कहां लगा सकते हैं, अगर जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु

0: बीजा के लिए बड़ा उपयुक्त रहती है, यानी कि 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है जब फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है।
1: और यहाँ के अपनी जमीन के आसपास को जो तापमान है ना वो लगभग इतना ही रहता है और अपने क्षेत्र में इसी लिए अच्छी फल फूल रही है। और भैया हल्की ठंड सहन करने की क्षमता इसमें होती है, लेकिन ज्यादा पाला अगर पड़ता है तो नुकसान भी हो सकता है।
0: बिल्कुल भैया, तो बाकी ले तो हमारे किसान साथी उपाय कर सकते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है वो अच्छी जल निकासी वाली बुलई दोमट या फिर दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छी रहती है।
1: इसके साथ साथ भैया रोपाई करने से पहले खेत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और जुताई जो है करने से बाद में जो है 8 से 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद अगर मिला देते हैं और उसके बाद भैया कूड़ खेद देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: बिल्कुल भैया, देखो एक चीज और करें, क्यारियां बना लें या फिर मेड़ बना के जाके रोपाई करें। और क्यारियां अगर बना रहे हैं तो भैया छोटी क्यारियां बनावा, क्योंकि अगर आप पानी लगा रहे हैं ना, सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, तो सिंचाई में जहां में ज्यादा जल भराव की स्थिति ना हुआ, इस तरीका से आपकी क्यारी हुई तो फसल जो है वो अच्छी पैदावार देगी।
1: अब भैया देखो जाके रोपाई की बात करें तो दो समय जाके रोपाई होती है, एक तो फरवरी में हमारे किसान भैया कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, इसके अलावा जो अब मौसम चल रहा है जून जुलाई को जहां में कर सकते हैं मानसून के समय।
0: बिल्कुल,
1: तो इस समय भी रोपाई कर सकते हैं हमारे किसान भैया। और हम अपने किसान भाई को जो बता दें, पौधा अगर अच्छी तरीके से तैयार होगी तभी ज्यादा अच्छे मुनाफा उन्हें मिल सकते हैं।
0: देखो भैया, जाकेला हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें पहले ही पौध डाल रही हुई 2 से 3 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त हो जाता है। और अधिकांश जो किसान है ना नर्सरी में पौध तैयार करके ही रोपाई करते हैं।
1: और भैया देखो अगर हम बात करें पौधे में लगाने की बात, तो पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें तो ही अच्छा रहता है।
0: भैया देखो, खाद और उर्वरक हमारे किसान साथी जो है वो नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और फास्फोरस 20 से 25 किलोग्राम और पोटास 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर दें और वो भी दो किस्तन में तो बहुत अच्छी पैदावार मिल सकती है जामा।
1: हाँ भैया, इस तरीके से हमारे भैया ध्यान रखें, लेकिन जामा जो है ना कीड़े तो ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन बीमारियां कभी कभी लग जाती हैं, तो उसके लिए जो हमारे फफूंदी नाशक दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और भैया देखो, इस तरीका से अगर हमारे जो किसान साथी हैं सतावर की फसल करेंगे तो हम समझते हैं कि उनके लिए अच्छी पैदावार मिल सकती है और बस बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।
1: बस जामा जा है कि भैया जैसे ही हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और सुखाने के बाद में जाए कोल्ड स्टोर में रखते हैं ज्यादा बेहतर रहता है, अगर तुरंत बेचेंगे तो भैया लाभ कम मिलता है।
0: लेकिन भैया देखो, हमारे किसान साथी कुछ वचन को काम करते हैं, ज्यादा मेहनत ना करना चाहते हैं, तो भी सोचता कि हम खेत से ही डायरेक्ट अगर उसको बोए बेच दें तो हम जल्दी फारिग हो जाएंगे।
1: हम आपको बता दें कि बा में जो है आपको 40% लाभ ही मिल पाएगा। अगर आपको पूरा 100% लाभ लेने हैं तो प्रोसेसिंग करने के बाद में बाय कोल्ड स्टोर में रखें और जब फसल कट के खत्म ही जाए बाकी बाद बेचेंगे तो एकदम भाव अच्छा होता है और अच्छे लाभ हमें मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो भैया इस तरीके से जो है हमारे भैया औषधीय फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं सतावर से। और भैया देखो, अब अपने कार्यक्रम में समय ज्यादा ना है, लेकिन चलते चलते पहले बता दें मौसम को हाल, जिससे कि भाई के हिसाब से अपनी खेती बाड़ी को काम कर सके।
0: देखो भैया, कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है।
1: और भैया आर्द्रता की बात करें तो 42% रहने की उम्मीद जताई गई है।
0: हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और हवा की दिशा जो है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से हवा बहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है।
1: भाई देखो, जब तो ही मौसम की जानकारी, अब हमारे भैया के मन में जो आ रही है कि भैया बारिश होने की तो कोई संभावना लग रही है क्योंकि मानसून को समय चल रहा है और गर्मी भी काफी रही है।
0: बिल्कुल भैया,
1: और धान की रोपाई का काम भी शुरू ही हुआ है, तो हम अपने भैया को बता दें कि भैया ज्यादा समय ना है, मानसून बस 2-3 दिन में ही आन बार हुआ है और जब मानसून आ जाएगा तो भैया गर्मी से भी राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो धान की फसल को हमें पानी लगाना पड़ रहा है वो भी कम लगाना पड़ेगा।
0: एक बात भैया और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जो हमारे किसान साथी मानसून को इंतजार कर रहे हैं, देखो इंतजार कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इंतजार करने में अपनी जो फसलें हैं उनको नुकसान ना करें। जो भी फसलें उनके खेतन में लगी भी हैं और सिंचाई की आवश्यकता है तो भैया देखो सिंचाई जरूर कर लें। देखो अगर सिंचाई के बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो हमारी जो पानी है वो खराब ना हो, पानी की निकासी की व्यवस्था तो हमारे किसान साथी करते ही हैं अपनी फसलों में, तो ध्यान रखें के मानसून के इंतजार में जो अपनी फसलें हैं उनको न सुखा लें।
1: हाँ भैया, और देखो अब चलते चलते बता दें कि कल हमारे कार्यक्रम में काका होएगा, कल एक चर्चा होगी जिसका विषय होगा बैगन फसल में कीट नियंत्रण,
0: साथ ही सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा आम के बागों की देखभाल और सामायिक कार्य।
1: भैया मनोरंजन के लिए सुनवाओ जाएगा लोकगीत और कृषि संकेत में सुनवाओ जाएगा गन्ने की फसल में फसल सुरक्षा के उपाय,
0: साथ ही सुनवाएंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और कराएंगे मौसम की जानकारी। तो किसान साथियों, जो तो हो हमारो आज को कार्यक्रम कैसो लगो हमें लिखनो ना भूलें,
1: हमारो कार्यक्रम को पतो लिख लें, इसके साथ साथ उनकी जो समस्या है उसको भी बतानो जरूर देखें कि जो समस्या उनको समाधान करो जाएगा। हमारा पतो है कार्यक्रम कृषि जगत
0: द्वारा केंद्र निदेशक
1: आकाशवाणी रामपुर
0: पिन 244901।
1: अब अपने भैया प्रवीण
0: और अपने भैया जसमिंदर को दें इजाजत।
1: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तबला वादन। कलाकार हैं निसार हुसैन। इनसे तबले पर सुनते हैं झपताल। सारंगी पर संगत की है जाकिर खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने तबले पर निसार हुसैन का बजाया झपताल सुना। सारंगी पर संगत की थी जाकिर खान ने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज शाम 7:31 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे जमील अहमद की आवाज में चंद नात। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार FIR दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में SIT की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। SIT मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे, उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जमील अहमद की गाई चंद नात।

अभी आप सुन रहे थे वली हैदर की आवाज में सलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं सुनिए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज भी हमें आपके ढेरों व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं और हमारी भी पूरी पूरी कोशिश है कि हम भी आप तक बेहतरीन गीत पहुंचा सके। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। गीत सुनना चाहते हैं थाना टीन रामपुर से एक रामअली प्रेमी फैजान एहसान और आसिफ भाई, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, लालमता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हमारे श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। इन्हीं के साथ बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण और फुंदी भाई बागरी, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक सीमा वर्मा अमित वर्मा सचिन समरराज आर्यन बेबी आरोही ऐशिका और अंजलि श्वेता वर्मा, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे जाधव संचित वायाल प्रथमेश देशमुख प्रणाली देशमुख सर्वद सानवी और हर्षिता देशमुख, बिहारीपुर खंडवा से राकेश पिंकी और दुर्गा, बिहार एनक्लेव लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी, जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, जेल रोड रायगढ़ के हमारे सुनने वाले हैं लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा पूजा रानी और अजय देव थापा, छत्तीसगढ़ से जानवी डोमिन यामिनी और रोहित, डोंडी लोहारा से हरिशंकर और प्रभा रानी, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा काजल शर्मा मीना शर्मा और अनामिका शर्मा, रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव सुधा कुमारी और संध्या कुमारी, इन्हीं के साथ वीरमगाम सिटी से अजीता मेहरा और सुनीता मेहरा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा विजय और अनुश्री ढींगरा, बिलाईगढ़ से देव तुषार और अजय देव, जेल रोड नजीबाबाद से राधिका और प्रभा, और चंद्रनगर दिल्ली से मनमोहन चौक मीठी चौक और खट्टे चौक के साथ डुमराव से वलीउल्ला अंसारी राज अंसारी और फातिमा नास अंसारी। आप सभी के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा।

बठिंडा रोड मर्डी डब वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया और इनके परिवार के सभी लोग, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से और हर्षिता लाम से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया के साथ अलकबीर, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। गीत के लिए फरमाइश भेजी है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और परमजीत फातिमा कौर। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और सुजाता पोहारकर। हिंगोली से रामचंद्र इंगोले। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरोनेशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। जिला पीलीभीत ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, संतोषी, प्रिया, चंचल और लाला राम पुड़कौली। एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। इन्हीं के साथ बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत और टुकटुक, और मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, रही सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। आप सभी के लिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म है पराया धन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन में। इसी आवाज को अब सुनते हैं फिल्म शंकर हुसैन के एक गीत में। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोताओं की। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गांव खवरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना कंचव। कहीं डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के हमारे सुनने वाले हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दीक्षा और कुश मुड़त। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लदावली से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश भेजी है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीना परवीन और माहिरा नूर ने। मोहल्ला बारादारी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई। इन्हीं के साथ बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शाइना काजल और भाई शहजाद अली। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा और इन्हीं के साथ डोंडी लोहारा से प्रभा रानी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। और कोल्हापुर महाराष्ट्र से बब्बन चौगले के साथ ही कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। आप सभी के लिए लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म शंकर हुसैन से।

शंकर हुसैन फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत गाता चल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला अनुरोध हमारे इन सभी श्रोताओं का, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार,

बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवाशेरे। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के हमारे सुनने वाले हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से फरमाइश भेजी है जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख ने। इन्हीं के साथ हैं करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगामा से हाजी इसहाक लोलामनी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। भुजो कैंचिया करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। परिमहल कासगंज के हमारे श्रोता हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी और मास्टर जाहिद अली के साथ मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीना तमान और शमा परवीन। और नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक और संदीप के साथ रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। आप सभी के लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

सक्षम क्षणिक चव्हाण, ज्योति अजीत चव्हाण और लता राजा राम चव्हाण चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, स्टेशन रोड जमशेदपुर के हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सभी लोग, शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नास, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के हमारे सुनने वाले हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता, वार्ड नंबर 16 गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी और शोभा रघुवंशी के साथ वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, इरशाद आजमी, अरबाज अहमद, अबुजार अहमद, अफशा बानो, अनम बानो, अल्फिया बानो, अमीना इरशाद, अदीबा इरशाद, विलेज सोनवाड़ा, पोस्ट कोटिला, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान, और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और समस्त अब्बासी परिवार, आप सभी के लिए आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म है ये वादा रहा।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार

0: और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज लंदन में 10वीं सालाना बर्तानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बर्तानिया की शराकतदारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है, जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन एआई, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मौाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है, जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नजदीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नजदीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नजदीक थे, जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ किया है कि मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने ताजियत का इजहार किया है। नेज जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्तात का ऐलान किया, जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए जरूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्तात का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं, जिसमें दो भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफियों के ग्रुप से बातचीत की। वजीर मौसूफ ने उनसे भारत में रूनमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफर से भारत नेज भारत यूरोप शराकतदारी के इम्कान के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाजियात के तस्वीर का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की कौंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकतदारी का इरादा किया, जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तई अपने अहद पर जोर दिया।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रूपक कागज के पंछी। आलेख सुहेल जैदी का है। वाचन स्वर हैं असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी के और प्रस्तुति है मनदीप कौर की।
1: कागज के पंछी। इंसान जिसकी ख्वाहिशें अनंत हैं, असीमित हैं, न बंधन है न कोई बंदिश, बहुत ऊंची है उड़ान उसकी तमन्नाओं और आरजुओं की। वो करता है अपनी ख्वाहिशों का इजहार, कभी किसी तरह तो कभी किसी और तरह, लेकिन उसे आसमान की बुलंदियों को छूने की तमन्ना हमेशा रहती है। और इसी को बयां करने का खूबसूरत जरिया है पतंगे। जब रंग बिरंगी पतंग आसमान में लहलाती है तो लगता है मानो रंग बिरंगी तितलियों का या परियों का मेला लगा हो।

0: वो पतंगों का पींच लड़ाना, काटना, फिर डोर को लूटना शायद उम्र की सीमाओं से परे हो जाता है। बहुत करीबी रिश्ता है पतंग और डोर का, एक के बिना दूजे का शायद कोई मतलब ही नहीं। पतंग की जिंदगी है उसकी डोर। रामपुर में पतंग बहुत सारे दिलों की धड़कन रही है, पहले भी और आज भी। पतंग के साथ रामपुर के लोगों के रिश्ते की कहानी आज आपको सुनवाते हैं।
1: ये रामपुर है दारुल सुरूर, जो मजा यहां है वो और कहीं नहीं। ये हम नहीं कहते, रामपुर की बाबत मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने दोस्त हरगोपाल तुफ्ता को लिख के एक खत में ये बात कही है। गालिब की ये बात सोलह आने सच है, जो मजा रामपुर में है वाकई दुनिया में और कहीं नहीं। रामपुर पूरी दुनिया में तहजीब तमद्दुन का एक मरकज रहा है, इसे मौसीकी का गहवारा भी कहा जाता है। लेकिन रामपुर एक और फन के लिए मशहूर है, वो है पतंगबाजी। भारतवर्ष को आजाद कराने में जहां तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, वहीं पतंग का भी बड़ा रोल रहा है। 1928 में साइमन कमीशन को बैक पतंगों ने ही कहा था, यह खेल मेंटल शार्पनेस को डेवलप करता है, रोजगार भी देता है और पतंगों के निर्यात से सरकार को राजस्व भी मिलता है। पतंग के खिलाड़ियों को सर्वाइकल जैसी बीमारी भी नहीं होती और हां नजर भी तेज होती है। पतंगबाजी, अरे अरे, लेकिन क्या करें जनाब, दुनिया तो पतंग उड़ाने वालों को पतंगबाज और पतंग उड़ाने को पतंगबाजी के नाम से ही जानती है। आज माजरा इसका उलट है, पतंग उड़ाने वाले खुद को पतंगबाज कहे जाने से चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं, कहते हैं पतंग उड़ाना एक कला है, एक खेल है, एक विज्ञान है, इसमें तंदुरुस्ती का राज छिपा है। आज कितने ही ऐसे रोग हैं जिनका उपचार महज पतंग उड़ाने से ही हो सकता है। सभी के अपने अपने तर्क हैं जिनसे हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो जिसने पतंगबाजी ना की हो।
2: पतंग उड़ाना एक खेल है अथवा नहीं, इस बात पर भी अभी विवाद है। बहरहाल ये खेल जमीन पर नहीं आसमान पर चलता है। ये विवाद कैसे निपटेगा ये तो समय ही तय करेगा। फिलहाल इस फीचर को करने से पहले मैं खुद यानी आपका दोस्त सुहेल जैदी भी इस खेल को महज वक्त बर्बादी और वाहियात मानता था। अलबत्ता बचपन में मैंने भी पतंगें खूब उड़ाई हैं। गर्मी की दोपहर में जब सब घर वाले सो रहे होते तो चुपके से छोटी वाली पतंग, जिसे हम पवल्ला कहते थे, और छोटी सी चरखी लेकर पड़ोसी की छत पर चढ़ जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ छत नहीं थी, खपरेल थी। दोपहर में हमारी धमाचौकड़ी से यकीनन पड़ोसन की नींद में खलल पड़ता होगा, इस बात का हमें ख्याल ही नहीं था। उसने हमारी अम्मा से शिकायत की होगी। एक दिन अम्मा ने हमें डंडे से खूब मारा, यहाँ मारा, वहां मारा, पीटा, मुर्गा भी बनाया, उठक बैठक कराई। इतना ही नहीं, वो छोटी सी चरखी चूल्हे में रख दी, जिससे शाम की चाय बन गई। मुझे अच्छी तरह याद है मैं अपनी पिटाई पर इतना नहीं रोया था, बल्कि तिल तिल कर जलती उस छोटी सी चरखी ने मुझे बहुत रुलाया था। पैसे जोड़ जोड़ कर हम उसे खरीद कर लाए थे। उससे पहले तो एक छोटी सी ईंट पर ही सादी और मांझा चढ़ाकर अपना काम चलाते थे। वो चरखी लाने पर हमें कितनी खुशी मिली थी ये शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल उस दिन से तोबा कर ली कि पतंग नहीं उड़ाएंगे, लेकिन आज पता चला कि पतंग उड़ाने में सेहत का राज छुपा है। इस खेल में भी नाम, इज्जत और पैसे की कमी नहीं है।
1: फिलहाल राज की एक बात बता दूं कि इस खेल में भी क्रिकेट की तरह फिक्सिंग भी होती थी। हालांकि इस बात को पतंग उड़ाने के माहिरीन सिरे से नकार देते हैं। अपने शहर के इस खेल ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नामचीन मुल्कों में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया है। हद तो यह है कि मैकाले के शिष्यों को भी इस शहर के पतंग के खिलाड़ियों ने शिक्षा दी है। अमेरिका हो या लंदन, फ्रांस हो या फिर सिंगापुर, अपने शहर के लोगों ने उन्हें इस पतंग को उड़ाना सिखाया और पतंग में सुतल्ले तक बांधनी सिखाई है। पतंगबाज अक्सर एक शेर कहें या तुकबंदी जरूर गुनगुनाते हैं। पतंगबाजी तो खुदा राजी, पतंग छूटे तो खुदा रूठे। पतंगबाजी का आगाज कहां से हुआ? अपने शहर में इस खेल के कितने पंजीकृत क्लब हैं? इस खेल से क्या क्या फायदे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं मशहूर पतंग के खिलाड़ी और रामपुर काइट एसोसिएशन के सेक्रेटरी तथा गोल्डन क्लब की प्रेसिडेंट, शहर के मोहल्ला काजी की गली के निवासी उस्ताद मंजूर अली खान।
3: इससे फायदा यह है कि आपके एक तो एक्सरसाइज हो और सर्वाइकल का मर्ज बिल्कुल 100% दूर हो जाता है इससे, और तमाम ब्लड सर्कुलेशन रहता है और टेंशन किसी किस्म की दिमाग में नहीं रहती। और एक हमारा गेम ऐसा है इसमें सद्भावना कायम रहती है, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहती है। एक क्लब में हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब लोग मिले हुए। कभी हमारे यहाँ सद्भावना खराब होती नहीं है, कोई नहीं कहता कि मैं हिंदू या मुसलमान, और बड़े प्रेम के साथ एक क्लब में सब मिलके लड़ा और कोई टेंशन रहती नहीं है। अच्छा, पतंगबाज को कोई बीमारी होती नहीं है, आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और जब वहाँ मैदान से आता है तो खाना भी ज्यादा खाता है। हमारी एसोसिएशन में 36 क्लब हैं इस वक्त, उसमें सबके नाम है हमारे पास। पतंगबाजी की शुरुआत हकीम लुकमान के जमाने से हुई। हकीम लुकमान किया एक मरीज था जो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे और उसे ये उम्मीद थी कि मैं सही नहीं हूँ। तो हकीम लुकमान ने एक पतंग लाकर बाहर से अपने घर की दीवार में गिराई। जब वो आंगन में गिरी तो वो मरीज ने इधर उधर देखा, कोई था नहीं, वो उठ के भागा उसे उठाने। बस वो लुकमान साहब निकल गया, उन्होंने तू सही है बिल्कुल, और वो अपने पैरों से चले। हमारे हिंदुस्तान में गुजरात और राजस्थान में भी संक्रांत को 13 जनवरी को पतंग उड़ाई जाती है, और गुजरात में जितने लोग होते हैं सबके नाम की एक एक पतंग उड़ती है, और पूरा गुजरात का आसमान काला होता है उस दिन, और रंगीन पतंगे, और सब लोग छत पे होते हैं, लड़की लड़के सब औरतें, और होली को 3 दिन पतंग इलाहाबाद में बहुत उड़ती है। मांझा आ गया है सिंथेटिक, इससे बरेली के कारोबार पे भी असर पड़ लिया और रामपुर के भी। ये बहुत मजबूत मांझा है प्लास्टिक का, और ये टूटता नहीं, जिससे बच्चों की उंगलियों में गड़ जाता है हड्डी तक, उससे घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के, तो माँ बाप बुरा मान रहे हैं। इसको बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे नजर रखना चाहिए।
1: अपने शहर ही नहीं बल्कि लखनऊ के जाफर रजा हेड पोस्ट मास्टर, मुनव्वर नवाब, भुक्कल नवाब, मेजर शेट्टी, अशफाक अहमद, एन कोल, अली मियां, आगा भैयू, जामिन बरेली के सुखा उस्ताद, यूसुफ निवासी कुमार टाकीज, यूनुस भाई, लाला रूपलाल, और विनोद निवासी साहूकारा मुरादाबाद की मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद याकूब सरदार खां निवासी गल शहीद, सुलेमान अख्तर निवासी लाल मस्जिद, शफीकुर रहमान निवासी असालतपुरा, कमल रस्तोगी दिल्ली के इकबाल निवासी चितली कबर, मोहम्मद इस्माइल मटिया महल, लाला आदेश चांदनी चौक, सुनील अखलाक आबी।

0: रामपुर का परचम लहरा दिया। 1992 और 1996 में हुई प्रतियोगिताओं में रियासत अली के स्थान पर समद खान ने प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही प्रतियोगिताओं में उस्ताद मंजूर अली खान ने सफल कप्तानी की। वर्ष 1995-96 में बरेली के नसीर बाबा ने मुक्खू मियां के नाम से ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवाया, जिसमें देश भर से करीब 120 टीमों ने हिस्सा लिया। वर्ष 1885 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस शहर के मशहूर पतंग निर्माता चंदा मियां को राष्ट्रपति पदक से नवाजा। पतंग के खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने भी पुरस्कृत किया है। वो कांटा इस शोर में हम भी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कोसी नदी के खादर पहुंचे। वहां का नजारा देखते ही बनता था। शाम ढल रही थी और पतंग उड़ रही थी। वहां बालू ही बालू थी, हवा बहुत कम थी। हवा का कम होना इस खेल के लिए अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी पतंग नीले आसमान को चूम रही थी। पतंग का शौक कैसा होता है, ये बात हमें पतंग के इस मैदान में आकर ही पता चली। मजहर आलम साहब जो लखनऊ से रामपुर एक शादी में शिरकत करने आए थे, उन्होंने शादी वाले घर में तो महज हाजिरी लगाई और अपने दोस्त शाहिद अली खान, जो कि शहर के एक सिनेमा हॉल के मैनेजर हैं, उनके साथ पतंग उड़ाने कोसी के खादर में पहुंच गए। मजहर आलम साहब लखनऊ के प्रसिद्ध इलाके अमीनाबाद के रहने वाले हैं। अपनी नफासत और नजाकत के लिए मशहूर लखनऊ की इस मेहमान से सुनते हैं क्या क्या फायदे हैं पतंग उड़ाने के।
1: मैं मजहर आलम लखनऊ से आया हूँ। यहाँ एक शादी में आया था और यहाँ पर हमारे हाफिज जी यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए हम लोग को यहाँ पे लेके आए। हम लोग तो यहाँ एक शादी में आए थे, उससे ये इतनी मेहमान नवाजी इन्हीं ने करी है मेरी कि ये समझ लिए कि मैं यहाँ के ऊपर हम ये हमको वहाँ से यहाँ के लेके आए हैं। और हमारा इनसे यही है कि हम लोग वो प्यार मोहब्बत ये बढ़ाने का तरीका है। प्यार मोहब्बत फायदे ये है कि सबसे बड़ी डॉक्टर एडवाइस ये देता है कि हम लोग की निगाह इसके अंदर जो है तेज होती है पतंग उड़ाने से। दूसरी ये कि सर्वाइकल जो होता है का, तो इससे जो हम लोग चलते हैं आगे पीछे या वो जो तकलीफ होती है वो नहीं होती। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये कोसी के मैदान में यहाँ पे हम लोग आए हैं तो रेत भी है, तो हम लोग रेत पे चलना ये सबसे ज्यादा ये है कि रेत पे चल के जो घुटने में लोगों की आजकल तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफें नहीं होती है। ये पतंगबाजी से सबसे अच्छा ये है कि एक एंटरटेनमेंट का एक सहारा है पतंगबाजी, और इसमें हम लोग पतंग लड़ाते हैं। शहर और लखनऊ शहर की बात है जहाँ तक है, वहाँ पर तो इतनी पतंगें लड़ती हैं कि हम लोग के थक जाते हैं, देखते देखते थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैदान लड़ती हैं वहाँ बहुत पतंगें लड़ती हैं। लखनऊ में 2-3 एसोसिएशन हैं और उनके अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। पुरानी एसोसिएशन है, नई एसोसिएशन है, और इसके अंदर 10-12 टूर्नामेंट हो जाते हैं। अभी लखनऊ फेस्टिवल हुआ है, सिंगल विकेट जैसे खेलते हैं, वो सिंगल विकेट का मैच होता है, 3-3 मैच होते हैं, वो 1-2 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो हर क्लब के 1-1 या 2-2 आदमी खड़े होते हैं।
0: हर खेल की तरह पतंग उड़ाने के भी कानून कवायद हैं, अब उन पर डालते हैं एक सरसरी नजर। सफेद, हरी, पीली या कोई और कम चमकने वाली पतंग नहीं लड़ेगी, और कोई भी पैच 500 मीटर से छोटा नहीं लड़ेगा। जो खिलाड़ी ज्यादा अंदर आना चाहता है वो 700 मीटर पर पैच सही करेंगे। मैच रामपुर बनाम रामपुर ही रहेगा। मैच 1 बजे से 1:30 बजे के अंदर शुरू होंगे। बाहर की टीम की सूचना पर्ची कटने से पहले देनी होगी। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर स्थानीय टीमों के मैच कैंसिल किए जा सकते हैं। स्थानीय पैच पर्ची पर ही तय होंगे, मैदान में, घर पर या टेलीफोन पर तय नहीं होंगे। 3 खिलाड़ियों से कम पर मैच काटा हुआ भी कटा हुआ माना जाएगा। 1 क्लब से दूसरे क्लब का चिराव यानी फासला 80 गज का ही रहेगा। टूर्नामेंट का फासला 50 गज से 70 गज के बीच रहता है। टीमें अपना बिस्तर 80 गज के फासले पर ही डालेंगी। हर क्लब के सदस्य

0: एक सीजन यानी जब तक पर्ची कटती रहेगी दूसरी क्लब में नहीं जा सकते। हाँ, क्लब के बंद होने पर ही जा सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने क्लब बंद करने से पहले छूट मांगी तो उसे एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है और वो किसी भी क्लब से अपना शौक पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार एसोसिएशन के 14 कड़े नियम हैं। इन नियमों की अवहेलना करने का अर्थ होता है पतंग के खेल से हाथ धो बैठना। पैच कैसे लड़ाया जाता है, जमीन से पतंग की दूरी कितनी होनी चाहिए, आइए सुनते हैं अपने शहर के मोहल्ला राजद्वारा निवासी मशहूर पतंग के खिलाड़ी सज्जाद बेग से।
1: पतंग 500% कम पे पेच नहीं लड़ पाता हमारा, 500-700 के बीच में कम से कम होना चाहिए और उससे ऊपर 1000-1200 गज पे पेच लड़ जाता है और 1000-1200 गज से ऊपर पेच जाता है तो आंखों से पतंग वजल होना शुरू हो जाती है तो पेच कैंसिल भी दोनों टीमों के आपस में कम्प्रोमाइज होने के बाद मतलब कैंसिल भी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो यहाँ पतंगबाजी कर रहे हैं कोच के ग्राउंड में कर रहे हैं, हमारे गोल्डन क्लब लखनऊ से टूर्नामेंट हम फाइनल में जीते हैं और हमारे हाफिज साहब मुरादाबाद से ऑल इंडिया टूर्नामेंट जिसमें हमारे हाफिज साहब, जॉनी साहब, मुराद साहब, पशमत खां साहब और अजीम मियाँ साहब मेंबर थे जो मुरादाबाद से तभी सन 2009 में फाइनल उठाकर लाए ऑल इंडिया। और हमारे मंजूर खां साहब काफ़ी सीनियर खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन पेच लड़ाने वाले, बहुत ही अच्छे अखलाक के इंसान और हमारे रामपुर में उन्होंने पतंगबाजी को अपनी ज़िंदगी समझा और पतंगबाजी के लिए बहुत कुछ दिया।
0: फिक्सिंग, आमतौर पर इस शब्द ने क्रिकेट के खेल में खूब शोहरत पाई और देश दुनिया के कई नामचीन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन उससे पहले ये खेल पतंग के खेल में भी चला है। इस गंभीर मुद्दे पर अपने शहर के मशहूर पतंग के खिलाड़ी शहर के मोहल्ला हलके वाली ज्यारत के बाशिंदे हाफिज हिमायतुल्लाह खान ने कुछ यूं सफाई पेश की।
2: बहुत पुरानी मतलब ये जो वो थी उसमें फिक्सिंग ज्यादातर पतंगबाजी जो है वो फिक्सिंग के हिसाब में चला करती, कमजोर लोग थे वो जानबूझकर कटवा दिया करते थे और उससे पैसा मतलब ये कि वो करते थे। आज इस तरह का मतलब देखने को नहीं मिलता। हम लोग तो तकरीबन हिंदुस्तान के ज्यादातर शहर जहां पतंगबाजी होती है लड़ा चुके हैं आपस में, तो बहुत अच्छे माहौल के साथ, बहुत अच्छी बातचीत याराने दोस्ताने और बहुत बहुत मतलब कुर्बत रहती है आपस में, बिल्कुल तालमेल करके भाईचारा दोस्ती ये तमाम चीजें इसमें होती हैं। लोग यहाँ इसको मयूब समझते हैं पतंगबाजी को, अपने मुल्क में लड़ाने के लिए तो अपने ही मुल्क में तकरीबन जहाँ जहाँ पतंगबाजी होती है, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, बरेली हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, ये तमाम जगहों पे लड़ाने के लिए तो गए हैं। पतंग में खास खूबी तो यह है कि जो उसका बांस है वो देसी बांस जिसमें दोनों तरफ बराबर से गांठ होती है कन्नी के पास, और उन पतंगों को लोग इस तरह मतलब ये बनवा के रख लिया करते थे कि एक साल दो साल बाद उस पतंग को वो लड़ाएं ताकि जो उसमें लोचीलापन होता है बांस में की जो शक्ति होती है वो दो साल में तीन साल में खत्म हो जाती है।
0: वर्ष 2007-2008 में मुखू मियां के नाम से ही रोहिलखंड में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 50-60 टीमों ने पतंगबाजी के जौहर दिखाए। इस टूर्नामेंट की फाइनल ट्रॉफी जुबैर क्लब शहर के मोहल्ला सराय जहांगीर रामपुर ने जीती। इस टीम में जाकिर खान, तौफीक खान, खालिद खान और जीतू शामिल थे। इस टीम के कप्तान जुबैर प्रिंस थे। तत्कालीन जिलाधिकारी टीआर जोसेफ ने भी यंग मैन मैदान में 3 दिवसीय पतंगबाजी का टूर्नामेंट करवाया था। ये सिंगल हैंड टूर्नामेंट था। इसका फाइनल जावेद ने जीता था जबकि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड उस्ताद मंजूर अली खान को मिला। डीएम साहब द्वारा कराई गई इस पतंग प्रतियोगिता की शहर में खूब चर्चा हुई। फिलहाल शहर में उभरते हुए पतंग के खिलाड़ी मुबीन मियां टंकी नंबर 5, अजीम मियां शाहबाद गेट, सज्जाद बेग मोहल्ला राजद्वारा, शम्मू खां चुपशाह मियां का मजार, शाहिद अली खां मैनेजर सिनेमा हॉल, मंजू खां पीपल वाला घेर, फहीमुद्दीन खां कटरा जलालुद्दीन, बाकर अली खां उर्फ कुंजे खां काजी की गली, नसीम मियां सफदरगंज, प्रसिद्ध शायर उस्ताद रामपुरी के भतीजे चांद खां पक्का पुल और ट्रेजरी कार्यालय के लिपिक राजू इस शौक को और आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मैकाले के शिष्यों को पतंग उड़ाने की शिक्षा देकर आए रामपुर के मशहूर पतंग साज मजार चुपशाह मियां निवासी आसिफ मियां पतंगों की दुनिया की सैर कराने को तैयार हैं। आइए आसिफ मियां के साथ चलें।
3: मेरे वालिद साहब पहले गए अमेरिका और सिर्फ एक तुक्कल बनाने की कलाकारी के लिए गए कि जो कि हिंदुस्तान में एक ही वो शख्स थे तुक्कल बनाने वाले, या उसके बाद अब मैं बनाता हूँ। वाशिंगटन गए, वहाँ गए मेले में और उसके बाद वहाँ से लौट के आए तो राष्ट्रपतियों ने अवार्ड मिला और अवार्ड के बाद भी फिर एक उन्होंने चक्कर फ्रांस लगाया, समझे आप। और कलाकार थे बेहतरीन और मैंने वो कला अपने वालिदी से सीखी चंदा मियां से, समझे। और आज मेरा ये है कि मैं भी तकरीबन 4 मुल्कों में घुमाया हूँ और आज उस कला को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत कुछ कलाकारी की, नए नए डिजाइन बनाए कि जिस बिना पे हमें यहाँ जाना हुआ। और इसी सिलसिले में एक डोर पे हमने 100, 200, 300 पतंग उड़ाना इजाद करी जो आसानी से मैं उड़ा लेता हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ लगे रहते हैं और मैं भी इस कला को उन्हें सिखा रहा हूँ और इस तरह से कर रहा हूँ कि जिससे आगे बढ़े। एक्सपोर्ट मेरे बचपन से पतंग अमरीका हुई, हमने एक्सपोर्टरों को दी अमरीका और इंग्लैंड में ये पतंग हमारी हिंदू गई और वहीं पे जाके काफी मकबूल और कामयाब है और रही। और आज तक बहरहाल एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो गया मगर आज तक जाती है। अब पतंग के बनाने का तरीका है कि एक इंच से लेने के बाद में 60-70 इंच तक की पतंग बना ली जाती है जो क्वाई फिट के हिसाब से होती है। अब पतंग के बनाने के तरीका और दूसरे एक अलग अलग शेप की पतंग जिसके अंदर तुक्कल पतंग है, चुड़िया शेप की, मछली शेप की, डिब्बा शेप की और आदमी शेप की पतंग बना के उड़ा ली जाती है। जैसा वैसा विदेशी पतंग आप देखते तरह तरह की शेपों की होती है, वो फोल्डिंग और मूवमेंट नहीं करती है। हमारी ये पतंगें सारी मूवमेंट करती हैं कि हर हवा के लिहाज से पतंग बनाई जाती है, हर दूर के हिसाब से बनाई जाती है। अगर हमें 100 फीट पर पतंग पहुंचाना है तो 100 तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। और हमें 100 से 2000 फीट तक और 2000 गज तक पहुंचाना है तो उस हिसाब से कलाकारी से बनाई जाती है। तो इसके अंदर बनाने के लिए कलाकारी के लिए काफी टाइम लगता है और समझा जाता है, उस हिसाब से बनाई जाती है। सारी चीजें बनाता हूं मैं। पतंग जहां से ईजाद हुई तो वो अफगानिस्तान से हुई और इस मकसद से हुई कि ये एक्सरसाइज पहली चीज, दूसरी चीज ये कि प्रचार करने की नहीं है, तीसरी चीज ये कि किसी चीज की लंबाई का नापना हो तो इससे नाप लिया जाया करता था, दूसरे को मैसेज देना है तो दे दिया जाता था। इस तरह से पतंग ईजाद हुई और अब उसमें दूसरी बहुत सी कलाकारी पैदा हो गई कि जो आज कलाकारी मेरी यहाँ मिलती है, मैं बनाता हूँ और काफी मकसदी के मकबूल है। यूरोप की जो पतंगें होती है और विदेश यानी कि तकरीबन 22 मुल्कों में पतंग बनती है, हमारे हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद उन मुल्कों की पतंग चाइना वगैरह की आम तरीके से देखने में आजकल आ रही है, वो मूवमेंट नहीं करती ना उसके अंदर को वजन होता है, उड़ांगे तो बहुत हल्के वजन की होती है। तो उन्होंने हमारी पतंग के जब देखा कि मूवमेंट करती है और हम दूर से दूर ले जाते हैं क्योंकि पतंग ये चाइनीज वगैरह ज्यादा लंबी नहीं जाती है, हमारी पतंग लंबे से लंबे यानी कि 1000 फुट 2000 फुट 1000 गज 2000 गज तक पहुंच जाती है। तो उन्होंने ये देखने के बाद में एक जज्बा पैदा हुआ कि हम इस पतंग को इस्तेमाल करें और उड़ाएं। अंदर भी कलाकारी है तो वो ने सिखाना होता है कि किस तरह से कन्ना में बांधना है, कौन सा डोरा ऊपर का कम करना है, कौन सा नीचे का बढ़ाना है, तो इस तरह से और किस तरह से करना है, तो बहुत कुछ उन्हें सिखाया और करने लगे। इस तरह से कुछ मुल्कों के लोग पतंग बहुत अच्छे तरीके से उड़ाने लगे और एक आध कुछ बनाने भी लगा, यानी कि चाहे कम ही बनाता मगर बना लेता है ढंग से, कुछ इस तरह की इंडियन जैसी होती है। 1985 के अंदर मुझे स्टेट अवार्ड मिला और नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट 1990 में, वो बाहर जाने का मेरा रहा, मैं गया 1990 के अंदर फ्रांस और 1998 में गया अमेरिका और 2002 के अंदर गया लंदन और 2005 के अंदर सिंगापुर। सिंगापुर मेरा लड़का भी साथ में गया था, मैं शो ऐसा था कि उसमें 2 जनों की जरूरत थी तो मेरे लड़कों को भी ले गया था, मैं भी गया था। तो वहां मैंने बनाना भी सिखाया और उड़ाना भी सिखाया।
0: पांव टिकन, रस्सी कूद और गेड़िया देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गए। आज रफ्तार का जमाना है, शिक्षा का दौर है, हमेशा शिक्षा की बात करने की महारथी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर के प्राचार्य सैयद अंसर सईद साहब का पतंग के बारे में क्या नजरिया है, आइए उनसे ही सुनते हैं।
4: जैसे और खेल हैं उन्हीं में एक ये पतंगबाजी का भी खेल आता है। ये पहले बहुत ही उन बच्चों के लिए हुआ करता था जो जिनके माशी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हुआ करती थी, जो हॉकी बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते वो अपने दिल को इन खेलों से बहलाया करते। एक तरह से ये कहा जाए कि ये गरीबों का खेल, लेकिन हर खेल के पीछे कोई ना कोई जानकारी है, कोई ना कोई फायदा है, जहाँ इसके फायदे हैं नुकसान भी हैं। पतंग एक पुराना खेल है और मैं समझता हूँ कि ज्यादा लखनऊ से ये पनपा है। नवाब वाजिद अली शाह को भी इसका शौक था, वहीं से इस खेल को बढ़ावा मिला और रामपुर इस वक्त हिंदुस्तान में इन गिने शहरों में इस शौक में आता है। इसके कई फायदे हैं, एक तो आप कम खर्चे में अपना मनोरंजन कर सकते थे, अपना टाइम बिता सकते थे और साथ साथ इसमें हर खेल का जो सिस्टम है कि उसके पीछे दिमाग लगाना ज़रूरी है, तो इसमें एक आपका मेंटल शार्पनेस भी डेवलप होती है।
0: पतंग ने स्वतंत्रता संघर्ष को भी आसमान तक पहुंचाया है। साइमन कमीशन गो बैक पतंग ने ही कहा। पेश है राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक व्याख्याता प्रभाकर मिश्र की व्याख्या।
5: पतंगबाजी का जैसे ही ख्याल आता है, जैसे ही नाम आता है, सबसे पहले एक दिमाग में एक बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है कि जो व्यक्ति पतंगबाजी से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह से खाली है, नाकारा है। लेकिन जैसे कि प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने अपनी किताब भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पतंग के एक नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है, एक नए दिशा को उन्होंने दिखाया है कि पतंगबाजी जब 1927 में जब साइमन कमीशन का निर्माण किया गया, 28 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था तो उसे गोरा कमीशन कहा गया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे विदेशी थे और भारत के भाग्य निर्माता विदेशी हों ऐसा भारतीय लोगों को पसंद नहीं आया। तो पतंग एक ऐसा माध्यम बनी कि एक मकान पर खड़े होकर के खलील उज़्मा साहब ने और उनके साथियों ने काले रंग की पतंगों पर साइमन गो बैक लिखा और उसको जहां साइमन कमीशन पहुंच रहा था या जहां साइमन कमीशन रुका था उस स्थान पर जाकर के उसको काटा गया। तो आप सोचिए कि पतंगबाजी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में वो नई ऊंचाई पहुंचा दी कि जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। आप हवा को तो रोक नहीं लेंगे, आप पतंगों को तो रोक नहीं लेंगे, तो वहां तक पतंगें पहुंच गईं और साइमन कमीशन असफल रहा।
0: अपने शहर के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जेएस चड्ढा जी कहते हैं कि बचपन में उन्होंने भी खूब पतंग उड़ाई है। पतंग के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर जेएस चड्ढा, आइए सुनते हैं।
6: बचपन से हमें बहुत ज्यादा शौक था, हमने बचपन में बहुत ज्यादा पतंग उड़ाई है। जो सर्वाइका से पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है, उनको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, उसे पतंग से दूर रहना, उससे उनका दर्द बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। और जो लड़के बच्चे हैं पतंग उड़ाते उनको बीमारी नहीं हो सकती सर्वाइक, ये डॉक्टर की राय है।
7: पतंग जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से। यही कहानी आपने सुनी, करीबी रिश्ता है पतंग का रामपुर वासियों के साथ। अपने अपने दौर में मुगल बादशाहों ने पतंगें उड़ाकर देश में शांति, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। आज भी पतंग महोत्सव यही संदेश देते हैं। चुनौतियां बहुत हैं, समस्याएं बेहिसाब हैं। ये डोर जिसके साथ पतंग बंधी है उसी के साथ बंधे हैं कुछ सपने, कुछ मुस्कुराहटें और अपनापन भी। जब ये डोर टूटती है या कटती है सपने बिखर जाते हैं, उम्मीदों को ठेस पहुंचती है, लुट जाने का डर भी सताता है। आइए कोशिश करें पतंग के खेल को उम्मीदों के ऊंचे आसमान तक ले जाएं, इसे पहचान दिलाएं।

0: कागज के पक्षी। अभी आप रामपुर में पतंगबाजी पर आधारित ये रूपक सुन रहे थे। आलेख सुहेल जैदी का था, वाचक स्वर सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना के, सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मनदीप कौर।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं अब सुनिए नोहा।

सर की कसम पासा कर हमें छाती से लगा लो इस दम रन से आए।

अल्बिना निषाद की आवाज़ में अभी आपने ये नोहा सुना। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9।

किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं निधि मिश्रा का शास्त्रीय गायन। सुनते हैं इनका गाया राग जौनपुरी में छोटा व बड़ा ख्याल।

राग रंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना निधि मिश्रा का शास्त्रीय गायन। आपने सुने राग जौनपुरी में छोटा व बड़ा ख्याल। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए।

0: एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।